0: वक्रतुंडा महाकाया सूर्यकोटी संप्रभा निर्विधिनम कुरुमे देवा सर्वकार्यशु सर्वदा। रूबरू मिलने का मौका नहीं मिल पा रहा है, अथ शब्दों से अपनों को नमन कर लेता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में श्रेष्ठ होता है, इसलिए आपकी श्रेष्ठता को हृदय से नमस्कार करता हूँ। फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के सभी सुनने वालों को हार्दिक से अभिनंदन करता हूँ, और जो आज दूर दूर दूसरों देशों से भी ये कार्यक्रम को सुन रहे हैं, तो हार्दिक से नमन करते हुए बस ये कहना चाहूँगा कि कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश लेकर हम सब आज फिर एक बार और स्टूडियो में उपस्थित हो गए हैं। उपस्थित है शांता जी भी, और वो पहले कुछ कहे फिर उसके बाद में राजेंद्र जी जो पनेल के पीछे बैठे हुए हैं उसके पास हम बढ़ेंगे, फिर आगे का कार्यक्रम बढ़ेगा।
1: ज्योति का प्रकाश कार्यक्रम के सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा हार्दिक शुभकामनाएं और प्रणाम। रेडियो फाउन हिंदुस्तानी के सभी कार्यकर्ता और ज्योति के प्रकाश सुनने वाले सभी श्रोतागणों को हर बार की भांति इस बार भी हम कुछ नया खोज के लाए हैं। इस बार कुछ कृष्ण के बारे में, विरह के बारे में है, और कुछ जनेऊ और क्या है चरणामृत, चरणामृत के बारे में, चरणामृत के विषय में क्या है, ये सब लाए हैं। तो हमारे जो विशेषज्ञ हैं ढूंढने वाले, उनको भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन जो इस प्रकार का विषय हमको ढूंढ ढूंढ के लाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सबको, और सबको जो कि इस प्रकार से हम लोगों का कार्यक्रम देखते हैं सुनते हैं। संजय जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं?
0: जरूर राजेंद्र जी, शांता जी का एंट्री बढ़िया से नहीं हो पाया आज, ये कैसे हो सकता है? शांता जी आपको दोबारा करना पड़ेगा क्योंकि आपका माइक मेरे ख्याल से ऑन नहीं था, और एक बार से फिर आप
2: तो अच्छा यहाँ से मैं तो परिचय देती हूँ, दोबारा अपना परिचय देती हूँ कि एक तरफ सांवले कृष्ण, दूसरी तरफ राधिका गोरी, जैसे एक दूसरे में मिल गए हो चांद चकोरी। तो यहाँ से सुनने वालों आप जैसे सुने हैं, तो सेविका शांता जी यहाँ पे ज्योति का प्रकाश प्रोग्राम के लिए साथियों के साथ यहाँ उपस्थित है। आप सभी को हार्दिक से स्वागत है।
0: और राजेंद्र जी, जैसे कि हमें भी पता है कि हमारे सुनने वालों जो हर सप्ताह की तरह हम सब कार्यक्रम में रखते हैं कि जिसका मन उदास बैठे हुए, क्योंकि एक दीदी जी जो एंथोफ शहर से भी सुन रहे हैं, तो मन जब उदास है तो उदासी मन के लिए हम सब वो गीत रखते हैं, फिर कार्यक्रम उसके बाद में धीरे धीरे स्टार्ट होते रहते हैं।
1: जरूर, क्यों ना उन लोगों का मन भी उदास से दूर किया जाए,
0: चला देते हैं
1: उदासी से।

0: तेरा राम जी करे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे। राजेंद्र जी, आज का जो हमारा विषय है कि चरण अमृत क्या है, और उसके बारे में काफ़ी जानकारी हम सब लेकर यहाँ हमारे विशेषज्ञ जो हम सब के लिए खोज करके रखे हुए हैं, तो हम अभी सुनाने वाले हैं। और ये कार्यक्रम में काफ़ी जानकारी है चरण अमृत के बारे में, पर राजेंद्र जी, आज के जो विषय है उसमें उद्धव जो कृष्ण भगवान के मित्र थे, और ऐसा क्यों कि कृष्ण भगवान मनुष्य के शरीर धारण किए, और यानी कि कैसे, उसके बारे में कुछ जानकारी हम सबको आज सुनाने वाले हैं आप। फिर उसके बाद हम सब चरण अमृत जो आज का विषय है उस ओर बढ़ेंगे।
1: आपने कहा चरणामृत और उद्धव ना?
0: उद्धव जो कृष्ण भगवान जी का मित्र थे।
1: हाँ, जो आपने ये नाम ली उद्धव, तो मुझे याद हो गए कि हमारे बुजुर्गों जी ने पहले कहा थे कि ना उद्धव के लेना ना माधव के देना।
0: ना उद्धव को लेना ना माधव को लेना,
1: मतलब इसका क्या था?
0: अब आप ही सुना दो।
1: मेरे ख्याल से ये है कि ना कोई से उधार लेना और कोई से कर्जा नहीं लेना, ताकि आपको कुछ देना ना पड़े। हमने इसे यही सुनती थी
0: पहले पुरखों की बात, आजा दादा दादी
1: ये सब ऐसे हम लोग के ज्ञान देता था, तो ऐसे। और आपने कहा चरणामृत,
0: अभी ये गलत फैमिली में ना रहे कि पंचामृत।
1: जी हाँ, वही
0: चरणामृत, यानी कि चरण का धुया हुआ और अमृत जैसे बनता है, तो अभी उसके बारे में हम सब छलांग लगाने वाले हैं।
1: दो प्रकार के। हाँ, अच्छा,
0: हम सब अभी उस ओर बढ़ेंगे, पर राजेंद्र जी के हाथ में सारा बैकडोर है, और राजेंद्र जी पहले हम सब के कुछ और सुनाने वाले हैं।
2: हाँ, उद्धव जी के बारे में जैसे कि सब लोगों ने सुना भी होगा, और कृष्ण के मित्र में से एक अच्छे मित्र उद्धव थे। तो उद्धव सोचते थे कि मैं इतना अच्छा मित्र हूँ भगवान कृष्ण का, कि मैं सबसे ज़्यादा प्रेम करता हूँ
1: जी।
2: तो उनको ये नहीं पता था कि गोपी जो हैं वो ज़्यादा प्रेम करती है प्रभु भगवान को, भगवान कृष्ण को ज़्यादा प्रेम गोपियाँ करती थी, लेकिन उद्धव को थोड़ा कन्फ्यूजन था कि वो ज़्यादा प्रेम करते हैं। तो उद्धव तो भगवान कृष्ण के साथ द्वारिका में थे ही, तो उन्होंने बोला कि उद्धव एक काम करो, जाओ एक बार वृंदावन होके आओ, देखो वहाँ का क्या हालचाल है, क्योंकि जब से मैं इधर आया उधर गया नहीं, तो थोड़ा वहाँ की खबर लेके आओ। तो उद्धव को कृष्ण भेजते हैं द्वारिका से वृंदावन, और जब उद्धव वृंदावन पहुँचते हैं तो वो देखते हैं वहाँ पे उनका प्रेम, गोपियों का प्रेम जो है भगवान कृष्ण से, तो वो सब वो अपना ज्ञान भूल जाते हैं उस प्रेम के आगे। वो फिर कहते हैं कि ये तो प्रेम की बात है, उद्धव वंदगी तेरी बस में नहीं है। गोपियाँ कहती है बात प्रेम की है तो क्या जाने, उद्धव तो अपना ज्ञान नहीं जाने, प्रेम क्या होता है वो तुम्हें क्या पता। इसमें बहुत सुंदर ही एक गीत भी है उसके, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, और वो जो प्रेम था कृष्ण के प्रति गोपियों का, वो बहुत ही आगे था ज्ञान के आगे, प्रेम के आगे ज्ञान फीका पड़ गया। और आए थे उद्धव उनको समझाने, लेकिन वो वहाँ झुक गए और समझ नहीं पाए, और बहुत दिनों तक वहाँ रहे, और फिर माना उन्होंने कि हाँ प्रेम ज्ञान से ज़्यादा है, क्या ज़्यादा पलड़ा प्रेम का भारी है। फिर जब वो वापस गए वहाँ से, तो फिर कृष्ण भगवान को बोले कि अब मैं समझ गया हूँ, मैं थोड़ा अपना ज्ञान पे घमंड हो गया था, और अब पता चला कि हाँ प्रेम ज़्यादा, प्रेम का पलड़ा ज़्यादा भारी है, और ज्ञान उसके सामने कुछ भी नहीं। तो इस प्रकार से उद्धव के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में हमने बताया। आज का जो विषय है उसकी ओर बढ़ते हैं विषय के आगे की तरफ। जयति तेधिकं जन्मना ब्रज, ये भी बिरहा गीत है, गोपी गाती है, और बिरहा गीत सबसे बढ़िया वाला, सबसे अच्छा बिरहा गीत है। वो कहती है कि इंदिरा शाश्वती दक्षित दृक्षम दृश्यता स्वकति, हे श्याम सुंदर, आपके जन्म के कारण संभवता महिम ब्रजधाम पूर्वाक्षेप की सर्वापेक्षा अधिकाधिक उत्कर्षित को हो रहा है। वो यही कहती हैं कि जो ये धाम है वृंदावन धाम, ब्रजधाम, ब्रज धाम, ब्रज कोष की 84 कोष का एक धाम है, उसको बोलते हैं ब्रज धाम। गोपी यही कह रही है कृष्ण को कि आपकी वजह से इस जगह का इतना मान बड़ा है और बैकुंठवासी भगवती इंदिरा भी आपकी सेवा में उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा में सतत आश्रय कर रही है। और जो बैकुंठवासी इंदिरा है वो भी आपकी प्रतीक्षा करी, आपकी सेवा करी इस जगह पे, तो ये धाम इतना, इसकी इतनी मान्यता हुई है। इसके बाद वो फिर कहती हैं, ब्रज बनिताएं आपके प्रयोग जन्य संताप से संतप तो अत्यंत क्षीण हो, स्थता भटकती हुई भी आपकी निमित्त ही प्राण धारण की हुई ही दैत अभिभूत होकर हमें देखो। वो कह रहे हैं कि आप हमें देखो, केवल हमें कुछ नहीं चाहिए, आप हमको देखो, बस उसी में हम लोगों की सब कुछ उसी में आ जाता है। जैसे उक्ति से गीत प्रारंभ होता है कि जयति तीधिकम जन्मना ब्रज सुरुति नास्तिकाम श्री हरि प्रभु। जयति शब्द दोबारा इसलिए आया यहाँ पे कि अभिष्ट प्राप्ति एवं विघ्न निवृत्ति है तो मंगलाचरण करती है, जयति भगवान के लिए कहते हैं मंगलाचरण के लिए। इसके बाद अधिक शब्द संक्षेप में अर्थ दयोत तक कहे, यानी कि उसके बाद है, और फिर इसी का तात्पर्य कि भगवान श्री कृष्ण के आविर्भाव के कारण ब्रजधाम अर्थात ब्रजधाम जो 84 कोट का है बैकुंठ धाम के अधिक उत्कर्ष हो रहा है। जो ब्रजधाम है बैकुंठ यानी कि जहाँ भगवान विष्णु रहते हैं, वो धाम से ब्रजधाम ज़्यादा उत्कृष्ट, ज़्यादा अच्छा इसलिए हो रहा है कि कृष्ण वहाँ स्वयं आए और वो उस जगह पे रहे और उन्होंने ग्वाल बाले, ब्रज के माखन चुराना, गाय चराना, बंसरी बजाना, जंगल में गाय चराने के लिए चले जाना, और बहुत सारे दैत्यों का भी, कंस मामा जैसे, उन लोगों का संहार भी किया, उद्धार भी किया, तो इसलिए वहाँ सब सुख सुविधा और गोवर्धन पर्वत उठा लिया। तो वो धाम भगवान कृष्ण स्वयं रहे, आज भी लोग वहाँ पर जाते हैं, उस जगह पर परिक्रमा करते हैं और वहाँ के जो धूल है अपने माथे पे लगाते हैं, चरण धूली बोलते हैं उसको, कि या इस कैसी ये जगह है जहाँ कृष्ण भगवान रहे। आज भी आते हैं, सुख कहते हैं कि निधि वन में, संजय जी आपको पता होगा वहाँ निधि वन में आप गए होंगे।
0: नहीं मैं नहीं गया, पर मेरा एक मित्र है।
2: हाँ
0: मेरा एक मित्र है, वो हर साल जाता है, वो पूरा ब्रिज भूमि का एक मेरे ख्याल से गोवर्धन पहाड़ का और पूरा परिक्रमा लगा के आते हैं।
2: परिक्रमा लगाते हैं लोग।
0: वो कितने किलोमीटर का है राजेंद्र जी?
2: एक छोटी परिक्रमा है और एक बड़ी परिक्रमा है वहाँ।
0: क्योंकि वे मेरा मित्र कहते हैं वो लग जाता है, उन्हें बड़ा समय लग जाता है, क्योंकि कितना किलोमीटर के है वो?
2: 16 किलोमीटर के।
0: 16 किलोमीटर का
2: बड़ा वाला।
0: तो ये
2: छोटी केवल पर्वत की एक थोड़ा घूम के आती है।
0: हाँ तो
2: कुछ लोग तो परिक्रमा जो दूध की धार के साथ करते हैं, रिक्शा में दूध रख देते हैं और उसके साथ साथ चलते हैं, कुछ लोग पैदल चलते प्रणाम होके परिक्रमा लगाते हैं, और अलग अलग प्रकार की परिक्रमा लगती है वहाँ पे। परिक्रमा हर महीने करने जाते हैं और कुछ साल भर में एक बार जाते हैं, लेकिन परिक्रमा जरूर करते हैं,
0: क्योंकि
2: वो उसी स्थान से भगवान कृष्ण भी जाया करते थे
0: इसी प्रकार।
2: तो इस प्रकार गोपियों का जो गीत है उसको ऊंचे से नीचे उतारना, लोक धाम में अथवा संस्कृत स्वरूप परमानंद सिदा सिंधु में विराजमान स्वप्रकाश पूर्णतम पुरुषोत्तम प्रभु श्रीमद नारायण जीवानुग्रहण संसार में अवतरित होते हैं। जैसे लीला हेतु भगवान श्रीमद नारायण विष्णु का अवतार होता है, वैसे ही बैकुंठ धाम का भी अवतरण होता है। उपासना के अंतर्गत नाम रूप लीला एवं धाम चारों ही विशिष्ट महत्व रखते हैं। जैसे कोई राजाधिराज सहसाम चक्रवर्ती सम्राट, राजाधिराज सहसा चक्रवर्ती सम्राट मतलब समझे आप?
0: ना बोले तो
2: राजा मतलब जैसे, चक्रवर्ती सम्राट मतलब जैसे कोई एक बड़ा राजा है और उस देश में छोटे छोटे राजा है, अलग अलग राज्य है।
0: तनी सरनामी में बोल।
2: हाँ जैसे सम्राट उसको बोलते हैं जो सब राजा उसको मानेगा, बड़का राजा है,
0: राजा को
2: राजा का भी राजा,
0: जैसे कि वो बोले है राजाओं में
2: श्रेष्ठ। हाँ तो जो राजाओं में श्रेष्ठ है उसको सम्राट बोले,
0: सम्राट
2: वो जो अपने अपने राज्य में राजा करे उसको राजा बोलते हैं।
0: अच्छा
2: तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसे कोई राजाधिराज सहसाम चक्रवर्ती सम्राट नरेंद्र बंदियों के कल्याण यदा कदा कारागार में भी अवतीर्ण होते हैं, कारागार में भी कोई सम्राट अवतरित हो जाते हैं।
0: कारागार बोलते हैं जेलखाना,
2: जेलखाना भगवान कृष्ण का जन्म ही जेलखाना में हुआ।
0: कृष्ण जन्माष्टमी को
2: नहीं तो एक बार एक ने पूछा भगवान कृष्ण से, एक बार इसने कहा कि मेरी तो किस्मत ही ठीक नहीं है, मेरा तो ये काम खराब हो गया, वो खराब हो गया, मेरे ऐसा कर दिया उसे। तो कृष्ण भगवान ने उसको बोला तो तेरा तो कुछ भी नहीं है, मेरा देख ना, मेरा तो जन्म ही जेल में हुआ है। उसके बाद मेरा मामा वो मेरे पीछे पड़ गया मारने के लिए। फिर बहुत सारे लोग वो मेरे को तो कोई जन्म से ही मेरे को सब मारने के पीछे पड़े थे, और फिर भी मैं आज ठीक हूँ। तो तेरा दुख तो मेरे सामने कुछ भी नहीं है। इसलिए उसने बोला कि हाँ ये तो बात ठीक है। तो फिर उसने अपने सोचा कि हाँ मेरा दुख तो कम है। तो जब कोई व्यक्ति दुखी होता है तो किसी ज़्यादा दुखी वाले के पास जाना चाहिए, और वो देखो कि कितना सुखी है, तो दुख अपने आप कम हो जाते हैं। इससे ये सीख मिलती है।
0: सही बात।
2: क्यों ना एक सुंदर सा नगमाल
0: चला देते हैं
2: चला देते हैं
0: शांता का पिटारा सा निकाला हुआ।

0: श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बढ़ते हैं आगे की ओर प्रोग्राम में। जयति तेदिकम जन्मना ब्रज, मानव शरीर ही वज्र है।
1: राजेंद्र जी,
0: ब्रिज,
1: ब्रिज और वज्र में अंतर है ना?
0: हाँ, ब्रिज मतलब है जो भगवान कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा हो गई, द्वारिका हो गई और गोकुल और वहाँ सारे पांच गांव जो है वो ब्रिज धाम है।
1: हाँ जी।
0: और वज्र है जो इंद्र के पास हथियार है, दधीचि ऋषि का बनाया हुआ,
1: दधीचि ऋषि
0: की हड्डियों का, और इंद्र के पास उसी वज्र से वो वार करते हैं और वो उनका हथियार है। तो वज्र वो है, वो बहुत मजबूत है। और जो ब्रिज है वो ब्रिज कृष्ण भगवान की जन्मभूमि ब्रिज बोलते हैं।
1: राजेंद्र जी, इस पे मैं कुछ कहना चाहता हूँ।
0: जी जरूर।
1: ऐसा हुआ, एक बार मैं सूरीनाम देश में एक इवेंट में थे, अनूप जलोता का शो हो रहा था, तो वो ये गीत कुछ था कि ब्रिज भूमि के, पर उन्होंने कहा कि मैं अमेरिका में गया था और किसी के घर पे ठहरे हुए थे, तो जो ब्रिज भूमि वाला गीत सुन सुनकर तो बच्चों को ये लगा कि फ्रिज, ब्रिज भूमि का फ्रिज समझ गया। ऐसा हुआ तो ये बात सुन करके मुझे भी आज ख्याल आया कि हाँ, ये जो ब्रिज भूमि है, ब्रिज जो भूमि कहते हैं, फ्रिज कहते हैं, फ्रिज किसको कहते हैं?
0: फ्रिज तो जो
1: जिसमें
0: कूलकास,
1: हाँ कूलकास कहते हैं, और
0: ब्रिज
1: नहीं, जो तगड़ा शरीर क्या कहते हैं, वज्र, वज्र कहते हैं, यानी कि तगड़ा शरीर का ना
2: पहलवान
1: को ना, शांता जी,
2: तो
1: दारा सिंह। हाँ
2: जी।
1: तो राजेंद्र जी, आगे का कार्यक्रम में क्या सुनाने वाले आप?
0: हाँ, आगे का कार्यक्रम की तरफ बढ़ते हैं। यदि इस शरीर ब्रिज में प्रकट होंगे तो उसकी शोभा और बढ़ेगी, उसकी कीमत बढ़ जाएगी, उसकी जय जयकार होगी। ब्रिज शब्द का अर्थ है वज्रति भगवत समीपम सा ब्रज ते जन्मना ब्रजा अधिक जयति, यानी भगवान के समीप ले जाने में जो सहायक होता है वैसा यह शरीर भी वज्र ही है। मतलब
1: तो थोड़ा मुश्किल हो गया राजेंद्र जी, थोड़ा
0: नहीं,
1: समझ
0: मतलब
1: समझ के समझना है।
0: जैसे वज्र होता है
1: वापन, हाँ, हाँ,
0: इंद्र के पास जो वज्र है वापन
1: जी,
0: वो बहुत शक्तिशाली, बहुत ताकत है, ताकतवर है, जैसे मिसाइल है बहुत तकड़ी है और
1: हाँ,
0: बंदूक हल्की है,
1: हाँ, हाँ,
0: तो वैसे जो वज्र है तो वो ये शरीर भी कह रहे हैं कि वज्र के समान ही है। अगर भगवान समीप ले जाने में सहायक है, तो अगर भगवान के समीप मतलब भगवान के नज़दीक अगर ये शरीर चले गया तो ये भी वज्र के समान ही उतना मजबूती उतनी ताकत इसमें भी है। ऐसा हाँ, इस शरीर की शोभा वस्त्र भूषणों से नहीं बल्कि भगवत भक्ति से बढ़ती है। ये शरीर की जो शोभा है, लोग चाहे अच्छा सा कपड़ा पहनते हैं, शीशा पे देखेंगे, फिर लिपस्टिक लगाएंगे, बिंदी लगाएंगे, उससे इस शरीर की शोभा नहीं बढ़ने वाली,
1: नहीं बढ़ने वाली।
0: वो तो अभी लगाए और थोड़ी देर में उतारा, खत्म हो गया। लेकिन अगर इस शरीर को भगवान के सामने ले जाए तो इसकी शोभा बढ़ जाएगी, सदैव के लिए बढ़ जाएगी। तो नाथ, आपके ही कारण मेरी ब्रज शरीर की शोभा बढ़ी है, और आपका प्रकट्य होने के पर ही हमारी शोभा बढ़ पाएगी। कहते हैं कि आपके कारण ही इस शरीर की शोभा भी बढ़ी है, और अगर आपका प्रकट्य मतलब आप अगर दिख जाए सामने तो इस शरीर की शोभा वैसे ही बढ़ जाएगी। शरीर सिंहासन जब काम क्रोध मद लोभ मत्सर से मुक्त होगा, ये शरीर का जो सिंहासन है, शरीर सिंहासन है, लेकिन ये जब काम से क्रोध से, काम यानी काम जानीला
1: ना,
0: काम क्रोध,
1: क्रोध जानीला,
0: काम न जाने, काम क्रोध लोभ, लोभ जाने लालच,
1: लालच
0: मोह जाने
1: माया,
0: मोह जैसे मेरा मोह है, आपका मोह बच्चों पे है,
1: हाँ हाँ,
0: अपनी पे ऐसे मोह होता है, और मत्सर,
1: मत्सर नहीं जाने।
0: ये काम क्रोध लोभ, काम का अर्थ है कि आप स्त्री पे ज्यादा आकर्षित रहे।
1: अच्छा,
0: हाँ
2: फरलांगंस,
0: हाँ फरलांगंस तो उसको बोलते हैं। तो इस सब से मुक्त हो गए तभी परमात्मा दौड़ते हुए आएंगे। जब ये सब चीज़ से आप मुक्त हो जाए, इनकी तरफ ध्यान न दे, ऊपर उठ जाएं, तभी परमात्मा आपकी तरफ दौड़ते आएंगे। तुकाराम और मीराबाई की आज भी जय जयकार होती है, क्योंकि उन्होंने ये सब चीज छोड़ दिया था। तुकाराम को, मीराबाई को जानते हैं आप?
1: मीराबाई हाँ।
0: तुकाराम भी ऐसे संत हुए, बहुत बड़े संत हुए, उनको सब जानते हैं। उनके शरीर ब्रज में विकारों न पाऊं तक नहीं रखा था। उन्होंने अपने जो विकार, शरीर के जो विकार होते, दोष होते, उनमें कभी उन्होंने पाँव नहीं रखा, क्योंकि उन्होंने अपने शरीर और हृदय में ही ब्रज बना लिया था। वो कभी ब्रज में उन्होंने पाँव नहीं रखा, उन्होंने ब्रज में नहीं गए वो, लेकिन उन्होंने स्वयं अपना शरीर ही ब्रज बना लिया था।
3: क्योंकि आपने, अरे अभी हमने यहाँ पे पढ़े आगे में कि हमको भगवान के पास जाना है, जबकि भगवान खुद हमारे में ही है। तो जैसे आपने यहाँ पढ़ा ना कि आप अपने अपने आप को बना ले ऐसे कि यही ब्रज धाम है, तो उतना दूर नहीं जाना पड़ेगा।
0: हाँ, ब्रज धाम को यहीं बसा दिया जाए, अपने शरीर में ही ब्रज धाम बनाया जाए, तो उतने दूर जाने की जरूरत नहीं है। जो जा सकते जाएं, लेकिन जो न जा सकते वो अपने शरीर को ही ब्रज धाम बना लें। तो क्यों ना एक सुंदर सा, जो कि उद्धव के बारे में हमने पहले भी चर्चा की थी, और उनका एक जो बहुत सुंदर भजन है उसको चला दिया जाए।
1: ऐसा मेरा तो दिल कहता कि संजय तू भी कुछ बोल।
0: तो बोलो।
1: राजेंद्र जी, ऐसा हुआ कि एक गोपी के घर लल्ला माखन खा रहे हैं, और उसी समय गोपी ने लल्ला को पकड़ लिया,
0: रंगया।
1: हाँ, तब कन्हैया बोले, तेरे धनी की सौगंध खाकर कहता हूं कि अब फिर कभी भी तेरे घर में नहीं आऊंगा। ऐसे बोले कन्हैया ने और गोपी के, और तो गोपी ने कहा, मेरे धनी की सौगंध क्यों खाता हूँ कन्हैया? तो कन्हैया ने कहा कि अरे तेरे बाप की सौगंध पर गोपी और ज्यादा खींच जाती है, और लल्ला को धमकाती है। धमकाती समझे?
0: हाँ, डांटती।
1: डांटती है, परंतु तू मेरे घर आया क्यों, गोपी कहते हैं। तो कन्हैया ने कहा, अरे सखी तू रोज कथा में जाती है, फिर भी तू मेरे तेरे छोड़ती नहीं। इस घर का मैं धनी हूँ, धनी का मतलब ना कि इस घर का मैं धनी हूँ, ये मेरा घर है, ऐसे कन्हैया जी कहते हैं। तो गोपी को आनंद हुआ, और मेरे घर का और कन्हैया अपना घर मानते हैं। कन्हैया तो सबका और मालिक है, सभी का घर उसी के है, और उसको किसी की आज्ञा लेने के जरूरत भी नहीं ना। जो भगवान को अपने घर में बस बांध लो तब भगवान के सब है ना।
0: हाँ।
1: तो गोपी कहते, तुमने माखन क्यों खाया? बोले, ऐसा क्यों? तो लल्ला ने कहा कि माखन किसने खाया है? इस माखन में तो चीटी चढ़ गया था, तो उस निकालने के हाथ डाला और इतने में ही तू टपक पड़ी, ऐसा। तो गोपी कहते हैं, परंतु लल्ला तेरे होठों के ऊपर भी तो माखन चिपका हुआ है। कन्हैया कहते, चीटी निकालते थे तभी होठों के ऊपर भी औ मक्खी बैठ गई, उसको उड़ाने लगी तो माखन होठों पर लग गया होगा। कन्हैया जैसे बोलते हैं ऐसा बोलना किसी को आता नहीं, ऐसा है कि ना? कन्हैया जैसे चलते हैं वैसे चलना किसी को आता भी नहीं, क्योंकि उसका चलाई भी कुछ खास है ना। तो गोपी ने पूछा लल्ला को घर में खंभे के साथ डोरी से बांध दिया।
3: अच्छा, हाँ।
1: डोरी से, रस्सी से बांध दिया उसे। गोपी ने जब उसे डोरी से बांध दिया, तो आगे के वृतांत अभी बाद में सुनाया जाएगा, पहले गीत की ओर क्यों ना चलते हैं।
0: जरूर।

0: ये तो प्रेम की बात है उधो, वंदगी तेरे बस में नहीं है। ये उधो के लिए संदेश है गोपियों का कि ये तो प्रेम की बात है, तुम क्या जानो प्रेम क्या होता है, तुम तो ज्ञान की बात जानते हो। तो हमारा समय होता है न्यूज़ की ओर, और बढ़ते हैं आगे, फिर आगे कार्यक्रम करेंगे।
1: हाँ सुनने वालों, हम आपको यहाँ से एक बार फिर स्वागत कहती हूँ ज्योति का प्रकाश प्रोग्राम में। ये तो खदेल तफान फादत उन्स प्रोग्राम, और साथ ही साथ जरूर मैं कहूँगी राधा के सच्चा प्रेम का ये इनाम है, कान्हा से पहले लोग लेते हैं राधा का नाम। हमको याद आ गए क्योंकि संजय जी अभी प्रेम के बात कहते थे, तो यहाँ से मैं ख्याल करती हूँ कि संजय जी आप उसको जरूर से जारी करना।
2: जरूर से जारी करना राजेंद्र जी, जरूर से जरूर
1: जारी करोगे?
2: जरूर कोशिश करेंगे शांता जी, क्योंकि गोपी ने तो पीछे लल्ला को घर में और खंभे से साथ डोरी से बांध दिया था। कन्हैया का जो शरीर है बहुत कोमल है, और गोपी ने जब डोरी से कसकर बांधी तो लल्ला के आंखी में पानी आ गया। राजेंद्र जी पानी आ गया, गोपी को दया आया, उसने लल्ला से पूछा कि लल्ला तुझे कोई तकलीफ है क्या, ऐसे उसने पूछा। तब लल्ला ने गर्दन हिलाकर कहा कि मुझे बहुत दुख रहा है, डोरी जड़ा से और ढीली करो। डोरी कहते हैं रस्सी के ना
1: जी।
2: गोपी ने विचार किया कि लल्ला को डोरी से कस कर और बांधना ठीक नहीं है, मेरे लल्ला को दुख होगा, इसीलिए गोपी ने डोरी थोड़ी से ढीली रखी और सखियों को खबर देने गई कि मैंने किसको बांधा है, लल्ला को बांध दिया है। तुम और लल्ला बांधो, परंतु किसी से कहो नहीं ना। बोले लल्ला के बहानों पर किसी से कहो नहीं, तुम खूब और भक्ति करो परंतु उसे प्रकाशित मत करो। हाँ, भक्ति करो पर प्रकाशित मत करो।
1: अच्छा,
2: हाँ डंका ना बजावे लगे ना कि हमने ये किया हमने वो किया है। और भक्ति का प्रकाशित हो जाएगा तो भगवान चले जाएगा शांता जी। इसी कारण हमारे संतों मुनियों ने कहा कि भक्ति का प्रकाश होने से भक्ति अब बढ़ती नहीं है, भक्ति में आनंद आता ही नहीं। ऐसा क्यों
1: हा?
2: तो ऐसा कहावत है कि बाल कृष्ण और सूक्ष्म शरीर डोरी जो था ना, डोरी जो रस्सी थे, और बाहर निकल गए और गोपी को अंगूठा दिखाकर कहा तुझे बांधना ही
1: नहीं आता
2: है। अब गोपी कहते हैं कि तू मुझे बता किस तरह से बांधना चाहिए, ऐसा कहते हैं ना गोपी। तो गोपी को लल्ला के साथ खेलना था, इसी कारण उन्होंने लल्ला को बांधे थे। लल्ला गोपी को बांध और दिखाया कि कैसे बांधना चाहिए। योगी जन मन से श्री कृष्ण का अवस्पर्श करते हैं तो समाधि लग जाते हैं। योगी जन ना
1: जी,
2: जो वो लोग बैठ जाते हैं तो, और चाहे जितना ठंडा रहे चाहे जितना गर्मी रहे, पर वहाँ उसी रूप में उलोवन बैठते रहते हैं। यह तो गोपी का अप्रत्यक्ष श्री कृष्ण का स्पर्श हुआ है, यानी कि गोपी के जो प्रेम है श्री कृष्ण भगवान में ना
1: जी।
2: और गोपी लल्ला के दर्शन में तलीन हो जाते हैं, यानी कि उन्हें देखने के लिए और उनके दर्शन करने के लिए वो लवलीन जो हम कहते हैं ना, उसमें रह

0: वो तो सही है।
1: बात ये हो जाता है कि ये जीव जो मानव हम है, एक ऐसा प्राणी है जिसको छोड़ना आता है, हम मनुष्य के ना, हम बांधने नहीं आते, हमें छोड़ना आता है, चाहे जितना संबंध क्यों ना हो, परंतु स्वार्थ सिद्ध होने पर, यानी कि छोटा छोटा बात के लिए उसको एक ही क्षण में हम छोड़ सकता है। ये है हम सबका, जो मनुष्य का और स्वभाव, पर परमात्मा एक बार बांधते हैं, एक बार बांधने के बाद छोड़ता कभी नहीं है। तो ये एक वृतांत जो कि श्री कृष्ण भगवान बाल योनि में हम सबको सिखाए हैं, और हम सबको किस प्रकार से अपने आप को, क्योंकि हम लोगों, राजेंद्र जी, हम लोग चाहते हैं भी अपने आप का शादी कराने का ना, तो पंडित को बुलाते हैं, पंडित से कहते हैं, पंडित जी भानो भानो भानो जल्दी, शादी बड़ा धूमधाम से होता है यहाँ, और धूमधाम से होता है, और एक दूसरे को पंडित द्वारा साको चार मंत्र द्वारा बढ़वाते हैं, पर इसमें ये बात हो जाता है कि हम अपना सारी शादी विवाह का कार्यक्रम खूब तैयारी करते हैं, पर सबसे मूल्य उसमें होता है कि हम तीन पीढ़ी का नाम लेते हैं उसमें, आजा का नाम नहीं, शुरू होता पिता का नाम से ना
0: जी,
1: पिता का नाम, आजा का नाम और वृत पिता यानी पर आजा का नाम। तो हम सब ये जो कार्य साकोचार मंत्र द्वारा जो वहाँ पर पढ़ा जाता है, तो कार्यक्रम विवाह संस्कार के बड़े बड़े साल हम ले लेते हैं, बड़े बड़े प्रकार से और सब सुविधा सब चीज किया जाता है, पर इसमें मूल्य ये है, कहने के तात्पर्य यह है कि वहाँ हम अपने विवाह संस्कार करवा रहे हैं, पिता के नाम जानते हैं, वहाँ तलक जानते हैं, पिता वहाँ बैठते हुए माढ़ों में तो पूछते हैं भैया से कि भैया बप्पा के नमो कैसे रहा, ऐसा होता है।
0: अच्छा,
1: और बप्पा के जो नाम नहीं जानते तो पंडित समझ जाता कि वो पर आजा का नाम कैसे जानेंगे,
0: वही तो।
1: और जबकि तीन पीढ़ी का कम से कम नाम जानना चाहिए। अब देखिए राजेंद्र जी, एक कार्यक्रम जो बनाया है, बनाया गया नई दलान से टेलीविजन पे चलाया गया है, और वो अपना परिवार को गए खोजने को भारत, और भारत में अभी दो कार्यक्रम भी और चलाना है, तो उन्होंने अपना परिवार को खोजने के लिए भारत गए, हमें तो वहां तलक जाना नहीं, हमें तो ये जान लेना चाहिए कि जो बीच आज से 150 साल पहले जो छोड़कर के सूरीनाम गए थे, उनका वृतांत, उनके बारे में सब लिखा हुआ है हमारे इमिग्रेसी और आर्काइव में, तो हम कम से कम खोज तो ले कि हम किसके बीच है। तो दोस्तों, ये है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश, और हम सब अब छलांग लगाने वाले हैं कि आज का विषय जो है, पर उस विषय के ओर बढ़ने से पहले चरण अमृत। शांता जी ने हाथ उठा दिया राजेंद्र जी, तो हमें तो उस ओर बढ़ नहीं सकते हैं अभी, तो शांता जी पहले आप सुनाए, फिर राजेंद्र जी, फिर हम सब एक गीत की ओर बढ़ेंगे।
0: जी जी, अभी आपने कथा कहे और कथा कहे
1: वृतांत,
0: हाँ, अभी गोपिया और कान्हा के बारे में,
1: कन्हैया जी का,
0: हाँ, तो उसमें से मैं ये निकाली हूँ कि हम बच्चे, इधर बच्चे और बाप के इसका प्रसंग हम लाए ना, कि जब हम बाप के हाथ पकड़े, जैसे सड़क पार करना है, सड़क को बहुत भीड़ जो है, तो अगर हम बाप के हाथ पकड़े तो ऐसा हो सकता है कि हम बाप के हाथ छोड़ दे, और अगर बाप हमारे हाथ पकड़े, बच्चे का हाथ पकड़े, तो वो नहीं छूटेगा कि तू सड़क में तुम्हें चोट खाई मिल जाएगा या आ रहे देंगे या कुछ भी। ऐसे ही हम सोचते हैं कि हम भगवान को पकड़ ले तो वही होगा, भगवान खुल कर चल जाएगा,
1: भगवान चल जाएगा,
0: भगवान या हमको खुद पकड़ ले तो हम छोड़ाने से भी नहीं छूटेंगे।
1: बस यही बात समझने के बहुत सरलता में आपने समझा दिया है। शांता जी तो काफी सयानी हो गए राजेंद्र जी,
0: उसका महत्व हमने ये निकाली,
1: बहुत सुंदर, बहुत हेल मकलक मनीर है पिता तो शांता जी, तो हम क्यों ना एक गीत के ओर, शांता का पिटारा के ओर पढ़ते,
2: नगमा
1: चला देते राजेंद्र जी,
2: जरूर
0: एक प्यार का नगमा।

0: गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, तो क्यों ना गोविंद और गोपाल बोला जाए। बढ़ते आगे की तरफ, आज का जो विषय है उसकी तरफ
1: चला दो, छलांग लगा दो।
0: अक्सर जब हम मंदिर जाते हैं तो पंडित जी हमारे भगवान का चरणामृत देते हैं। पंडित जी हमें क्या देते हैं? भगवान का चरणामृत देते हैं
1: जी।
0: और क्या कभी हमने ये जानने की कोशिश की कि चरणामृत का महत्व क्या है? तो शास्त्रों में कहा गया है,

0: अर्थात भगवान विष्णु के चरण का अमृत रूपी जल समस्त पाप दयाधियों को व्याधियों को यानी दुखों को समन करने वाला है, पापों को भी और दुखों को भी समन करने वाला है। जब पाप और दुख का समन हो जाता है तब औषधि के समान वो चरणामृत हो जाता है। जो चरणामृत पीता है उसका पुनः जन्म नहीं होता। जल जब तक जल ही रहता है, जब तक जल तब तक रहता है जब तक भगवान के चरणों से नहीं लगता। जैसे ही भगवान के चरणों में लगा तो अमृत रूप हो गया और चरणामृत बन जाता है। तो चरणामृत से संबंधित एक पौराणिक गाथा काफ़ी प्रसिद्ध है जो हमें श्री कृष्ण एवं राधा जी के अटूट प्रेम की याद दिलाती है। कहते हैं एक बार नंदलाल काफ़ी बीमार पड़ गए। कोई दवा या जड़ी बूटी उन पर बेस असर साबित हो रही थी। तब श्री कृष्ण ने स्वयं ही गोपियों से एक ऐसा उपाय करने को कहा जिसे सुन गोपियां दुविधा में पड़ गई।
1: उपाय क्या था राजेंद्र जी?
0: आप ये समझ गए जो हमने बताया?
1: मैंने ये समझ गया कि वो बीमार था।
0: कौन बीमार था?
1: नंदलाल।
0: नंदलाल काफी बीमार पड़ गए थे।
1: बीमार हो गए थे।
0: हाँ, तो उन्होंने कोई दवा जड़ी बूटी उनमें कोई काम नहीं कर रही थी। तब श्री कृष्ण ने स्वयं ही गोपियों को बोला कि एक ऐसा उपाय करो। तो गोपी उस उपाय के बारे में सुनने बहुत दुविधा में पड़ गई। तो बोली, कृष्ण बोली, दरअसल श्री कृष्ण ने गोपियों से उन्हें चरणामृत पिलाने को कहा। उनका मानना था कि उनके परम भक्त या फिर जो उनसे अति प्रेम करता है तथा उनकी चिंता करता है, यदि उसकी पाँव को धोने के लिए इस्तेमाल हुई जल को वे ग्रहण कर लें तो वे निश्चित ही ठीक हो जाएंगे। लेकिन दूसरी ओर गोपियाँ और भी चिंता में पड़ गई। श्री कृष्ण उन सभी गोपियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण थे। वे सभी उनकी परम भक्त थी, लेकिन उन्हें इस उपाय के निष्फल होने की चिंता सता रही थी।
1: तो ये उपाय होने की चिंता सता रही थी कि कैसे चरण अमृत, जैसे चरणों को धो करके देवे ना?
0: नहीं, वो कह रहे थे, भगवान कृष्ण ने बोला कि चरणामृत से ठीक हो सकता है। तो उन्होंने बोला कि गोपी बोले कि शायद ये तो बड़ा हल्का सा हमको लग रहा है, शायद ना हो ठीक। दुविधा में पड़ रही थी। तो उनके मन में बार बार यह आ रहा था कि यदि उनमें से किसी एक गोपी ने अपने पाँव के इस्तेमाल के चरणामृत बना लिया और कृष्ण जी को पीने के लिए दिया तो परम भक्त का कार्य तो कर देगी, परंतु किन्हीं कारणों से कहना ठीक न हुई तो उसे नरक भोगना पड़ेगा। वो कह रहे थे कि मानो कि किसी एक गोपी ने अपने चरण धो लिए और वो पानी कृष्ण जी को पिला दिया। चरणामृत उसी को बोलते हैं ना, चरणों का जल,
1: चरणों का जल,
0: चरणों का जल। और अगर ठीक नहीं हुए उस जल से तो नरक जाना पड़ेगा, नरक भोगना पड़ेगा।
1: ऐसे ये गोपी लोग सोचते हैं।
0: ऐसे गोपी लोग सोचते हैं। अब सभी गोपियां व्याकुल होकर श्री कृष्ण की ओर ताक रही थी, मतलब देख रही थी और किसी अन्य उपाय के बारे में सोच रही थी कि कोई और उपाय हो जाए कि वहाँ कृष्ण की प्रिया राधा आ गई। जो कृष्ण की सबसे प्रिया है वो राधा जी वहाँ।
1: वो
0: अपने कृष्ण को इस हालत में देख के राधा तो जैसे प्राण ही निकल गई। जब गोपियों ने कृष्ण द्वारा बताया गया उपाय राधा को बताया तो राधा ने एक क्षण भी व्यर्थ करना उचित न समझा और जल्दी ही स्वयं के पांव धोकर चरणामृत तैयार कर श्री कृष्ण को पिलाने के लिए आगे बढ़ी। तो जैसे उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसी बात है, वो कैसे कह रहे हैं, तो उसने भाई सोचा बेचारा नहीं, तुरंत ऐसे करके और चरणामृत तैयार करके और कृष्ण को पिलाने के लिए आगे बढ़ गए। राधा जी जानती थी कि वे क्या कर रही हैं, तो बात अन्य गोपियों के लिए भय का कारण थी।
1: पर राधा जी का ये भय नहीं हुआ कि ऐसे कैसे कर सकता हूँ भगवान के चरण?
0: राधा जी तो भगवान की सबसे प्रेमिकाओं में से एक थी,
1: पटरानी।
0: हाँ, पटरानी। तो उनको जो उन्होंने बोला वो सब मान लेती थी। ठीक वही भाई राधा को भी मन में था, थोड़ा सा था, लेकिन कृष्ण को वापस स्वस्थ करने के लिए वे नरक में जाने को भी तैयार थी।
1: नरक में जाने के लिए भी तैयार हो गई,
0: लेकिन कृष्ण स्वस्थ होने चाहिए। आखिरकार कान्हा ने चरणामृत ग्रहण किया और देखते ही देखते वह ठीक हो गए, क्योंकि वह राधा ही थी जिनके प्यार एवं सच्ची निष्ठा से श्री कृष्ण तुरंत स्वस्थ हो गए। अपने कृष्ण को निरोग देख कर वही देखने के लिए राधा जी ने एक बार भी स्वयं की भविष्य की चिंता न की और वही किया जो उन्होंने धर्म, वही उनका जो धर्म था।
1: तो क्यों ना एक सुंदर सा गीत के ओर हम बढ़ जाते हैं राजेंद्र जी, क्योंकि शांता का पिटारा फुल है।
0: हाँ।
1: और उसमें से अभी तो हम सब कितने चलाए, 2-3 चला पाए हैं।
0: बहुत

0: तू प्यार का सागर है, तेरी भी एक बूंद की प्यासे है।
1: प्यार का सागर है
0: यानी जैसे समुद्र में पानी जितना है उसको सागर बोलते हैं, और एक बूंद अगर उस पानी में से मिल जाए तो उसी का प्यासे हैं कोई। आप कुछ कहना चाह रहे हैं प्यार के सागर वालों, प्यार एक बूंद के प्यासे वालों?
2: एक बूंद के प्यासे राजेंद्र जी मैं क्या कहूँ क्या कहूँ, क्योंकि हौसला को ये मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है, अपनी परेशानी को ये बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। तो ये हुआ ना बात कि हम जो आज बात हो रहा है कि चरण अमृत के, चरण अमृत का महत्व क्या है, और उसके बारे में आपने काफ़ी जानकारी दे ही चुके हैं, पर अभी तो और भी बाकी है, कार्यक्रम अभी बाकी है राजेंद्र जी, तो आगे बढ़िए।
0: इतिहास गवाह है इस बात का।
2: इतिहास यानी कि शांता जी,
3: खस के दिनेश,
2: खस पूरा कोर्स तो यहाँ।
0: राधा कृष्ण का कभी विवाह नहीं हुआ, लेकिन उनका प्यार इतना पवित्र एवं सच्चा था कि आज भी दोनों का नाम एक साथ लेने में भक्त एक क्षण भी संदेह महसूस नहीं करती।
3: हाँ, इसलिए कहते हैं राधा के सच्चे प्रेम का ये इनाम है, कान्हा से पहले लोग लेते हैं राधा का नाम।
2: कान्हा से पहले लोग लेते हैं राधा
0: का, बोलते हैं ना
2: राजेंद्र जी। ऐसा एक बार ऐसा हुआ, मैं भारत में था, भारत में था, तो वो पहाड़गंज होता ना एक दिल्ली में,
0: पहाड़गंज होता नहीं, पहाड़गंज है अभी भी,
2: गलत हो ही जाता हमसे कुछ कह देते हूँ, तो रामनगर होता है वहाँ है अभी है। तो रामनगर में जहाँ खाली ढेर सारी भगवान की मूर्ति बनाया जाता है, तो मेरा भी इच्छा था कि चलो मैं अपने घर से घर के लिए और एक कृष्ण जी का और मूर्ति लेकर आए भगवान का, तो बहुत इच्छा था। तो वहाँ जा कर के लिए, तो वो जो कलाकार और कारागार में बड़का अंतर है।
0: हाँ, कलाकार तो जेल है और
2: जेल है, और कलाकार है जो हाँ आर्टिस्ट जो बनाते हैं मूर्ति। हाँ। तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई आप कृष्ण जी के ले रहे हो, पर राधा क्यों क्यों नहीं लेता। तो मेरा तो बस यही दिल था कि भाई कृष्ण जी के ले लेते हैं, तो ठीक बस वही लिया, और उन्होंने बेच दिया। तो मैं गया, अपना सब सूटकेस सब तैयार कर रहे थे, तो मन में ये आया कि जैसे कि कृष्ण भगवान ने कहा कि कृष्ण जा रहा है आधा रात में, मैंने ये निर्णय ले लिया कि चलो कल फिर वहाँ रामनगर जाना पड़ेगा।
0: और रामनगर वहीं बगल में पहाड़गंज के, वहाँ हाँ, मूर्ति मिलती,
2: बड़ी ढेर सारी मूर्ति बनती है। तो फिर दोबारा वही दुकान से गया, तो उन्होंने गया तो दुकान के पास गया तो उन्होंने कहा कि मैंने कल कह रहा था पर आपने मेरा नहीं माने, तो फिर भी आज आ गए, यानी कि राधा बिना कृष्ण है आधा। तो उन्होंने हमें वो फिर राधा माता का और मूर्ति दिए, तो हम लेकर आए। पर आगे का वृतांत क्या है राजेंद्र जी?
0: जी आगे का वृतांत बताइए।
2: ओ मैंने तो सोचा कि आप बताने वाले हैं,
0: आगे का वृतांत हम बताएंगे,
2: चलो आप ही सुना दो।
0: दोनों का नाम एक साथ लेने में भक्त एक क्षण भी संदेह महसूस नहीं करते। राधा कृष्ण का, उनके भक्तों के लिए कृष्ण केवल राधा के हैं तथा राधा भी कृष्ण के ही हैं। इसलिए राधा कृष्ण की इन कहानी ने चरणामृत को एक ऐतिहासिक पहलू तो दिया ही, लेकिन आज भी चरणामृत को प्रभु का प्रसाद मानकर भक्तों में बांटा जाता है। पीतल के बर्तन में पीतल के ही चम्मच से थोड़ा मीठा सा या अमृत भक्तों के कंठ को पवित्र बनाता है।
2: पीतल बोले तो
0: कॉपर तांबा।
2: हाँ।
0: पीतल दूसरा रहे ना, जैसे वो थाली रहे।
2: हाँ,
0: उसको पीतल बोले,
2: पीतल बोले। हाँ, हाँ। कोपर,
0: कोपर नहीं, कोपर दूसरा, पीतल दूसरा।
2: अच्छा।
0: सोना सब एक धातु है, पीतल
2: धातु है।
0: हाँ, अष्ट धातु में से एक धातु। तो जब भगवान का वामन अवतार हुआ तो इस प्रकार अमृत का जो चरणामृत का विषय था, इस प्रकार से था चरणामृत के बारे में, तो क्यों ना एक सुंदर सा नगमा की ओर बढ़े। जबन नोटियाल, कृष्ण गोविंद।

0: बढ़ते हैं विषय की ओर आगे। जब भगवान का वामन अवतार हुआ और वे राजा बलि की यज्ञशाला में दान लेने गए, तो जब वो दान लेने गए तब उन्होंने तीन पग में तीन लोक नाप लिए। जब उन्होंने पहले पग के नीचे के लोक नाप लिए और दूसरे में ऊपर के लोक नापने लगे, तो जैसे ही ब्रह्म लोक में उनका चरण गया
1: जी।
0: तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में से जल लेकर भगवान के चरण धोए।
1: हाँ।
0: और फिर चरणामृत को वापस अपने कमंडल में रख लिया।
1: अच्छा,
0: वह चरणामृत गंगा जी से बन गई, वही चरणामृत गंगा जी बन गई थी जो आज भी सारी दुनिया के पापों को धोती है। ये शक्ति उनके पास कहाँ से पात्र सकती है? भगवान के चरणों की जिस पर ब्रह्मा जी ने साधारण जल चढ़ाया था, पर चरणों का स्पर्श होते ही बन गई गंगा जी।
2: तो राजेंद्र जी, ये तो गंगा जल पे आ गया हम लोग, पर
0: नहीं, गंगा जल पे नहीं
2: चरण अमृत।
0: चरणामृत उसी जब भगवान वामन अवतार लिया था छोटे से हुए, और उन्होंने बोला कि राजा बलि को कि मुझे तीन पग जमीन दे दो, बस ज्यादा नहीं,
2: तीन पग
0: तीनों लोक नाप लिए। तो जैसे सब पैर गया ब्रह्म लोक को,
2: हाँ जी,
0: तो ब्रह्म लोक को जैसे पैर गया तो ब्रह्मा ने उनका चरण धो दिया पानी से और अपने कमंडल में रख दिया। उसी कमंडल से गंगा जी का अवतरण हुआ, वही कमंडल से, वही गंगा जी से,
2: ऐसा
0: जो कि आज गौमुख से और जाके गंगा सागर तक बहती है और करोड़ों लोगों का पाप धोते हुए और जल से वो करती है, वही गंगा जल है। तो इसका मतलब भी यहाँ पे यही है कि चरणामृत की शक्ति
1: महत्वपूर्ण
2: सही बात सुनता जी।
0: और जब हम बांके बिहारी जी की आरती गाती हैं तो कहते हैं, चरणों से निकली गंगा प्यारी,
2: चरणों से निकली गंगा प्यारी,
0: जिसने सारी दुनिया तारी,
2: जिसने सारी दुनिया तारी। सही बात है राजेंद्र जी।
0: तो उसने चरणों से निकली ये गंगा प्यारी, धर्म में इसे बहुत ही पवित्र माना जाता है तथा मस्तक से लगाने के बाद इसका सेवन किया जाता है। चरणामृत का सेवन अमृत के समान माना गया है।
2: तो चरण अमृत जैसे कि आप कह रहे हैं, पहले मस्तक पे लगाना है कि पहले सेवन करें तब मस्तक पे?
0: हाँ, पहले मस्तक पे फिर सेवन करने,
2: ऐसा।
0: हाँ, मस्तक पे लगाने के बाद सेवन करना है।
2: अच्छा,
0: कहते हैं भगवान श्री राम के चरण धोकर उसे चरणामृत के रूप में स्वीकार कर केवट ने केवल स्वयं भव बाधा से पार हो गया, बल्कि अपने पूर्वजों को भी उतार दिया। आपने सुना होगा रामायण में कथा कि जब वो नदी पार कर रहे थे, केवट ने बोला कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें केवल आपका चरणामृत चरण धोने दीजिए, बस। उन्होंने चरण धोए और वही और अपने परिवार को बुला लिया और सबको चरणामृत पिला दिया और पूरा खानदान ही पार कर दिया। चरणामृत का महत्व सिर्फ धार्मिक ही नहीं, चिकित्सक भी है।
1: चिकित्सक
0: यानी मेडिकेटेड पानी,
2: ऐसा
0: मेडिसिन के रूप में भी।
2: हाँ,
0: चिकित्सकीय भी है। चरणामृत का जल हमेशा तांबे के पात्र में रखा जाता है। चरणामृत का जल,
2: हाँ, पर तांबे और पीतल में अंतर है ना?
0: हाँ, पीतल और तांबे में अंतर है। पीतल दूसरा उजड़ जैसे सोना जैसे हुए और तांबा
2: लाल रंग का नहीं
0: थोड़ा ताम्र रंग का।
2: हरिद्वार में खास करके वहां पर लोग तांबा का और लोटा लेते हैं, तो कोई कोई लोटा काफी सस्ता में दे देते हैं लोग।
0: हाँ, जो सस्ता में देते हैं
2: तो जान ले वो तांबा है ही नहीं, लग रहा है तांबा पर तांबा नहीं, कुछ दिन बाद वो काला हो जाता है।
0: हाँ, हो सकता है तांबा तो काला पड़ता ही है, लेकिन हो सकता है की तांबे की केवल उसमें पॉलिश हो और तांबा
2: बस पॉलिश हो, क्योंकि तांबा में ये महत्वपूर्ण बात हो जाता है कि तांबा को चुम्बक मखनई जो कहते हैं ना, वो नहीं पकड़ते,
0: नहीं पकड़ता।
2: और तांबा असली तांबा वही है जो जिसे चुम्बक से वो हरिद्वार में आप पूछ सकते हैं कि हमें दिखाओ कि ये असली है या नहीं, तो सबके पास होते हैं चुम्बक
0: मखनई। तो तांबा का शाम को जल रख के सुबह वो जल पीना चाहिए, तो आपका शरीर शुद्धि, मन शुद्धि, और अगर आपका कोई घुटनों में दर्द भी है तो भी ठीक होने लगता है, और पेट संबंधी रोग तो दूर होते ही होते हैं,
2: ऐसा होता है।
0: हाँ, तो तांबा बहुत काम की चीज है। तो आयुर्वेद के मतानुसार तांबे के पात्र में अनेक रोगों का कष्ट नष्ट करने की शक्ति होती है। आयुर्वेद कहता है कि अनेक रोग दूर हो जाते हैं तांबे के पानी पीने से, जो उसमें रखे जल में आ जाती है, उस जल का सेवन करने से शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता पैदा हो जाती है तथा रोग नहीं होते।
2: रोग कहते बीमारी,
0: रोग कहते बीमारी को। इसमें तुलसी के पत्ते डालने की परंपरा भी है। अगर तांबे के जल में थोड़ा तुलसी का पत्ता डाल दिया तो और अच्छा, जिससे इस जल की रोगनाशक क्षमता और भी बढ़ जाती है। तुलसी के पत्ते पर जल इतने परिमाण में होना चाहिए कि सरसों का दाना उसमें डूब जाए। तुलसी के पत्ते पर जल इतने परिमाण में होना चाहिए कि सरसों का दाना उसमें डूब जाए। ऐसा माना जाता है कि तुलसी चरणामृत लेने से मेधा बुद्धि स्मरण शक्ति को बढ़ाता है। तो तांबे के पांच जल लोटे में थोड़ा एक पत्ते तुलसी भी डाल दिया जाए, और तुलसी के पत्ते इतना मात्रा में होने चाहिए कि उसमें केवल वो सरसों का दाना डूब जाए, और उसको जल को पीना चाहिए। तो उससे क्या होगा, बुद्धि बढ़ेगी, स्मरण शक्ति बढ़ेगी। विद्यार्थियों को ज़्यादा देना चाहिए क्योंकि वो पढ़ते लिखते हैं और सबको ही जरूरत है बुद्धि मेधा शक्ति की, इसलिए जरूर करना चाहिए।
2: तो राजेंद्र जी, ऐसा हुआ कि ये कभी हम लोग अपना व्यक्तिगत बातें भी इसमें रख देते हैं, तो भारत में हर मंदिर में जाओ तो वहाँ पर हम लोग, जैसे यहाँ मंदिर में हम लोग पाते हैं चरण अमृत, नहीं पंचामृत, तो भारत में हमारे जो स्थान से हम सब वहाँ रहते हैं, तो मंदिर में जाओ तो हर समय वहाँ पर चरण अमृत होते हैं, तो उसे देते हैं पंडित, तो उसमें मीठा सा भी होता है कुछ, तो उसमें कुछ और डालते हैं।
0: हाँ,
2: जल होता है पानी की तरह, पानी है चरण अमृत है, पर उसमें चीनी भी डालते हैं या कुछ और?
0: अलग अलग सबको, सब लोगों का, कुछ लोग तो केवल जल ही देते हैं और कुछ लोग उसमें चीनी और दूध मिश्री डाल के देते हैं। तो अलग अलग प्रकार, अलग अलग मंदिरों की अलग अलग परंपरा है, उनकी जो बना रखी है, लेकिन तुलसी और गंगा जल जरूर डालते हैं,
2: उसमें मिलाया जाता
0: जी।
2: है। तो दोस्तों, हर कोई सुख की चाबी ढूंढ रहा है, लेकिन सवाल ये है कि सुख को ताला किसने लगाए है? शांता जी, आप भी कुछ कहने वाले थे।
1: सुख के ताला किसने लगाए?
2: मुझे नहीं पता, मीनू साबी। राजेंद्र जी, सुख का ताला किसने लगा दिया?
0: हमने तो लगाया नहीं।
1: हम तो लगाए नहीं।
2: हमने भी नहीं लगाए। तो ये भी हो जाता कि परमात्मा कभी भाग्य नहीं लिखता है। जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार एवं हमारे कर्म ही है हमारा अभाग्य लिखते है। तो राजेंद्र जी, क्यों ना हम सब एक सुंदर से गीत की ओर बढ़ते, फिर उसके बाद में हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे।
0: जरूर।

0: राधिका गोरी से, ब्रज की छोरी से, बहुत ही सुंदर जो भजन था।
1: मैया करा दे मेरो ब्याह, राधिका गोरी से, ब्रज की छोरी से, मैया करा दे मेरे ब्याह। इसमें मैया कहते कि तेरा उम्र छोटी है, नज़र खोटी है, फिर भी कन्हैया से के ये बात समझ में नहीं आते हैं और कहते हैं माँ जो ब्याह नहीं कराएंगे तो तेरे पास नहीं आऊँगा। पर ये बात तो है राजेंद्र जी, चरण अमृत, इसके बारे में वृतांत हम लोग का आज पूरा करना है और समय
0: क्यों ना आगे बढ़ा जाए,
1: समय का कमताई और काम का दबाव।
0: हाँ, इसलिए यह मान्यता है कि भगवान का चरणामृत औषधि के समान है, यदि उसमें तुलसी पत्र भी मिला दिया जाए तो उसके औषधीय गुणों में और भी वृद्धि हो जाती है। कहते हैं सीधे हाथ में तुलसी चरणामृत ग्रहण करने से हर शुभ या अशुभ काम का जल्द प्रमाण मिलता है, इसलिए चरणामृत हमें सीधे हाथ से लेना चाहिए। लेकिन चरणामृत लेने के बाद अधिकतर लोगों की आदत होती है कि वे अपना हाथ सिर पर फेरते हैं। चरणामृत लेने के बाद सिर पर हाथ रखना सही है या नहीं, बहुत कम लोग जानते हैं। दरअसल शास्त्रों के अनुसार चरणामृत लेकर सिर पर हाथ रखना अच्छा नहीं माना जाता।
1: ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि ये हमें पता नहीं थे।
0: हाँ,
1: हम ज़्यादा तादाद में देखते हैं लोग करते हैं।
0: हाँ, कहते हैं कि इससे विचारों में सकारात्मकता नहीं बल्कि नकारात्मकता बढ़ती है, इसलिए चरणामृत लेकर कभी भी सिर पर हाथ नहीं फेरना चाहिए। तो इसलिए जो लोगों को ये जानकारी रेडियो के माध्यम से मिली वो दूसरे लोगों को बता सकते हैं। और यहाँ तो बहुत सारे लोग 40 मंदिर हैं और उनके जो मानने वाले वो एक दूसरे को बता सकते हैं और शेयर कर सकते हैं।
2: हाँ, ऐसा है।
0: तो आज बहुत दिनों के बाद हमें जो समय मिला है, नाम हमारा प्यारा देश उसकी ओर बढ़ेंगे, उससे पहले शांता जी कुछ कहना चाह रही हैं, बताइए।
2: हाँ जी राजेंद्र जी, जैसे हमने आपको समझा तो जो चरणामृत हाथ में मिले ना, रेखतर हाथ में, दाहिने हाथ में, तो उसका लेकर माथे पे ऐसे लगा कर ग्रहण कर लेना। और जब ग्रहण करने के बाद हम देखे वाक्य में लोग अपने सिर पर पोंछ लेते हैं ना, ऐसे लगा लेते हैं,
1: सही बात, सही।
2: पर वो नहीं करना
1: वो
2: चाहिए,
1: वो नहीं करना चाहिए।
2: ग्रहण चरणामृत ग्रहण करने के बाद सिर पर नहीं पोंछना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ताकि जो पोंछने हैं जो लोग पोंछते हैं तो उसको नकारात्मक उस पे वास करते
0: हैं। हाँ, दो प्रकार के
1: कहने के तो ये है दोस्तों कि ईश्वर दुनिया का सबसे बड़े डॉक्टर है और प्रार्थना दुनिया का सबसे बड़ी दवा है। क्यों ना हम वो गीत की ओर बढ़ते राजेंद्र जी, जो हम अपने सूरीनाम वासी, हमारे सभी सूरीनाम के लिए जो इस समय सूरीनाम से भी कार्यक्रम को सुनते हैं और दुनिया के हर एक कोना में जो कार्यक्रम को सुना जा सकता है, तो सूरीनाम हमारा प्यारा देश, फिर उसके बाद में हम सब धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ेंगे।
0: जरूर।

नाम हमारा प्यारा देश तुझ पे मरने को इनकार नहीं। सूर्य नाम का एक बड़ा हमें जो गाना अच्छा लगता है वो, क्योंकि मैंने चाहा कि बहुत दिनों से लोगों ने सूर्य नाम हमारा प्यारा देश दो शब्द ना सुने होंगे तो इसलिए हमने चला दिया। अब हमारा समय आगे की तरफ बढ़ता हुआ अपना पूर्ण विराम लेते हुए लागी छूटे ना सनम अब तो, जो कि हमारा लास्ट गाना रहता है और उसमें हम भी अपना रखते हैं, क्यों ना उस गाने की ओर बढ़ा जाए।

और जाते जाते ज़रूर कहूँगी कि मन तुलसी का दास है, मन तुलसी का दास है, वृंदावन है धाम, सांस सांस में राधा बसे, रोम रोम में शाम। तो सुनने वालों, आपको जो यहाँ से प्रोग्राम जो पेश किया, ये आशा उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे और हमारे प्रेम भरी प्यार भरी राम राम प्रणाम स्वीकार करें।

दूर हूँ फिर भी लेकिन रेडियो के माध्यम से नजदीक ही आ जाता हूँ। तो एक छोटा सा जो रेडियो फाहून के श्रोता है, एक बार एक मायके से पत्नी ने फोन पर बोला कि अपनी वाइफ को, वाइफ बोलती है कि आपके बिना जी नहीं लगता। तो हस्बैंड कहते हैं कि अरे पगली, जी नहीं लगता तो स्टार और सोनी लगाकर देख लिया कर, वो भी अच्छे चैनल है। तो इसी प्रकार से हम कह रहे हैं कि आज के जो श्रोता हैं उनका भी अगर प्रोग्राम में जी नहीं लगता तो क्यों ना वो हर बार की भांति हर प्रोग्राम देखा करे तो जी लग जाया करेगा, सुना करें। तो उसी ओर बढ़ते हुए सब लोगों को, जो लोग हमारे श्रोता हैं उनको बहुत बहुत प्रेम भरा नमस्कार, और फिर मिलेंगे अगली बार। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया, जय श्री राम।

जिंदगी छोटी नहीं होती है, लोग जीना ही देरी से शुरू करती है। जब तक रास्ते समझ में आते हैं, तब तक लौटने की वक्त हो जाते हैं। बस यही जिंदगी है दोस्तों। आज के कार्यक्रम यहाँ अपना समाप्ति पे आकर के पहुँच गए और आशा यही है कि कुछ ना कुछ संदेश आपके लिए ज़रूर पहुँचे होंगे। और शांता जी जो हमारे कार्यक्रम में सहयोग दिए, भाई राजेंद्र जी जो पैनल के पे अच्छे और से हम सबको अपना सहयोग दिए, मैं हूँ सेवक संजय, सभी को एक शुभ रात्रि नमस्कार कहते हुए फिर अगले कार्यक्रम तक।

दोस्तों प्यार की प्यार भरी सॉन्ग आज हम आप लोग को और सुनाएंगे, कुछ शायरी भी आप लोग को हम आज सुनाएंगे और लवली लवली सॉन्ग फन यारन 89 tot en met en vanaf 80 90 95 के प्रोग्राम आज हम आप लोग को सुनाएंगे। जॉनी नंबर वन है हमारा नाम और मोहब्बत भरी प्यार भरी और दिल के धड़कन की और यानी कि बाती शायरी सुनाना है हमारा काम। और बात ये है दोस्तों कि इश्क मोहब्बत दीवानी ये बस लफ थे, जब तुम मिले तब इन लफ्जों को मैंने मिले। तो प्यार भरी शायरी आज हम आप लोग को सुनाएंगे। हम जाते हैं हम तुमको निगाहों में, हम तुमको निगाहों में घर। और इस गीत को इस फिल्म में काम किया है और यानी कि सलमान खान काम किया है दोस्तों।

आओ मिलकर सुना जाए। और ये क्या है, हमारा प्रोग्राम का नाम है मोहब्बत भरी, मोहब्बत भरी, प्यार भरी पैगाम।

को निगाहों में। और क्या क्या होता सुन लो, आप लोगों तो खुद सुना है हमारे दोस्तों। और कहते हैं कि तेरे ख्याल से खुद को छुपा के देखा है, हमारी बात सुनो दोस्तों, कि तेरे ख्याल से खुद को छुपा कर देखा है, दिल को नजर को रुला कर देखा है। तू नहीं तो कुछ भी नहीं तेरी कसम, तू नहीं तो कुछ भी नहीं है तेरी कसम, मैंने खुद कुछ पल तुझे भुला कर देखा है। और कहते हैं इश्क में तेरा यकीन बन जाऊं, इश्क में तेरा यकीन बन जाऊं, दर्द में तेरा सुकून, इश्क में तेरा यकीन बन जाऊं, दर्द में तेरा सुकून। तुम रखो कदम जहां खुदा करे, मैं वहीं जमीन बन जाऊं। तो हम जाते हैं दोस्तों, और एक प्यार भरी गीत, तुम्हारी नजरों में हमने देखा है, कल की आवाज ने हिंदी ट्विन का ये फिल्म है, और रोहित बच्चिया और प्रतिभा सिन्हा का ये गीत है, आओ मिलकर सुना जाए।

तुम्हारी नजरों में हमने देखा, और प्यार में तो एक से एक चीज झलकती है दोस्तों। कभी दांत झलक देते हैं तो कभी आंख में से आंसू गिर जाते हैं। प्यार में बहुत चीज झलक देते हैं कि कहते हैं हम आपकी हर चीज से प्यार कर लेंगे, हम आपकी हर चीज से प्यार कर लेंगे, आपकी हर बार पर ऐतबार कर लेंगे, बस एक बार कह दो कि तुम सिर्फ मेरी हो, बस एक बार कह दो कि तुम सिर्फ मेरी हो, हम जिंदगी भर आपका इंतजार कर लेंगे। दोस्तों प्यार में ये सब तो होता ही रहता है ना, कि कहते हैं नजरे करम मुझ पर इतना न कर कि तेरी मोहब्बत के लिए बागी हो जाऊं, मुझे इतना न पिला इश्क के जाम की मैं इश्क के जहर का आधी हो जाऊं। तो हम जाते हैं, वो लड़की बहुत याद आती है, फिल्म का नाम है कयामत, अलका जी और कुमार शानू सोनू निगम, जिसमें काम किया है अजन देवगन।

0: कुछ
1: और ये लड़की बहुत याद आता है, और ना सिर्फ लड़की याद आता है दोस्तों, लड़की को लड़का भी बहुत याद आता है, और लड़की को जब लड़का याद आता है तो क्या कहते हैं, लड़का कहते हैं कि तेरे प्यार पाने के लिए मैंने कितना इंतजार किया, तेरे प्यार पाने के लिए मैंने कितना इंतजार किया, और उस इंतजार में न जाने कितनों से प्यार किया। दैट वाज जोक में से प्यार करने वालों के लिए, लेकिन असली बात ये है, हमने सीने से लगाकर हमारी सारी कसक दूर कर दो, हमें सीने से लगाकर हमारी सारी कसक दूर कर दो, हम सिर्फ तुम्हारे हो जाए, हमें इतना मजबूर कर दो। तो ये प्यार भरी पैगाम, प्यार भरी मोहब्बत भरी गीत हम आपके लिए चलाते हैं, और नेखंत इंद्रिय से इवेंट की ओर हम जाते हैं। फिल्म के नाम है ब्लैकमेल किशोर जी, और क्या कहते हैं कि हमारे दिल के पास आप हो, पल पल दिल के पास।

पल पल दिल के पास और तुम रहती हो, और दिल के पास तो रहना चाहिए हमारे प्यारे प्यारे प्यारे प्यारे मोहब्बत भरी। और लोगों की कहते हैं बहुत खूबसूरत हो तुम फूल की तरह, बहुत खूबसूरत हो तुम फूल की तरह, खुद को दुनिया की नजर से बचाया करो, खुद को दुनिया के नजर से बचाया करो, सिर्फ आंखों में ख्याल ही काफी नहीं है, ख्याल में नींबू मिर्ची भी लगाया करो। और प्यार लोग जो प्यार करते हैं उसके लिए भी हम यहाँ पर कुछ लेके आया है। और कहते हैं आई सनम काश मैं भी पानी की एक घूंट होता, आई सनम काश मैं भी पानी का एक घूंट होता, तेरी लबों से लगता, तेरी रग रग में समा जाता, और तेरी चुनरिया उड़ जाते तो हमें कैसा लगता, आप खुद ही सुनिए।

और तेरी चुनरिया क्या हुआ भैया, उड़ गया है कि मैंने मोहब्बत को तो नहीं देखा है दोस्तों, मैंने मोहब्बत को तो नहीं देखा, पर लगता है ये तेरी जैसी होगी। मैंने चीखी है बहुत मिठाइयां, पर मुझे क्या पता था कि तेरी होंठों के लिपस्टिक उनसे भी मीठी होगी। तो जे कोई लिपस्टिक लगाए भैया ओके तो पता होगा कि चिजवा कैसे है। और कहते हैं किस्मत या मेरा इम्तिहान ले रही है, किस्मत ये मेरा इम्तिहान ले रही है, तड़प कर ये मुझे दर्द दे रही है, दिल से कभी भी मैंने उसे दूर नहीं किया है दोस्तों, पर क्यों बेवफा को वो इल्जाम दे रही है। और जब कोई बेवफा होता है दोस्तों तो ये गीत आपको सुनना चाहिए। तो यहां पर हम चलते हैं निहति निघ्न निघन तक का ये गीत।

0: और चाहा है तुझको और चाहेंगे हरदम। उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल फिल्म के नाम है मन नेहन तीन होंदत ए नेहन नेहन तक कहा दोस्तों। और कहते हैं किस्मत जा मेरा इम्तिहान ले रही है, तड़प कर ये मुझे दर्द से रही है, दिल से कभी भी मैंने उसे दूर नहीं किया, फिर क्यों बेवफा को वही इल्जाम दे रही है। हमारे दोस्तों और प्यार भरी गीतों का और यहाँ पर हम चलाते हैं कि प्यार का महता एहसास दिलाने लगे हो तुम, अब तो मुझसे मुझे को चुराने लगे हो तुम, तेरी चाहतों का गया है जरूर इस कदर, हर पल हर जगह नजर आने लगा हो सिर्फ और तुम, कि अजनबी मुझे इतना बता प्यार तो होना ही था।
1: सपना देखता है और वो पूरा नहीं होता, इसलिए मैंने सोच लिया है कि आज के बाद कोई सपना ही नहीं देखूंगी।
2: बस हार गई, अपनी आंखें बंद करो संजना। बंद आंखों से इंसान सिर्फ सपना ही नहीं, कभी कभी उस हकीकत को भी देख लेता है जिसे खुली आंखें कभी नहीं देख पाती। आंखें बंद करो संजना।

अजनबी मुझको इतना बता, और अजमी अजनबी आपको क्या बताएंगे। अजनबी जो है वो आंख में देख को प्यार हो जाता। दोस्तों आपको कुछ बोलना नहीं पड़ेगी, और इस फिल्म का नाम है दिस लव सॉन्ग, और ये है फिल्म का नाम है प्यार तो होना ही था, और अजय देवगन काजल ने इसमें काम किया है, उदित नारायण का गाया हुआ ये गीत है हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों की। कहते हैं तेरे खामोश होठों पर मोहब्बत गुनगुनाती है, तुम्हारी खामोश होठों पर मोहब्बत गुनगुनाती है, तो मेरी है और मैं तेरा हूं, बस यही आवाज आती है। उस लड़की पे दिल आ गया है दोस्तों, कुमार शानू और नाइटिंगेल लता मंगेशकर, दिया मिर्जी, अनुराधा पौडवाल।

उस लड़की पे दिल आ गया है दोस्तों, और कुमार शानू ने तिलगी लता जी और इस गीत को सुनाया है दोस्तों। और हम चलते हैं अगला गीत की ओर, वो है, और अगला गीत से पहले दोस्तों हम जाते हैं रे कलाम की ओर। हमारे प्यारे दोस्तों, मोहब्बत भरी रात है, और मोहब्बत भरी रात में प्यार भरी गीत बहुत अच्छा लगता है। तो हम जाते हैं, देखा तुझे तो हो गया दीवाना, देखा तुझे तो हो गया दीवाना, और मिलकर सुना जाए, देखा तुझे तो हो गया दीवाना।

देखा तुझे तो हो गया दीवाना। और दोस्तों हम अपना प्रोग्राम को दोस्तों यहाँ से कुछ मिली जुली पुरानी और नए गाने से हम आप लोग को सेवा करते हैं, सेवा करेंगे दोस्तों। और आपको हम यहाँ से खुश करेंगे और आप जहाँ भी हो हमारा प्रोग्राम आप सुनते रहो, या गाड़ी में बैठे हुआ होगा, या घर में, या कमरे में, या श्रीनाम देश में, या जहाँ भी हो हमारा रेडियो फाहुन के प्रोग्राम आप लोग बस सुनते रहो। और आपको हम प्यार भरी गाना, पुराने गाने, कुछ नए नए गाने से हम आपको सेवा करेंगे। अब देखा जाए कोई बता दे दिल है कहाँ, आपको मालूम है कि आपका दिल कहाँ है। एक द्वैत सॉन्ग की ओर हम जाते हैं, फिल्म के नाम है मैं चुप रहूंगी और सुनील दत्त मीना कुमारी का ये गाना है हमारे दोस्तों।

कोई बता दे ये दिल है यहाँ और दर्द भी वही होता है दोस्तों, जिसका दिल होता है उसका दर्द भी वही बताते हैं कि कहाँ होता है। और ये फिल्म मैं चुप रहूँगी के ये गाना हमने निकाला है, सुनील और मीना कुमारी का ये फिल्म है दोस्तों। और अपना प्रोग्राम को हम अगला गाना की ओर जाते हैं, मस्त भरी पुराने गाने की ओर हम आप लोग को सुनाएंगे। लता जी और मोहम्मद रफी जी क्या गाया है, शमी कपूर का ये फिल्म प्रोफेसर है और ये गाना मैं चली आप सभी लश्कर के लिए है जो तार करते हैं।

और मैं चली और कहाँ चली, आप तो अपने जानते हैं कि कहाँ चली। और लता जी और मोहम्मद रफी का ये गाना फिल्म प्रोफेसर से हमने निकाला है और इसमें काम किया है शमी कपूर ने ये फिल्म में। दोस्तों और अगला गाना की ओर हम चलते, मस्त भरी गाना हम आप लोग को आज के प्रोग्राम में सुनाएंगे। आप तो जानते हैं दोस्तों पुराने गाने में और कितनी मजा है। कहते हैं कितना हसीन है मौसम, और मौसम कब हसीन होता है जब अगर आप के दिल में कुछ गुनगुनाते हैं, आपके पेट में कुछ खुजली होता है। तब चाहे बारिश के मौसम भी होगा, चाहे जो भी मौसम होगा, लेकिन आपको हसीन जरूर लगेगी। फिल्म आजाद का ये गाना है जो हम आप लोग को अभी सुनाएंगे। दिलीप कुमार मीना कुमारी ने इस फिल्म में ओल्ड रोमांटिक हिट्स दोस्तों कितना हसीन है ये मौसम।

अगर जो आपके साथी जो है और वो जो खूबसूरत है तो मौसम के ये खबर हो जाता है, तो मौसम जो भी होगा वो आपको अच्छा लगेगा। फिल्म आज़ाद का ये फिल्म नई 355 तक का दिलीप कुमार मीना कुमारी ने इसमें काम किया है दोस्तों। और हम आगे को बढ़ते हैं, फिल्म तीसरी मंजिल की ओर हम जाते हैं। ओ हसीना जुल्फों वाले और जाने कहाँ, इसमें शमी कपूर, हेलन, आशा परेख इसमें काम किया है दोस्तों। रफी जी और आशा भोसले आपको क्या सुनाते हैं, आओ मिलके हम दोनों, हम सब मिलके सुना जाए।

बसे ओ हसीना जुल्फों वाले जाने जहां, और आपके जुल्फों भी क्या इतनी सुंदर है हमारे दोस्तों। फिल्म तीसरी मंजिल का ये गाना हमने निकाल कर आप लोग के सुनाया है, और इसमें काम किया है शमी कपूर जी और हेलन जी, और गाना को गाया है भाई आशा मोहम्मद रफी जी और आशा भोसले। दोस्तों हम चलते हैं अगला गाना का ओर, वो है मेरी हमसफर लता जी और मुकेश जी की ओर हम चलते हैं। और इसमें ये गाना भी एक बहुत पुराना फिल्म है भाई, और आप लोग को हम सुनाते हैं मेरे हमसफर फ्रॉम लता मुकेश जी।

मेरे हम सफ़र हो मेरी हम सफ़र, लता मंगेश का ये गाना हमने आप लोग के लिए चला दिया है हमारे सुनने वालों। उसके बाद हम चलते हैं मेरे भू मेरे महबूब कयामत होगी, फिल्म के नाम है मिस्टर एक्स इन बॉम्बई, नेहा इन फिर सस्ता का ये गाना हम आपके लिए चलाते हैं।

मेरे महबूब कयामत होगी, मिस्टर एक्स बम्बई 1964 किशोर जी आप लोग की सुनाए हैं, और किशोर ने अगर महबूब के बारे में सुनाते हैं तो क्यों नहीं मुकेश और लता के ओर हम बढ़ते हैं, जो भी महबूब मेरे के गाना है पत्थर की सनम 1964 जिसमें मनोज कुमार ने काम किया है दोस्तों।

0: फिल्म पत्थर का सनम, पत्थर के सनम, नई गति 67 इस गाना का हमने निकाला है, जिसमें मनोज कुमार ने काम किए हैं और मुकेश और लता जी इस गाना को और गाया है दोस्तों। और आगे हम चलते हैं, एक दो और मुकेश के गाना हो जाए, फिल्म यादगार की ओर हम बढ़ते हैं। हमारे प्यारे सुनने वालों,
1: किसी ने आवाज दी और कहा कि मैं भी साथ चलूंगी, तो कदम साथ चले, टेढ़े रास्तों पे साथी का साथ छूट गया, साथ ही लौट जा, मेरा जीवन तपते हुए रेगिस्तान समान है, मेरा पथ बहुत कठिन है, बहुत टेढ़ा है,

जिसे पद पे चला उस पद पे मुझे मुझे लता जी फिल्म का नाम है, याद गांठ से इस गाना को हमने निकाल दिया है। हमारे प्यारे सुनने वालों, हम अगला गाना की ओर चलते हैं। मैं जिस दिन बुला दूंगी तेरे प्यार उस दिन क्या होगा, लता और अमित कुमार का ये गाया हुआ ये नंबर हम चलाते हैं।

भाई जिस दिन भुला दूंगी तेरी प्यार, उस दिन ये आंखें क्या होगा। सुनने वालों आपने खुद ही सुना है, हम चलते हैं, ये है दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे मन में शमाई है। और ये फिल्म, ये मुकेश जी ये गाना को आपको सुनाएंगे, मुकेश जी का ये गाना है।

दुनिया बनाने वाले क्या तेरी मन में समाई और ये दुनिया काहे को बनाई। मुकेश जी हम जाते हैं और राहुल दुर्बिन के सांच में और जब हम जमा होगी फिल्म बेताब का ये गाना नेहत इंद्रियन तख्त का ये सॉन्ग है।

जब हम जवां होगे और जब हम जवां होगे तो तुझे हम याद, तुझे याद हम करेंगे दोस्तों। और ये बहुत नेक इंद्रिय तख्ता ये फिल्म है, जब हम जवां होगे।

वक्रतुंडा महाकाया सूर्यकोटि संप्रभा निर्विदिनं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा।

ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरुर साक्षात पार ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः।

नमः माता पिता चरणम नमः विद्या प्रदायकम दीक्षम मंत्रम गुरु वंदे वंदे गुरु पद पुनम पुनम।

सुनने वालों की सेवा में मैं हूँ आपका सेवक संजय और आपके साथ जुड़ गई है। सभी को एक शुभ प्रभात कहता हूँ।

जो बीमार है उनके लिए प्रार्थना किया जाता है भगवान से कि उनके स्वास्थ्य में परिवर्तन आए। जिसके घर पे दुख है भगवान से यही विनती प्रार्थना किया जाता है कि आपका दुख निवारण होए। जिनका घर में नया बच्चे ने जन्म लिए है परिवार को हार्दिक से स्वागत किया जाता है।

जो अपने तैयारी कर रहे हैं नौकरी के जाने के लिए, तो आपको कहा जाता है कि आपको फाइन अदाख्तु खवंस। जो तैयारी में लगे हुए हैं स्कूल यानी कि अपने पढ़ाई की ओर बढ़ने के लिए, तो ये जरूर कहूँगा कि माँ सरस्वती को भूलना नहीं। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। जो अभी तैयारी कर रहे हैं अपने सफर के लिए या कहीं और जाने के लिए, तो ये मत भूलना कि श्री गणेश पहले तो आगे कार्यक्रम चलता है। जो और देश से हॉलैंड देश में और आए हैं फकांसी के लिए, तो आप सभी को हार्दिक से स्वागत किया जाता है। ऐसा सोचिए कि आप एक सुंदर सा देश में आए हैं। देशों में जो एक सुंदरता हॉलैंड के है, आप जरूर दर्शन करके दे आइए। और जो आज अपना मन में ये रख रहे हैं कि हमें अब सफर पे जाना है, हमें कुछ दर्शन करना है, तो जरूर आप अपना तैयारी में लगे रहिए। क्योंकि कहते हैं कि ये सुंदर काया को हमें जो प्राप्त हुए है, इनके लिए तो देवताओं भी तरसते हैं। और जब तक ये सुंदर सा काया हम सबके है, हम ना सिर्फ सत्संग ना सिर्फ सफर पर जो चाहे और अपने सुंदर शरीर से यानी कि अपने जीवन में जो करना चाहे, पढ़ना लिखना कुछ भी करना चाहे तो कर सकते हैं। क्योंकि संतों ने कहा है कि किस कारण हम इस दुनिया में आए हैं, जरा सोचो सरा और समझो सरा।

कहते हैं कि आने के बाद एक दिन जाना भी है और जाना कहाँ है बस यही बात को पता नहीं है।

सभी को एक शुभ प्रभात कहते हुए कुछ भजनों के साथ कार्यक्रम को श्री गणेश करते हैं।

सुनवालों कहते हैं कि केवल रक्त संबंध से ही कोई अपना नहीं होते हैं। प्रेम, सहयोग, विश्वास, निष्ठा, सुरक्षा, सहानुभूति और सम्मान, ये सभी ऐसा भाव है जो पराये को भी अपना बना देते हैं।

को मन से शक्ति देना। कहते जो चीज हाथ में ना हो उन्हें मन से भी आजाद कर देना चाहिए।

सुनने वालों सभी को एक शुभ दिवस प्रस्तुत करता हूँ। अब ये कहना चाहता हूँ कि आपका रेडियो इस समय चुन है फाहुन एफएम पे, जो इंटरनेट द्वारा दुनिया के हर एक देशों में सुना जा सकता है।

जो इस समय तैयार हो रहे हैं अपनी नौकरी पे जाने के लिए या सफ़र कर रहे हैं, तो आपको बहुत सा और ये कहना चाहूँगा कि अंदाख फॉल फ्रोइद। और गांधी जी का ये संदेश बोलना मत। उन्होंने ऐसा कहा था कि हमारे जो देश है हमारे लिए क्या कर सकते हैं ये सोचना कोई गलत बात नहीं है, पर हम अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं ये सोचना ये समझने वाला बात हो जाता है। गांधी जी का ये बात भी आपको जरूर ख्याल होगा कि बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो।

कहते हैं कि उदासियों के विजय तो बहुत है जिंदगी में, कहने के तात्पर्य है उदास होने का वजह तो बहुत होते हैं जिंदगी में, पर बेवजह खुशी रहने का मजा कुछ और है।

कोई तराजू नहीं होते हैं रिश्तों का वजन तोलने के लिए, कहते हैं कि कोई तराजू बना ही नहीं जो रिश्तों का वजन तोलने के लिए, पर कहते हैं एक परवाह बताती है कि ख्याल की पड़ला कितना भारी है।

कहते हैं कि गरीबों की दुनिया जीने नहीं देते, पर इस बात पे किसी ने और कुछ लिखा है कि स्पष्ट बोलने वाले व्यक्ति इंजेक्शन की तरह होती है। स्पष्ट बोलने वाले व्यक्ति इंजेक्शन की तरह होती है, इसमें दर्द थोड़ी देर का होता है लेकिन फायदा जीवन भर रहता है।

कि जिंदगी की हर ठोकर ने बस एक ही सबक सिखाया है। जिंदगी के हर ठोकर ने बस एक ही सबक सिखाया है कि रास्ते कैसे भी हो, सिर्फ अपने पैरों पर भरोसा रखो। रिश्तों का बगिया

सुनने वालों, ये फिल्म जो बनाया गया 1977 में, 1977 में बनाया गया फिल्म, एक फिल्म जिसमें बड़े बड़े कलाकारों ने काम किया, जैसे कि विनोद खन्ना, ऋषि कपूर, अमिताभ बच्चन, नीतू सिंह, प्रवीण भाभी, शबाना आजमी, निरूपा रॉय, प्राण और जीवन।

एक फिल्म जो पिक्चराइज किया गया था, जिसमें तीन बच्चे जो बिछड़ जाते हैं और फिर पालन पोषण जो अनेक अनेक संप्रदाय में होता है, एक जो जा कर के पुलिस बनते हैं, दूजा कवाली गाते हैं और तीसरा जो जा कर के बाहर की

शिरडी वाले साई बाबा, फिल्म जो बनाया गया है 1977 में, कहा जाता है कि 184 मिनट तक, जिनका रन टाइम यानी कि कुछ 3 घंटा का फिल्म जो जिनका और रिलीज डेट 1977 में हुआ था, उस समय जो ये फिल्म बनाया गया था और जिनका लेखक खास करके कादर खान जी ने और ये फिल्म को फिल्म का राइटर कहलाए हैं, यानी कि उन्होंने फिल्म को जो डायलॉग से अपना और सजाए हैं और डायरेक्ट जो किया गया है मनमोहन देसाई के जरिए। सुनने वालों, ये एक ऐसा सुंदर फिल्म जो बनाया गया था उस समय के बात है, जो काफ़ी और चला बॉक्स ऑफिस में और जा करके जिनमें बड़े बड़े एक्टर्स अपना सहयोग दिए। इनमें से सबका अपना अपना होता है, तो हमें जो उस समय का एक्टर हुआ करते थे जीवन, जिनका डायलॉग का और प्राण जो होते थे जो उस समय पे और अपना कला से प्रदर्शन करते थे, तो कितना खूबियाँ होते थे उसके। हम एक और इसी फिल्म से निकाला गया गीत रखने की कोशिश करेंगे।

अमर अकबर एंथोनी फिल्म से निकाला गया जिसमें मुकरी का रोल भी बड़ा अजीब था, प्यार का दुश्मन बना रहा। और ये सुंदर सा फिल्म जो निकाला गया 1977 में, जो एक सुपर डुपर हिट फिल्म बनी। सुनने वालों, हम अगला गीत जो आपके एक शुभ दिवस प्रस्तुत करते हुए एक सुंदर सा गीत की ओर हम बढ़ने वाले हैं।

ये फिल्म जो पिक्चराइज किया गया पुष्पा शर्मा जी का स्टोरी, पुष्पा शर्मा जी का स्टोरी आईडी, उनके आइडिया से ये फिल्म को और लिखा गया। जिनमें कुछ कलाकारों अब नहीं है दुनिया में, अगर शायद आप अभी ये फिल्म देखे नहीं होंगे तो मैं कौन होता हो आपके सजेस्ट करने के लिए। यूट्यूब पे आप जरूर देख सकते हैं, कुछ 3 घंटा का फिल्म। इसमें ये सीख हमें मिलते हैं कि शायद हमारे और हम अपने भाइयों के साथ बिछोड़ गए होंगे, बहनों के साथ बिछोड़ गए होंगे। आज वो परिस्थिति आ गया कि शायद एक दूसरे को देखने को और तरसते हैं। तो जरूर इस फिल्म को देखें और इस पे जरूर अपना जो 2 घोड़े होते हैं हमारे दिमाग में, एक का नाम पॉजिटिव और दूसरा का नाम नेगेटिव, उनके इसके बारे में सोचने के अवसर दीजिए। क्योंकि कहा जाता है जिसके आप ज्यादा खुराक देंगे वो ही जीतेगा।

सुनने वाले, ये फिल्म याराना से निकाला गया ये सुंदर सा गीत, एक फिल्म जो 1981 में रिलीज हुआ, 1981 में रिलीज हुआ ये फिल्म, जिसमें स्टारिंग अमिताभ बच्चन, अमजद खान, नीतू सिंह, तनुजा और कादर खान अपना कला से प्रदर्शन दिए। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि याराना वही होता है। इस गीत को जब हम चलाते हैं तो हमें भी इस बार को हर बार याद आ जाते हैं कि हमारे पुराने रेडियो का कलीगा जैसे महेंद्र भाई, मित्र मनोज और इसी प्रकार से कितने जो दोस्तों अब साथ में नहीं है, तो जो साथ में है उन्हें हम जरूर याद करें और उनसे मिलते रहे, क्योंकि कहा जाता है हम मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। एक और सुंदर सा गीत की ओर हम बढ़ेंगे।

एक और फिल्म जो फिल्म 1981 में बनाया गया था, नसीब फिल्म से एक सुंदर सा गीत आपके लिए प्रस्तुत किया जाता है।

0: सुनी।
1: आप? आपने तो कहा था कि
0: ठीक ही तो कहा था। फाइव स्टार होटल में रहता हूँ, भूखों को खाना खिलाता हूँ। ये वो साहब है ना, उन्होंने ये चिट्ठी दी आपको, रात को खाने पे बुलाया।

ये गीत जो निकाला गया फिल्म का नाम नसीब, जो 1981 में रिलीज हुए 1 मई 1981 को, अ बॉलीवुड एक्शन थ्रिलर हिंदी रोमांटिक म्यूजिकल मूवी जिसका डायरेक्टर मनमोहन देसाई जी ने बड़े बड़े एक्टरों के साथ और इसमें काम किए, जैसे कि अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, ऋषि कपूर, हेमा मालिनी, रीना रॉय, किम प्राण, प्रेम चोपड़ा, शक्ति कपूर।

जिंदगी आ बैठ, है जिंदगी आ बैठ, कहीं चाय पीते हैं, तू भी थक गए होंगी मुझे भगाते भगाते। सुनो लो, मैं हूं आपका सेवक संजय और यहां तक मैं आपके साथ जुड़े आ रहे। आशा ये रखता हूं कुछ सुंदर सुंदर गीतों के साथ चलाया गया। और यही आशा करता हूं कि कुछ ना कुछ आपको अच्छा जरूर लगे होंगे। सुनने वालों, अगर आपको कोई ऐसा लगा हुआ होगा कि हमें अब अपना और सफ़र की ओर करना है, यानी कि सफ़र करना है अपना, और कोई प्रकार से जैसे भारत और ऐसे मलेशिया, कितने सुंदर सुंदर देश हुए जहां देखने के चीज़ बहुत है, जैसे कि कहीं भी जा सकते हैं और अपना सफ़र करने के, यानी कि फकम सिफिरन

जरूर अपना ध्यान रखना और ये बात मत भूलना, सबको अपने कर्मों का पता होता है, यूं ही गंगा पर भीड़ नहीं होता। सभी को एक शुभ दिवस। नमस्कार।

से प्यार हुआ है अलका याग्निक और उदित नारायण जी की आवाज़ में हम मिलकर सुने सुने वालों की तुमसे बस प्यार हुआ है।

सब मिलकर सुने आशा भोसले जी की आवाज़ में, फिल्म का नाम ताल, इसमें संगीत दी है आर डे बर्मन साहब जी ने।

गोरिया चुराना ये दिल, जो हम सपने सुने सुने वालों, और ये सुंदर सा गीत निकाला गया है कुली नंबर वन से। और हम देखें तो इसमें जो अपना गीत का आवाज जो गाए है अभिजीत और चंदना दीक्षित जी ने,

यहाँ से हम मिलकर सुनेंगे कि इश्क बिना, हाँ जी इश्क बिना सुनेंगे हम, फिल्म ताल से निकाला गया है ये सुंदर सा गीत।

आर रहमान के साज और संगीत में जो सुनने वालों हमने सुने ये सुंदर सा गीत उदित नारायण और सपना मुखर्जी की आवाज़ में

लाइफ क्या है और आर्ट ऑफ लाइफ क्या, पार्ट और अर्थ। जिंदगी में मुश्किलों का आना, जिंदगी में मुश्किलों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, और उनमें से हंस कर बाहर आना आर्ट ऑफ लाइफ है। खुश रहने के मूल मंत्र सुनिए जी, जहाँ कदर नहीं वहाँ जाना नहीं चाहिए, जहाँ कदर नहीं वहाँ जाना नहीं चाहिए, जो पछता नहीं वो खाना नहीं चाहिए, जो सुनता नहीं उसे समझाना भी नहीं चाहिए, जो सत्य पर भी रूठे, जो सत्य बोलने पर भी रूठे तो उसे मनाना नहीं चाहिए, जीवन में तकलीफें आए तो घबराना नहीं चाहिए, मौसम की तरह जो दोस्त बदले उसको भी बनाना नहीं चाहिए।

मेलोडी ऑफ लाइफ फिल्म सूर से निकाला गया है। महालक्ष्मी आयर से सुने वालों, हमने सुने कि कभी शाम ढले तो दिल में आ जाना। जो बदल जाए वो प्यार कैसा, जो बदल जाए वो प्यार कैसा, जो छोड़ जाए वो साथ कैसा, जो बदल जाए वो प्यार कैसा, और जो छोड़ जाए वो साथ कैसा।

खामोशी बहुत कुछ कहती है, खामोशी बहुत कुछ कहती है, कान लगा कर नहीं दिल लगा कर सुनो। आईना के सामने खड़े होकर, आईना के सामने खड़े होकर खुद से माफ़ी मांगे, आईना के सामने खड़े होकर खुद से ही माफ़ी मांगे। सबसे ज़्यादा अपने ही दिल, सबसे ज़्यादा अपने ही दिल को दुखाया है, औरों को खुश करते करते ठोकर नहीं खाएंगे जनाब, तो कैसे जानोगे कि आप पत्थर के हो या शीशे का। जो बीत गया उसे जाने दो, जो बीत गया उसे जाने दो, आने वाला है, आने वाला है सुनहरा कल, बस उसे आने दो।

करो और प्यार करो। सुंदर सा गीत यहाँ आपके सेवा में जो नशर किया गया है आज इस सुबह के कार्यक्रम में सुनने वालों, यहाँ से आपको बहुत सारी बधाइयाँ पेश किया जाता है।

टंडनके ये फिल्म जो हम उस फिल्म से जो हमने आपके लिए निकाली है और आपने सुने हैं, फिल्म का नाम मोहरा। जी हाँ, जिंदगी जिंदगी तुम बहुत खूबसूरत हो। जी हाँ, जिंदगी तुम बहुत खूबसूरत हो, इसलिए इसलिए मैंने तुम्हें सोचना बंद और जीना शुरू कर दिया हूँ।

सबसे बड़ा तोहफा है हमारी जिंदगी, और उसको वैसे ही ट्रीट कीजिए। जिंदगी के अंदर जो भी मुकाम आए, जैसी भी चीजें हो, अच्छा हो बुरा हो, कभी अंधेरा हो कभी उजाला हो, हर चीज को रिस्पेक्ट कीजिए और जिंदगी में ग्रेस रखिए हर इंसान की तरफ। हर इंसान जो भी आपसे जो भी बात करेगा वो अपनी मुसीबत के हिसाब से करेगा, अपनी हैसियत के हिसाब से करेगा, कभी गलत बात भी बोलेगा, ऊंची बात भी बोलेगा। जब आप काम करेंगे, जब आप बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर नौकरी हासिल करेंगे, आपका हमेशा झगड़ा रहेगा, जो मेरा जूनियर है वो ऐसी बात करता है, मेरा सीनियर जो है ऐसी बात करता है। लेकिन सब जो है जिंदगी से जूझ रहे हैं, इस जिंदगी में कुछ बनने की कोशिश कर रहे हैं। सो वो ग्रेस जो है, वो लीवे जो है, हर किसी को दीजिएगा जो आपके साथी हैं, जो आपके साथ साथ काम कर रहे हैं, जो आपका साथ काम नहीं भी कर रहे और जो आपका साथ नहीं भी दे रहे। ग्रेस से बड़ी चीज आप जिंदगी को वापस नहीं लौटा सकते। जिंदगी एक खुद ही सबसे बड़ा तोहफा है हमारी जिंदगी, और उसको वैसे ही ट्रीट कीजिए। जिंदगी के अंदर जो भी मुकाम आए, जैसी भी चीजें हो, अच्छा हो बुरा हो, कभी अंधेरा हो कभी उजाला हो, हर चीज को रिस्पेक्ट कीजिए और जिंदगी

जाने कहाँ दिल खो गया, फिल्म दिल से सुंदर सा गीत जो निकाले गया है और यहाँ से मिलकर इस सुबह की आज की तारीख में हम यहाँ से सुने और श्रवण की है।

जाने कब आके दबे पाँव, जाने कब आके दबे पाँव, गुजर जाती है मेरी हर सांस। जाने कब आके दबे पाँव, गुजर जाती है मेरी हर सांस। मेरे जिस्म पुराने

दम धमादम ये सुंदर सा गीत और यहाँ से मिलकर हमने सुने हैं। गुजर जाते हैं खूबसूरत लम्हे, गुजर जाते हैं खूबसूरत लम्हे, यूं ही मुसाफिर की तरह यादें वही खड़ी रह जाती है, यादें वही खड़ी रह जाती है रुके रास्तों की तरह। उदित नारायण की आवाज़ में।

जी हाँ, तू है मेरी किरण फिल्म डर से और उदित नारायण जी की आवाज में हमने यहाँ पर और सुने हैं। चूम लेता हूँ हर मुश्किलों को, चूम लेता हूँ हर मुश्किलों को मैं अपना मानकर। बहुत अच्छी लाइन है, सुनिए जी। चूम लेता हूँ हर मुश्किलों को मैं अपना मानकर, जिंदगी कैसी भी है, जिंदगी कैसी भी है,

जाएंगे और प्यार में ही मर जाएंगे, सुंदर गीत फिल्म मोहरा से निकाला गया। एक उम्र के बाद उम्र कहते हैं लाइफ डेथ के, एक उम्र के बाद उस उम्र की बातें, एक उम्र के बाद उस उम्र की बातें बहुत याद आते हैं, एक उम्र के बाद उस उम्र की बातें उम्र भर याद आते हैं, पर वो उम्र फिर उम्र भर नहीं।

तुमसे प्यार हुआ है अलका याग्निक औरो। उदित नारायण जी की आवाज में हम मिलकर सुने सुने वालों की तुमसे बस प्यार हुआ है।

घर में कोई शादी हुआ, कोई भी उत्सव हो, फौरन हिंदुस्तानी रेडियो की तरफ से मुबारकबाद और बधाइयाँ पेश है। मुझसे पहले आप शांता जी के कार्यक्रम सुने। शांता जी, फौरन हिंदुस्तानी रेडियो की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद दिया जा रहा है, सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से, डायरेक्टर की तरफ से, और मैं भी अपने की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ कार्यक्रम के लिए। बस आप आहिस्ता घर जाइए और एक शुभ शाम पेश किया जा रहा है। यहाँ से मैं हूँ आपका सेवक गंगा और रहूँगा करीबन 3 बजे तक। आशा उम्मीद के साथ आप हमारा साथ अवश्य दोगे, ऐप से, तार से, कुछ कहकर। बहरहाल आप जहाँ भी होंगे, जो भी कर रहे होंगे, जिस देश में भी होंगे, सुबह होगा, शाम होगा, रात्रि होगा, अभी तो फुटबॉल नहीं है। बहरहाल आप सबका हृदय से स्वागत है दन हाग शहर से। Donderdag 25 juni है, 25 तारीख जून है, आप तत्पर है, जो लोग जून की मीटर पर, आप एक बार फिर स्वागत है। चलिए, मौसम तो शानदार है, गर्म है। बहरहाल अब बोल दूंगा कि गर्म है तो तू भी कहेगा गंगा तू तो सूरीनाम के पैदा हुआ यार, तुझे कैसे गर्म लग रहा है। इसलिए चुपचाप बैठा हूँ यहाँ, हिलता डोलता हूँ कम। और चलिए हम आपको एक लहलहाती हुई ये गीत आपको सुनाते हैं इस तरह से। बस ये सोमर का महीना का गीत था।

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

एवरग्रीन किशोर कुमार और लता जी मिलके आपको सुनाए। ये गीत हमने पेश की शिव हरी के साज पर फिल्म सिलसिला में से निकाल कर। आप चून है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर, जो लोग चून की मीटर पर, आपका हृदय से स्वागत है। चलिए आपका स्वागत करते हुए चलिए हम पेश करते हैं ये प्यारा गीत, इस तरह से आ रहा है। जी हाँ, माइती मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस।

फिल्म मधुमति में से निकाले हैं ये शानदार गीत। मैथिली मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुनाए हैं लता जी के साथ ये प्यारा द्वैत, और हमने पेश की फाउन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा। चलिए आप भी हैं और मैं भी हूँ, जी हाँ आप भी हैं और मैं भी हूँ, तो क्या ख्याल है अगर जब मैं आपको ये सुनाऊँ। जी बस दिल थाम के बैठिए और ये गीत से लुत्फ़ उठाइए, इस तरह से आ रहा है।

प्यार की उम्र हो इतनी सनम, तेरे नाम से शुरू और तेरे ही नाम से ख़त्म। लता जी और मनमोहन सिंह, लता जी और मनमोहन सिंह मिलके आपको सुनाए हैं उत्तम जगदीश के लिखी, जी नहीं, उत्तम जगदीश का म्यूजिक है और हमने निकाले फिल्म वारिस से। प्रेम प्यार मोहब्बत के साथ आप सभी सुनने वाले श्रोताओं को हम सुनाएं ये गीत। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं और वो है एवरग्रीन किशोर कुमार जी। हाँ, एवरग्रीन किशोर कुमार आपको क्या रहा है, सुना रहा है आर डी बर्मन के साथ पर, सत्य पे सत्ता में से निकाल कर।

एवरग्रीन किशोर कुमार सत्ते पे सत्ता में से निकाले हैं और हमने पेश की ओफर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो आरदी बर्मन के साज पर, जबकि आप भी हैं और मैं भी हूँ। तो कार्यक्रम आप सुन रहे हैं तो लीजिए, अगर जब आप कार्यक्रम बहुत प्रेम प्यार मोहब्बत से सुन रहे होंगे तो चलो हम आपको सुनाते हैं ये गीत।

खूबसूरत तेरा चेहरा, नरगिसी है आंखें, वाह क्या बात है। आओ की तारीफ ही तारीफ, सर से पांव तक सिर्फ तारीफ ही तारीफ। इसे सुनाया गया फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में, जबकि आप भी हैं और मैं भी हूँ, फिल्म रूही में से निकाल कर सुरेश वादिकर की आवाज़ में पेश हुआ। चलिए हम बढ़ते हैं कार्यक्रम में फिल्म ब्लैकमेल की तरफ। नेकेट इंद्रियन सैफ तक 1973 का ये गीत ब्लैकमेल का। जानी पहचानी गीत है

पल पल दिल के पास तुम रहती हो। एवरग्रीन किशोर कुमार आपको सुनाए ये शानदार गीत ब्लैकमेल में से निकाल कर नेहत इंद्रिय से इवंत का ये गीत। आपको एक बात भी बता दूँ, जिस समय ये फिल्म बना ब्लैकमेल और कल्याण जी आनंद जी के साथ इसमें हैं, एवरग्रीन किशोर कुमार ने गाए और धर्मेंद्र जी को इस पर एक्ट करना था, वही इसका स्टार कास्ट था। तो धर्मेंद्र थोड़ा दुविधा में था, वो डर रहा था कि किशोर कुमार जी का गीत शायद मुझ पर न जचे, क्योंकि वो ज़्यादातर रफ़ी साहब के आवाज़ में एक्ट करता था। तो यही थोड़ा सोचते, लेकिन लोगों ने कहा फिर भी आपको तो करना पड़ेगा, क्योंकि रिकॉर्ड हो चुका है गीत, तो आपको एक्टिंग तो करना पड़ेगा। तो बहुत सोचे समझे फिर भी धर्मेंद्र ने किशोर कुमार जी के ये गीत पर एक्ट की। आप नहीं मानोगे, ये फिल्म ब्लैकमेल बहुत पॉपुलर हुआ और ख़ास करके किशोर कुमार जी का ये गीत बहुत पॉपुलर, बहुत विख्यात हुआ भारत में, भारत के बाहर भी, और आज तक लोग इसे ये गीत को बहुत पसंद करते हैं, और जहाँ तक मेरा ख्याल है लोग इसे अवश्य पसंद करते रहेंगे। ब्लैकमेल में से हमने निकाल रहे हैं, तो चलिए ब्लैकमेल के बाद हमने बढ़ते हैं, जी हाँ, असली नकली के ओर, असली नकली के ये गीत आप सुनिए।

फिल्म असली नकली से हमने निकाले ये गीत और पेश किए शुभकामना के साथ आप सभी सुनने वाले श्रोताओं को आप सुन सकते थे। चलिए देखते हैं अल्फा नंदरेन के रहने वाला श्रीमान चांद्र गुनाथ कार्यक्रम को सुन रहा है, उनकी धर्मपत्नी खिसला जी। भैया चांद्र गुनाथ खिसला जी को बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों के लिए। चलिए ये गीत हम चलाते हैं, तो लीजिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं, वो है एवरग्रीन किशोर कुमार और आशा जी का ये शानदार गीत। चलो सुनते हैं इस तरह से।

तू है वही, जी हाँ तू है वही। आर डी बर्मन के साथ पर ये गीत हम पेश किए ओवर फाउंड हिंदुस्तानी रेडियो। और ये टाइटल सॉन्ग था फिल्म ये वादा रहा का, निकली तुई तख्त का ये गीत। और ये गीत पेश किया गया खास करके अल्फानंदर इनके रहने वाला श्रीमान चंद्रघुनाथ जी के लिए और उनकी धर्मपत्नी खिसला के लिए शुभकामना के साथ। तो लीजिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो ये है क्या ख्याल है। जी हाँ, एवरग्रीन किशोर कुमार जी के बाद एवरग्रीन किशोर कुमार एक बार फिर है।

दिल भर मेरे कब तक सताओगे। जी हाँ, एवरग्रीन किशोर कुमार आपको सुनाए हैं आर डी बर्मन के साज पर, सत्ते पे सत्ता में से निकाल कर ये गीत। चलो देखते हैं, हमने प्लेयर में ये गीत रखे हैं। जी हाँ, नहीं बताऊंगा, बस सुन लीजिएगा।

आंखों ही आंखों में इशारा हो गया। जी हाँ रफ़ी साहब और गीता जी रॉय, गीता रॉय जी मिल के आपको सुनाए ये शानदार गीत ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। तो चलिए हम आपको ये गीत और सुनाते हैं। जी हाँ, इसके बारे में भी नहीं बताएंगे, लेकिन बस सुन लीजिएगा। शंकर जयकिशन के साथ पर सिर्फ

तो झूमे ये धरती झूमे आसमान, बन की पंछी शंकर जय किशन के साज पर लता जी की आवाज़ में हमने पेश की। चलिए आप चुने फ़ोन हिंदुस्तानी रेडियो पर, जी हाँ अगर जा आप चुने फ़ोन हिंदुस्तानी रेडियो पर तो हमको आप हम आपको ये गीत सुनाते हैं। जी हाँ, इस तरह से आ रहा है फिल्म कसूर में से निकाल कर त्रिदर्शन इन उदित नारायण जी और अलका जी, ये दोनों की जोड़ी की गाने हमेशा बहुत अव्वल दर्जे का रहता है। उदित नारायण जी और अलका याग्निक जी।

अलका याग्निक जी और उदित नारायण जी, ये दोनों मिलके आपको ये शानदार द्वैत सुनाए, लवली द्वैत ओवर फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो हमने पेश की। तो जी हाँ, तो लीजिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं, और ये गीत के बारे में कुछ नहीं कहेंगे, बस आप इसे सुनिए और निर्णय कीजिए क्या कैसा गीत है। इस तरह से आ रहा है।

सुरेश वादिकर जी और लता जी ये शानदार द्वैत आपको सुनाए हैं, जबकि आप सुन रहे हैं और मैं चला रहा हूँ फाउन हिंदुस्तानी रेडियो दनहाँ शहर से। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं और वो ये गीत है, हाँ सुनिए, रोना लैला जी, इस तरह से।

सारी दुनिया के वीरां पाओगे जब हम नहीं होंगे, ये तो बात सच है। ऐसा होता है ज़िंदगी में। और हमने ये गीत पेश किए फाउन हिंदुस्तानी रेडियो कार्यक्रम में रोना लैला जी की आवाज़ में। तो चलिए रोना लैला जी के बाद हम आपको सुना रहे हैं ये आवाज़, आपके लिए भी एक बहुत जानी पहचानी आवाज़ है, फिल्म फिल्म फिल्म निका में से निकाले हैं।

वाह क्या बात है, फंसा भी है जमा जमा। सलमा आगा की आवाज़ में हम आपको सुनाएं ओवर फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं और वो है सेलांत के रहने वाले हैं। जी हाँ, सेलांत के रहने वाले हैं श्रीमती आनी सरजुमी सिर और उनके पति ज्योति सरजुमी सिर के लिए शुभकामना के साथ। इतनी दूर दराज से आपने ऐप की, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सेलांत के रहने वाले श्रीमती आनी सरजुमी सिर और ज्योति सरजुमी सिर के लिए शुभकामना के साथ, चलो हम आपको ये गीत सुनाते हैं इस तरह से।

दिल ने ये क्या सुन लिया, आंखों आंखों में तूने ये क्या कहा। ओवरफाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में हमने पेश किए और ये गीत हमने चलाए हैं सेलंत प्रोविंस सेलंत शहर फ्लिसिंग के रहने वाली श्रीमती आनी सरजुमी सिर और उनके पति ज्योति सरजुमी सिर जी के लिए शुभकामना के साथ एक शुभ दिन पेश करते हुए हम ये गीत पेश किए। आनी जी ज्योति जी आप दोनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के तरफ से। तो चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो ये है, जी हाँ चलिए हम आपको सुनाते हैं ये धमाकेदार गीत इस तरह से आ रहा है।

आंखों पे डकार डाले तो बड़ा मजा हो, इस शमशाद बेगम की आवाज में आपको सुनाया गया ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। तो चलिए शमशाद बेगम जी के बाद हम आपको सुनाते हैं रफ़ी साहब की आवाज़।

0: चले करते हैं प्यार समझ में आया
1: तकरार समझ में आया
0: चली हो कहा देखो इधर हम भी करते हैं प्यार समझ में

0: तो हम भी करते हैं प्यार समझने आया।
1: फिल्म कॉलेज गर्ल ने की थी ए ने फैफ रफ़ी साहब की आवाज़ में, आपको सुनाया गया फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में हमने पेश की। जी हाँ, तो क्या ख्याल है रफ़ी साहब के बाद हम आपको ये सुनाते हैं। हाँ, निगती द्रीन तख्त ए ने फैफ तक से सीधे चलते हैं द्रीन तख्त। जानी पहचानी गीत है, जानी पहचानी आवाज़ है, जानी पहचानी म्यूजिक डायरेक्टर है, तो सुन लीजिए।

अगर तुम ना होते हमें जीने की चाहत ना होती। एवरग्रीन किशोर कुमार जी और लता जी निगत इंद्रियन तख्त का ये फिल्म है, हमने पेश की ओवर फावर हिंदुस्तानी रेडियो। फिल्म तो टाइटल सॉन्ग है ये है अगर तुम ना होते निगत इंद्रियन तख्त का। आप चूने फावन हिंदुस्तानी रेडियो पर तगा और आप चूने फावन हिंदुस्तानी रेडियो पर हम आपको ये सुनाते हैं। जी हाँ सुनिए, बहुत पुरानी गीत है, उतनी पुरानी तो नहीं है लेकिन फिर भी है।

0: से तौबा।
1: हाँ वाह क्या बात है, आपने शायद शब्द सुने होंगे, लेकिन मैं आपको बताता हूँ अगर ये शब्द आप नहीं सुने होंगे तो। मुकेश जी जो है वो प्यार करता है, लेकिन रफ़ी साहब प्यार के ख़िलाफ़ है। बस यही सवाल और जवाब इन लोगों में था। मुकेश जी प्यार कर रहा था और रफ़ी साहब उसका ख़िलाफ़ था। ये गीत हमने पेश की ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए अगला गीत हम चला रहे हैं, ये है जी हाँ, ये भी एक जानी पहचानी गीत, लंबा चौड़ा गीत है, 6.5 मिनट का। तो सुनिए ये गीत कैसा है।

तू इस तरह से मेरी ज़िंदगी में आया है, आप तो ऐसे ना थे, फिल्म का नाम है और हमने पेश की ओवरफाउंड हिंदुस्तानी रेडियो। तो चलिए अगला गीत। जी हाँ, अगला गीत है मैती मुकेश, मैती मुकेश द हार्ट ट्रब ऑफ मिलियंस।

मैथ्यू मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस दो होंठ हिले, ये गीत पेश किया गया ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए अगला नंबर हम पेश करने वाले हैं और घड़ी पर देखूं तो 2:15 का वक्त है। क्वार्टर फोर्थवे आप चुने फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर और चलिए हम आपको ये गीत सुना रहे हैं इस तरह से। हाँ, जाना पहचाने गीत ये भी है, फिल्म आपने अवश्य देखे होंगे, फिल्म जूली। कौन ये फिल्म नहीं देखा होगा, चलो सुनते हैं।

फिल्म जूली में से निकाल रहे हैं दिल क्या करे जब किसी से प्यार हो जाए। फ़ौन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा ये गीत पेश हुआ, आप सुन रहे हैं और मैं चला रहा हूँ देनहाग शहर से, आपका स्वागत है। चलिए आपका स्वागत करते हुए हम आपको सुना रहे हैं ये गीत इस तरह से। और देखूँ तो जी हाँ, ये गीत मैं चला रहा हूँ उतरख के रहने वाली बिया जी के लिए। बिया जी, आपके लिए ये गीत चला रहा हूँ, कार्यक्रम आप सुन रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। उतरख के रहने वाले बिया जी के लिए इस तरह से आ रहा है।

साथियाँ नहीं जाना कि जीना लगे, ये गीत पेश किया फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम में। और ये गीत हमने पेश की उत्तराखंड के रहने वाली बिया जी के लिए। बिया जी, उम्मीद गीत आपको अवश्य अच्छा लगा होगा। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप कार्यक्रम सुन रही है। आप चुने फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर, जो लोग चुन के मीटर पर, आपका हृदय से स्वागत करते हुए ये गीत

वाह, क्या दर्द है तेरी आवाज में छोरे। कहते हैं जब ये दिल टूटता है तो आवाज नहीं होती, लेकिन जब ये टूटता है तो कयामत आ जाती है, तूफान आ जाता है, जलजले आ जाते हैं। तेरी आवाज में वो दर्द है, तेरी आवाज में वो मोहब्बत है। मगर सुन, तेरे दर्द तेरी मोहब्बत के साथ ये दुनिया वाले क्या इंसाफ करेंगे। हा, तू तड़पता रह जाएगा, गाता रह जाएगा, ये देखती रह जाएगी दुनिया। सुनो, तुम आज गाओ और आज मुद्दत के बाद ये पगली

परदेसी परदेसी जाना नहीं, ये गीत सुनाया गया ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो ये है इस तरह से।

याद आ रही है, तेरी याद आ रही है। शाम के कार्यक्रम में ये शानदार गीत हमने पेश किए पावन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा।

आती होगी याद मेरी, रफ़ी साहब और सुलक्षणा पंडित मिलके आपको सुनाएं ये गीत ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलो हम आपको ये गीत सुनाते हैं, हमने प्लेयर में रख चुके हैं, बस सिर्फ बटन दबाना बाकी है। इस तरह से आ रहा है एक बार फिर।

पेश की, आशा उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और तार किए हैं अल्फानंद रैन से चांद रघुनाथ जी, उनका किसला जी, और देखते हैं फ्लेसिगन सेलन से श्रीमती आनी सरजमी से ज्योति सरजमी से, और इधर के रहने वाली बेया जी, आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ फान हिंदुस्तानी रेडियो के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से। और मेरे बाद आप कार्यक्रम सुनेंगे, सभी सहयोगी मिलकर आपके सेवा में रहेंगे, और मैं आपसे मिल रहा हूँ आने वाला बृहस्पतिवार को, क्योंकि सोमवार को नहीं रहूँगा। जी हाँ, आस्थान द सोमवार गीत गज़ल मैं और यूसुफ नहीं रहूँगा, तो हम आपसे मिल रहे हैं अगले सप्ताह आज के 8 दोंदरदाह को। तब तक के लिए हम लोगों को इजाज़त दीजिए, आप सबको एक शुभ शाम पेश किया जा रहा है।

0: from the Miss Indian Worldwide. Tijdens deze spectaculaire finale strijden de finalisten in de categorieën Miss en Mister en Velbegeerde Kroon en de kans op de Nederlandse internationale vertegenwoordigen op het wereldpodium. De finale vindt plaats op zaterdag 27 juni 2026 om de 1500 uur tot 2100 uur in het Oostvaarden College in Almere. Verwachten! Van vol indrukwekkende Bollywood entertainment, culturele trots en een onvergetelijke show voor de jong en oud. Koop je ticket dan bij je tickets via mibb.nl ticketen. Miss Indian Beauty Pageant 2026, waar schoon het talent, cultuur en samenkomen.
1: Muziek en informatie. Bij Fahong Hindustani Radio.
0: और आपको बता देती है दोस्तों, हम रेडियो फाहुन के माध्यम से इस प्रोग्राम को प्रस्तुत करते हैं। हमारे पता है न्यूटन स्ट्रैट नंबर 25 और दनहाक शेहम इस वक्त आपको इस प्रोग्राम को सुनाते हैं। दोस्तों, अगर आप रेडियो फाहुन के प्रोग्राम सुनते हैं तो कई तरह के इस पे आपको मोख लिखाई थे, यानी कि देहाबी प्लस रेडियो के जरिए, यानी कि एथर पे भी आप सुन सकते अपने गाड़ी में 15.66 AM पर, और नहीं तो आप हमारा वेबसाइट पे जाइए और पूरा दुनिया में, पूरा विश्व में हमारा रेडियो फाहुन के प्रोग्राम सुन सकते हैं www.fm.nl।

दोस्तों हम चलते हैं एक मस्त भरी गाना के ओर, लता जी और राजकुमार। और इस फिल्म बहुत पुराना फिल्म है, फिल्म साधना का ये गाना है। लता जी इसमें यानी कि इस गाना को गाया है दोस्तों, और इस गाना आओ मिलकर सुना जाए। कुछ पुराने गाने से आज हम आप लोग को सेवा करेंगे।

मसीह हमारे प्यारे प्यारे सुनने वालों, ये एक बहुत मस्त भरी पुराना गाना है दोस्तों, और ये है लता जी इस फिल्म में यानी कि इस गाना को गाया है। और आगे को हम अगला गाना की ओर बढ़ते हैं, और आज हम आप लोग को मस्त भरी गाना से, और जैसे हर हर प्रोग्राम में चलाते हैं, आज भी हम चलाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों हम और आगे चला जाएं, और ये भी एक पुराना गाना है, सब कुछ सीखा, सब कुछ सीखा है हमने, मैं सिर्फ एक ही बात नहीं सीखा है, और वो क्या है भैया, हम तो है अनारी, और ये अगर अनारी होगा तो क्या सीखेंगे, ये बात हम नहीं कहते हैं, मुकेश जी कहते हैं, आओ मिलकर सुना जाए।

0: सब कुछ सीखा हमने और सिर्फ एक बात जो नहीं सीखा है तो वो है होशियारी। दोस्तों होशियारी, हम अपना प्रोग्राम को और आगे को बढ़ाते हैं और मस्त भरी पुराने गाने से आप लोग को आज हम फिर सेवा करेंगे हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों। और कहते हैं जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे संग तो तुम भी गुनगुनाने लगोगे। तो हमारा आपसे यही बात है कि जो गाना हम यहाँ पर चलाने जाते हैं रवि जी की है फिल्म, जो इसमें काम किए हैं वो शमी कपूर आशा परेख ने। और अगर आप ये गाना सुनेंगे तो मुझे यही विश्वास है, यही गारंटी है कि आप भी गुनगुनाने लगेंगे। मुझे यही उम्मीद है दोस्तों। तो आओ मिल के सुना जाए कि जॉनी कौन गाना द्राई करे कि हमें भी बैठ के गुनगुनाने पड़ेगे। तो आओ सुना जाए।
1: तुमने मुझसे यही सवाल किया था
2: क्या
1: अगर मैं तुम्हें भूल जाऊं तो?
2: तुमने क्या जवाब दिया?

और जो तुम मुझे भुला न पाओगे जब तुम मुझको देखोगे तो कैसे आप आएंगे। ये बात मुकेश जी ये गाना को आपको सुनाई है दोस्तों, अपना प्रोग्राम को हम और आगे को बढ़ाते हैं और आज भी आप लोग के मस्त भरी पुरानी गाना से हम आज आप लोग को सेवा करेंगे। हम चलते हैं, राज कपूर का फिल्म है और मुकेश जी ये गाना को गाए हैं।

उस देश के वासी हम हैं। और वो देश कौन है दोस्तों, जहाँ पे मुकेश रहते थे, और वो है गंगा जहाँ पर बहते हैं। और हम उस देश के वासी है दोस्तों, सूरीनाम के देश के वासी तो हम सब है। और मुकेश जी ये गाना को आपको सुनाए हैं दोस्तों। अगर जो आप मुकेश के सुन चुके होंगे तो हम चलते हैं रफी जी के गाना भी सुनना चाहिए। और वो है इशारों इशारों में, क्या होता है इशारों इशारों में, तो कभी दिल चला जाता है, नहीं दिल दिल को चुरा लेता है, दोनों होता है ना। तो आओ मिलके सुना जाए मोहम्मद रफी जी की आवाज।

इशारों इशारों में दिल देने वाले परमान श्री मोहम्मद रफी की आवाज़ में इस गाना के आपने सुना है और आशा भोसले की आवाज़ में दोस्तों। और अगर रफ़ी जी जब पिक सुनाया है तो हम तुरंत जाते करोड़ों दिल को चुराने वाले और वो है मुकेश। फिल्म का नाम है श्री 420 नेकंती होंदित 515 तक का ये फिल्म है जिसमें राज कपूर और नरगिस ने काम किया है दोस्तों। आओ मिलके सुना जाए।

और फिल्म श्री 420 का ये गाना हमने निकाल कर आप लोग को सुना दिए है। नई खतीर 5/5 तक का फिल्म राजकुमार और नरगिस का इस गाने में गाया है मुकेश जी और लता जी। दोस्तों हम बढ़ते हैं फिर अगला गाना की ओर, वो है परमाशी मोहम्मद रफी का ये गाना है और इसमें काम किया है शायरा बानो राजेंद्र कुमार। फिल्म का नाम है अरमान, फिल्म के नाम है अरमान और ये गाना क्या है धोरो मस्त भरी पुरानी गाने से आज हम आप लोग को सेवा करेंगे। म्यूजिक है शंकर जय किशन का और इस गाना को लिखा है हसर जयपुर का ये गाना है और आओ मिलकर सुना जाए।

0: ना।
1: तुम्हारी हर बांस पे है मुझे बहुत नाज दोस्तों। शेरा बानू राजेंद्र कुमार ने फिल्म अरमान में काम किया है और परमाशी मोहम्मद रफी जी के गाना है हसर जयपुर के साथ में। और हम और आगे को चलते हैं अपना प्रोग्राम को लेकर हमारे दोस्तों, और ये फिल्म का नाम है और देवानंद उषा या उषा किरण फिल्म का नाम है। पतिता का ये फिल्म है, दादा हेमंत कुमार और दीदी लजा जी के आवाज़ में इस गाना को आओ सुनिए।

दादा हेमंत जी के आवाज में आप लोगों इस गाना को सुना है और एक मस्त भरी रोमांटिक हिंदी सॉन्ग है दोस्तों। इसमें काम किया है देवानंद जी और उषा किरण ने। फिल्म का नाम है पतिता दोस्तों। और उसके बाद हम चलते हैं और एक गाना के ओर और वो भी है फिल्म के नाम है, ये भी एक बहुत पुराना फिल्म है, अलबेला का ये गाना है। हमारे दोस्तों लता जी इस फिल्म में इस गाना को गाया है और इसमें भगवान ने बहुत कमाल किया है दोस्तों। आओ मिल के सुना जाए ये गाना क्या है भाई, बहुत पुराना गाना है ये, और सुना जाए।

भोली सूरत दिल के खोटे, और नाम बहुत बड़ा है कितरूर कितरी को, लेकिन कर्म बहुत छोटे है दोस्तों। भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े हैं बाकी दिल से बहुत खोटे हैं हमारे दोस्तों। और हमारे दोस्तों, और ये गाना को जिसके सपने में हम रोज आते हैं, और महेंद्र कुमार और लता जी बताए गए हैं, नई खंती सेफन तक का ये गाना है, आओ मिल के सुना जाए।

जिसके सपने हमें रोज आते रहे और गुना गुनगुनाते रहे, वो कहते कि क्या तू ही रह ले भैया। और जो गाना अब हम आप लोग को सुनाएंगे ये है गोरी तेरी नैनों में हम बस गए हैं, हम बस गए हैं। गोविंदा करिश्मा का ये फिल्म है और ये गाना को गाया है हमारा कुमार शानू, कुमार शानू।

0: graden in het noorden en 38 in Zuid-Limburg. Vanavond is het nog lang warm en vannacht koelt het af naar gemiddeld 23 graden.
1: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
2: हर काम के लिए हर एडवर्टेंसी के लिए मौत के समाचार फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl। हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक और टेलीफोन नंबर 07 36 52 47। मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
3: Den Haag heeft het Binnenhof, de Hofvijver, het Vredespaleis en je eigen Fahon Hindustani Radio.
2: अगर इश्क करो तो अदाबे भी वफाई भी सीखो। अगर इश्क करो तो अदाबे भी वफाई भी सीखो। ये चांद दिन कर बेकरारी मोहब्बत नहीं होती, जागने की भी जगाने की भी आदत हो जाए। काश तुझको किसी शायर से मोहब्बत हो जाए। तो हम तुरंत चलते हैं एक गाना की ओर दोस्तों, और वो क्या होता आप खुद ही सुनिए।

मोहब्बत और मोहब्बत सिर्फ मोहब्बत जो है वो बहुत बड़ा काम का चीज़ है और कभी कभी मोहब्बत में बहुत बहुत गलतियाँ हो जाती है दोस्तों। और गलतियाँ तो हमारे लोग का भी एक हिस्सा है हमारे दोस्तों। तो आज हम आप लोग को कुछ प्यार भरी शायरी सुनाएंगे, कुछ गाना हम सुनाएंगे एक घंटे के लिए, और उसके बाद तो हमारा प्रोग्राम को और आगे को हम बढ़ाएंगे। कहते हैं तेरे ख्याल में जब बेख्याल होता हूँ, तेरे ख्याल में मैं जब बेख्याल होता हूँ, जरा सा देर को ही सही बेमिसाल होता हूँ। थोड़ा से देर होइगे बाकी फिर भी बेमिसाल होता हूँ। तो हम चलते हैं दोस्तों। मुझे नींद न आए, आपको आते हैं? आपको क्या आते हैं? अभी क्या आएंगे दोस्तों, लेकिन आएंगे जरूर। हम चलते हैं एक पुराना नंबर की ओर।

और मुझे नींद न आए, और मुझे नींद न आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का ये फिल्म दिल मूवी का नाम है दोस्तों। अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण ने ये गाना को गाया है। और हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों, और यहाँ से हम अपना प्रोग्राम को और आगे को चलाएंगे और सुनाएंगे, और कोई शायरी एक दो बीच बीच में हम कर देंगे। और हमारे प्यारे प्यारे सुनने वालों, हम चलते हैं, और ये दर्द की बात है। और दर्द में क्या होता है दोस्तों, दर्द में आंस गिर जाता है, दिल रोए पड़ता है, दिल धड़क जाता है। और जब दिल धड़क जाता है तो क्या होता है, आप खुद ही सुनिए।

और न जाने क्या हुआ जो तूने छू लिया, और जो अगर छू लिया तो उसके आगे आपको क्या होता है दोस्तों, ये मैं क्या करूं, आप तो खुद ही जानते हैं। और कहते हैं होठों पर मोहब्बत की फसाना नहीं आती, होठों पर मोहब्बत की फसाना नहीं आती, साहिल पर समंदर की खजाना नहीं आती। और आगे को हम चलते हैं दोस्तों कि कहते हैं इश्क मोहब्बत दीवानी ये बस लफ्ज ही थे, जब तुम मिला तब इन लफ्जों को मैंने मिले। और दोस्तों ऐसे ऐसे कुछ शेर आज आप लोग को हम जरूर सुनाएंगे, और हमें यही आशा है कि आपको जरूर अच्छा लगेंगे। कहते हैं फूल खिलते हैं बहारों का शमा होता है, फूल खिलते हैं बहारों का शमा होता है, ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवान होता है। दिल की बातों को होठों से नहीं कहते, ये फहसाना तो निगाहों से बयान होता है। यस मेंस रोकेर, फूल खिलते हैं बहारों का समा होता है, ऐसे मौसम में तो प्यार जवान होता है। दिल के बातों का होठों से नहीं कहते, ये फसाना तो निगाहों से बयान होता है दोस्तों। और इस बयान में हम आप लोग के चलते हैं सुबह से लेकर क्या होता है, खाना तो नहीं होता है दोस्तों, और कुछ होता है, वो क्या होता है आप सुनिए।

हम चाहते हैं सिर्फ प्यार करो दोस्तों, और हम अपना प्रोग्राम को और आगे लेकर चलते हैं। हमारे प्यारे प्यारे सुनने वालों कि कहते हैं, प्यार करने वालों कहते हैं कि कब तक वो मेरे होने से इनकार करेंगे, कि कब तक वो मेरे होने से इनकार करेंगे, खुद तो करके वो एक दिन मुझसे प्यार करेंगे। प्यार की आग में हम उसे उसको इतना जलाएंगे कि सारी दिन हमसे प्यार ही करते रहेंगे। यस मेंस, आज हम प्यार के मूड में हैं, इसीलिए प्यार के कुछ शायरी हो जाए। और कहते हैं कि एक पल मैं जो आकर गुजर जाऊं, एक पल में जाकर गुजर जाए, ये हवा का वो झोंका है और कुछ नहीं। प्यार कहते हैं दुनिया जिसे, एक रंगीन धोखा है और कुछ नहीं दोस्तों। तो ये सब बात शायरी में लोग लिख के धर दिया है, और आज अपनी जिंदगी के कुछ बातें हम आप लोग को सुनाएंगे, और वो क्या है दोस्तों, आओ मिलकर

मेरे जिंदगी में, और मेरे जिंदगी में जब आप आए हो तो बहार बन के आए हो। और फिल्म राजा हिंदुस्तानी का ये गाना है दोस्तों जो आपके हमने सुनाया है, और हम चलते हैं और आगे को दोस्तों। मुझे उस जगह से भी मोहब्बत हो जाती है, आप तो जानते हैं जब लोग कभी मस्त हो जाते हैं तो वो जगह नहीं छोड़ता है, जगर उसको कुछ सोचना है तो जाकर वहाँ पर बैठ जाता है, और बैठ के और जैसे दोस्तों जब हम कुछ लिखते हैं तो मुझे वो स्पेशल जगह होता है जहाँ पर हम बैठ के कुछ लिखते हैं। ऐसे ऐसे कितने लोग हैं जब जो प्यार के मूड में होता है तो वही जगह वो खोजता है, और कहते हैं मुझे उस जगह से भी मोहब्बत हो जाती है जहां बैठकर एक बार तुम्हें सोच लेता हूं। जी हां दोस्तों, और कहते हैं इस दुनिया में लाखों लोग रहते हैं, कोई हंसता है दोस्तों तो कोई रोता है, पर सबसे सुखी वो होता है जो शाम को दुई बोरल मार के सोता है। एक शायर हुए भैया ये हंसते हुए, सिर्फ प्यार भरे नहीं लेकिन हंसते हुए, नजरे करम मुझ पर इतना न कर कि तेरी मोहब्बत के लिए बागी हो जाऊं, नजरे करम मुझे पर इतना न कर, मुझे पर इतना न कर कि तेरी मोहब्बत के लिए बागी हो जाऊं, मुझे इतना न पिला इश्क के जाम कि मैं इसके जहर में आधी हो जाऊं। दोस्तों हम चलते हैं कि अगर आपके दिल ने किसी चुरा लिया है तो ये गाना आपको जरूर सुनना चाहिए।

और चुरा लिया है क्या भैया, दिल के बात होता है, दिल के बात होता है हमारे प्यारे प्यारे और सुनने वालों। और दिल बेस्टमैन से हम चलते हैं एक रीमिक्स गाना की ओर, यानी कि रीमिक्स भी बजाना चाहिए और तुम दिल के धड़कनों में रहते हो उस गाना की ओर जाते हैं हम दोस्तों। अभी हम वापस आ जाएंगे।

बस तुम दिल की धड़कन में और रहते हो रहते हैं। अलका का ये गाना है और इस फिल्म में काम किया है अक्षय कुमार, शिल्पा शेट्टी और सुनील शेट्टी ने इस फिल्म में काम किया है हमारे दोस्तों। और हमारे प्यारे दोस्तों, ये गाना है जब बारिश आता है तो ये गाना सुनने में और अच्छा लगता है हमारे प्यारे प्यारे सुनने वालों। फिल्म का नाम है सूर्यवंशी, अक्षय कुमार कैटरीना कैफ के, और इस गाना में इस फिल्म में यानी गाना को गाया है उदित और अलका ने। आओ मिलकर सुना जाए, तो अभी हम वापस आ जाएंगे।

और दोस्तों टिप टिप करता और क्या करता है टिप टिप भैया, बारिश होता है टिप टिप, और जब बारिश होता है तो क्या करना चाहिए दोस्तों, आपकी तो खुद मालूम होगा। हम चलते हैं और आगे को, और बचना ऐ हसीनों, बचना किससे है दोस्तों, उससे बचना है जो दिल के लुटेरा होता है उससे बचना।

0: और बचना ऐ हसीनो लो मैं आ गया। और दोस्तों हम अपना
1: तेरी हर नज़्म तेरा हर,
0: बस दोस्तों आप लोग को हम कुछ प्यार भरी मस्त भरी गीतों से आज भी आप लोग को हम पुराने गाने कुछ भी नए गाने से आपको हम सेवा करेंगे। चलते हैं भीगी रात नेक डिफेंस का ओल्ड सॉन्ग परमा श्री मोहम्मद रफी करोड़ों का दिल चुराने वाली नाइटिंगेल लता मंगेशकर आशा भोसले इस फिल्म में मीना कुमारी काम किए हैं और अशोक कुमार। आओ मिलकर सुना जाए।

0: और भीगी रात नेगेटिव 65 का ये फिल्म है दोस्तों। हम और आगे को लेकर अपना प्रोग्राम को बढ़ाते हैं। तो दोस्तों हम अपने गीतों को और आगे को बढ़ाते हैं, हम चलते हैं। यू ही तुम मुझसे बात करते हो, अगर बात करना है तो दिल से करो, ऊपर मन से करोगे तो कुछ मिलेगा नहीं। नई खंती जीवन का ही फिल्म है, फिल्म के नाम है सच्चा और झूठा, जिसमें राजेश खन्ना मुमताज ने काम किए हैं। आओ सुना जाए।
1: यूं ही तुम मुझसे बात करती हो या कोई

और क्या बात करती हो राजेश खन्ना का और मुमताज का ये रोमांटिक सॉन्ग यानी फिल्म थी। और दोस्तों आज हम आप लोग को फिर भी रोमांटिक प्यार भरी गीतों की सॉन्ग आपके हम सुनाएंगे और रेडियो फहम के माध्यम से इस प्रोग्राम को हम प्रस्तुत करते हैं। और दोस्तों देखा जाए और कितनी दिनों बाद आज हम आप लोग को फिल्म पकीसा का एक गीत सुनाएंगे। और ये फिल्म एक सुपरहिट फिल्म थी जिसमें मीना कुमारी, राजकुमार, अशोक कुमार ने काम किए थे। और आज हम आप लोग को इस गीत को कितने दिनों बाद सुनाएंगे। नेहती हों का ये सॉन्ग है।

और ये गीत फिल्म पकीसा का निकाले हुए गीत सॉन्ग हम आप लोग को कितनों दिनों बाद आप लोग को हमने सुनाए हैं। और दोस्तों हम और आगे को बढ़ते हैं, कहते हैं कि ये हम तुम चोरी से और चोरी में छिछोरी हो जाते हैं और तोरी में क्या क्या ना हो जाते भैया, चोरी में क्या क्या न हो जाते हैं। और ये है फिल्म धरती कहे पुकार का ये सॉन्ग है जितेंद्र नंदा और नाइटिंगेल लता जी और करोड़ चुराने वाला मुकेश माइती मुकेश का ये सॉन्ग है। आओ सुना जाए।

और ये तुम जो हम तुम चोरी से और बने भी है कौची एक डोरी से जइयो कहाँ रे हुजूर। उसके बाद में हमारे दोस्तों आप लोग जानते हैं हमारा प्रोग्राम का नाम है सच्चाई मजेदार समाचार, जो हर शुक्रवार को शाम को 6 से 7 बजे तक हम 6 से 9 बजे रात्रि तक चलाते हैं, मंगलवार को 5 से 7 बजे तक और रविवार को दिन में 1 बजे हम अपना जाने प्रोग्राम को चलाते हैं। और इसके बाद हम चलते हैं कौन दिशा से मैं लेके चला रे भतुया नदिया का पार, नदिया के पार फिल्म के नाम है। हेमलता जसपाल सिंह इस गीत को रविंदर जैन के सॉन्ग में और इस गीत को गाया है, एक बहुत मस्त भरी प्यार भरी गीत है। फिल्म के नाम है नदिया के पार नेह दिन होंदित एंतुई तख्त का ये गीत है। और आओ मिलकर ये गीत को सुना जाए, ये गीत हमें बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, हमें ही आशा उम्मीद है कि आपको भी ये गीत अच्छा जरूर लगेंगे। आओ सुना जाए।

0: और मन ने भरमाई और जाकेरी बतुया कौन दिशा में लेके चला रे बतुया। नदिया कपारी फिल्म का नाम है। हेमलता इस गीत को गाया है। और हम चलते हैं दोस्तों अपना प्रोग्राम लेकर आगे। और ये है इस फिल्म किशोर जी का गाया हुआ ये सॉन्ग है। और आओ मिलकर सुना जाए कौन सा फिल्म का गीत है अभी हमें पता चली गई तो हम आप लोग को बताएंगे दोस्तों कि ये कौन सा फिल्म का ये गीत है। लेकिन इसमें काम किया है लीना चंद्रवरकर और संजीव कुमार। गम का फसाना लेना, गम का फसाना लेना। तो आओ सुना जाए ये कौन सा गम है और कौन सा फसाना है हमारे दोस्तों। ये रोमांटिक मूवी का सॉन्ग है, क्लासिक सॉन्ग आप लोग को हम आज सुनाते हैं। आओ सुना जाए।
1: हाय गम का फसाना बन गया अच्छा
2: अच्छा जी
1: एक बहाना बन गया अच्छा
2: अच्छा

और गम का फसाना बन गया। अच्छा किशोर जी का गाया हुआ ये सॉन्ग है। हमारे दोस्तों हम अगला गीत की ओर बढ़ते हैं और अगला गीत क्या होगा आओ मिलके सुनाई गोरी तेरी गाँव बड़ा प्यारा। और कभी कभी जो गोरी लोन होता है वो गाँव में रहता है देहात में रहते हैं और ये गीत भी है गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा है। तो आओ सुना जाए इस गीत का। फिल्म का नाम है चित्त चोर नी घंटी ससा सीवत का। ये गीत है यूसुफ दास ने इस गीत को गाया है।

और गोरी तेरा गांव ना शरीफ तेरा गांव तुम भी बहुत प्यारा है, तुम भी बहुत प्यारा है गोरी, जैसे तुम प्यारा है ऐसे तुम्हारा गांव भी प्यारा है। और इस फिल्म का नाम है चित्तचोर, जिसमें शरीना वहाब ने काम की है। और इसके बाद हम पुरानी गीतों की भार प्रोग्राम लेकर चलते हैं। सॉन्ग के नाम है दिल विल प्यार व्यार, अरे मैं क्या जानू भैया हम तो छोटा लड़का है। फिल्म के नाम है शागिर्द नहीं हती सीवने सस्तक का। और ये प्यार यार कुछ जाने भैया, अगर ये प्यार यार आपको मालूम है तो हमें आप लोग जरूर बतला देना, हमें भी मालूम नहीं है प्यार क्या होता है। तो आओ इस गीत से सुना जाए तो साइट मालूम हो जाएगा।

और ये दिल विल प्यार यार जॉनी के भी मालूम ना है दोस्तों, अगर आपको जो मालूम हो तो हमें जरूर बता देना कि ये दिल उल प्यार यार क्या होता है। और अगर अगर आपकी दिल जो है जिसमें कुछ लिखा नहीं है, कोरा है, किसी आम के दिल में नहीं बसा है, तो ये गीत आपको सुनना चाहिए।

0: वक्रतुंडा महाकाया सूर्यकोटि संप्रभा निर्विधिनम कुरु मे देवा सर्व कार्यशु सर्वदा। रूबरू मिलने का मौका नहीं पा रहा हूँ, अतः शब्दों से अपनों को नमन कर लेता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में श्रेष्ठ होता है, इसलिए आपकी श्रेष्ठता को हार्दिक से नमस्कार करता हूँ। फाउन रेडियो के सभी सुनने वालों को हार्दिक से नमन करते हुए एक बार फिर हम सब उपस्थित हो गए स्टूडियो में कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश लेकर। और हमारे साथ कोलेखा साथी, नाम क्या है आप खुद ही बता दीजिए।
1: साथ साथ मैं भी यहाँ से संजय जी स्वीकार कीजिए सेविका शांता की प्यार भरे नमस्कार ज्योति का प्रकाश प्रोग्राम में।
0: अभी शांता जी वही गीत चला देते हैं क्योंकि हमारा माइक तो ठीक ठाक चल रहा है, आप इधर उधर अपना माइक कर रहे हो।
1: अच्छा,
0: पर कार्यक्रम में राजेंद्र सिंह जी अभी आने वाले हैं और अनुराधा जी भी भारत से जुड़ने वाले हैं, तो क्यों ना पहले चला देते वही गीत जो हर हफ्ता के तरह, कि तेरा राम जी करे बेड़ा पार उदासी मन काहे को डड़े।
1: ये भी साथ साथ जैसे आपने कहा तेरा राम जी करे बेड़ा पार, ये ज्योति का प्रकाश के एक जान से हैगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। ज्योति का प्रकाश के एक जान से, क्योंकि जब शुरू हुआ था ना, कहते कई साल पहले के हमने शुरू किए ये, हाँ, कार्यक्रम, और हम सब बैठते थे एक साथ में और ये गीत हर बार, ये कुछ 7 मिनट के गीत है,
1: फिर भी लगता है
0: फिर भी ऐसे ही 2 मिनट के लगता है। पर बिल्कुल ये ज्योति का प्रकाश का जान को चला दीजिए
1: जी।

0: तेरा राम जी करे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे। तो शांता जी, क्या आपको पता है कि मौसम कैसे है आजकल?
1: मौसम एकदम परफेक्ट है,
2: मौसम एकदम परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट। इसमें कुछ कहने के और बोलने के और कुछ तुलना करने के नहीं है।
0: क्योंकि देखिए, अभी देखा जाए कि 2019 में ऐसे ही गर्मी हुआ था हॉलैंड में, जो ये प्रोग्राम बन रहा है 2026 में,
2: हाँ,
0: और इसे चलाया जाएगा शायद 2028 में भी और 2030 में भी। पर फिर भी कहने के तात्पर्य ये है, 2019 में ऐसे ही गर्मी हुआ था और तब उस समय लोग पानी पी पी करके और बस कोई भी अपना काट लिया। पर अब यहाँ पर आज के न्यूज़ में बोल रहा है कि कल कितना प्रोफेंसी में कौदा रोत है।
2: ओ, और आया से रोत हो गया,
0: रोत हो गया।
2: हाँ, कल कन्या वोंस तक था, कन्या वोंस तक से शुरुआत हो गया रहा कौदा।
0: 40 खराद होलांद में होने लगा। तो अभी मैं इंडिया से बात हो रहा था मास्टर जी के साथ,
2: हाँ हाँ,
0: तो वो जो राजस्थान में थे और अभी फोन करने वाला है वो, क्योंकि वहाँ का गर्मी और यहाँ का गर्मी अब तो लग रहा है कि दोनों एक ही जैसा हो गया।
2: दिगड़ी जो है, खराद जो है, वो एक ही सा है, पर वातावरण जो है भारत का और हॉलैंड का फर्क है,
0: वातावरण।
2: हाँ, कारण कि भारत में सभी सड़कों के किनारे में बहुत सा पौधा लगा है, पेड़ लगा है, तो पेड़ का अनुसार वो सड़क जो है उसको ठंडा रखता है, जो मैं नहीं पिघले, और वहाँ पे काफ़ी भी हरियाली है
0: ऐसा।
2: हाँ, और यहाँ पर हमारा नीदरलैंड में वही देखकर यहाँ पर भी बहुत सारा हरियाली लगाते हैं।
0: और देखा जाए कि कहीं कितना खरादर पे अस्फाल्ट भी गलने लगता है ना।
2: अस्फाल्ट सिर्फ नहीं, हमारा बैग जो है, हमारा चप्पल जूता, वो सब गलने लगता है,
0: गलने लगता है।
2: और पहिया जो गाड़ी का पहिया, वो सब भी गलने लगता है।
0: अभी हमें ये बात आपसे बात कर रहा हूँ तो ये ख्याल आता है कि 2023 में एक फोटो जो अखबार पे आया था, तो वो फोटो था एक सेबरा पात लगे, पर सेबरा पात गल के वो बिल्कुल सेबरा हो गया था, ऐसा सूरत हो गया था कि सेबरा पात के दलाइंच सैन आलते सो रख पर सब गल के एकदम सेबरा बन गया था।
2: तो सोचो,
0: ऐसा है कि अच्छा, जैसे आप कह रहे हैं कि बिल्कुल मैं सहमत हूँ आपसे कि पेड़ पौधे को लगाना और ताकि ये गर्मी से हम सब भी बच पाएंगे, क्योंकि गर्मी से बचने के लिए छाया का
2: आवश्यकता बहुत आवश्यक है,
0: और छाया जब नहीं रहेगा तो हाँ। तो कम से कम एक चीज है, हॉलैंड एक देश भी है, दरहाग में
2: जी,
0: दरहाग जहाँ से ये कार्यक्रम बनाया जाता है, एक शहर एक हॉलैंड देश में, और जबकि ये कार्यक्रम 188 देशों तक सुना जा सकता है, पर जब देखा जाए कि खून दनहाख,
2: हाँ,
0: तो उन्होंने दनहाख में सिर्फ कई हजार पौधे लगाए जो इस साल, और ऐसे भी अन्य प्रांतों में हॉलैंड में खूब पेड़ों यानी कि पौधे को लगाया जाता है,
2: हाँ,
0: ताकि हमारा जो कैसे बोले जो ओजोन ना,
2: हाँ,
0: गर्म तो रहे और हमारा वातावरण के वातावरण में ठंडाई भी पहुंचे।
2: हाँ, क्योंकि ओसोन लाख जो है, आप जो कहते हैं ना, वो अपने आप बिगड़े नहीं, संतुलन वो अपने आप नहीं बिगड़ा है, वो हमारे इंसान, हम ही सब ने उसको बिगाड़ दी है, तो इसी कारण हमको वो तकलीफ सहना पड़ता है।
0: क्योंकि पहले होते थे गाड़ी A93 चलाता था हम लोगों ने, A92 वाला गाड़ी होते थे,
2: हाँ,
0: और आज अब A92 तक ये चलते हैं गाड़ी, तो अब भी मैं कहते हैं कि हाँ सोना एकदम ना
2: ना, मैं गाड़ी छोड़ो, कितने से बदरइफ चल रहा ना, जो खेमी से स्तोत कर रहे ना, सिर्फ हॉलैंड में, पूरे संसार में, तो वो सब मिलकर जो है आकाश जो है उसको खराब कर देगा। तो रेक्सरेस जो सोनस्त्राल जो ना ठीक है प्रकृति खातिर, हम लोग खातिर, हम लोग तो प्रकृति के अंश है ली, तो असर देगा अपना,
0: असर देगा अपना,
2: हाँ।
0: पर शांता जी, मौसम के छोड़ो, हॉलैंड एक छोटा सा देश है ना, छोटा सा देश है पर फिर भी दुनिया पे बड़ा बड़ा ऊंचा नाम से
2: जी,
0: दुनिया पे बड़ा ऊंचा नाम से। और कल मैं एक कार्यक्रम में थे जो कि अब देखो जो गुलामी किए हुए और जो कहते हैं जो अफ्सकाफिंग फ्रॉम द स्लाफनाई केती कोती,
2: हाँ वो तो
0: वो भी एक, यहाँ पर कुछ
2: एक जुलाई के होता है ना,
0: नहीं
2: केती कोती हाँ,
0: तो उस पे भी हॉलैंड में कुछ उस पे भी कोई कहीं कहीं कार्यक्रम बनाया जाता है क्योंकि उसे हमें भूलना नहीं चाहिए
2: ना, वो इतिहास है,
0: इतिहास
2: है।
0: पर उसी में कुछ बातें मैं सुना
2: ये।
0: कि मुझे ऐसा लगा कि देखो हॉलैंड एक ऐसा देश है जहाँ पर जो कसेटा रिकॉर्डर होते थे ना,
2: हाँ।
0: जो नहीं से ड्राई करके उन पतलू से ड्राई करते थे, आपको पता वो कोई कहाँ पर वो किसने उसे पाया, कैसे वो उत्पत्ति हुआ,
2: कसेट कहाँ से उत्पत्ति, मेरे ख्याल से फिलिप्स कंपनी
0: जी। और देखा जब जाए
2: हाँ, और कसेट उसका है कैसे बोलते उसके अंकंपक्त भाई सिंह में तन मैग्नेट बांध दी तुसन त्वे क्लाइन स्पूचेस लोप, और बहुत सोचने वाली बात है कि दिमाग उसने कैसे दोहराए कि एक बांती में स्त्रीकीय घट है उसमें दोनों तरफ गीत भरा होता है, और वो माखने जो यो ना दिखाता है उसमें उसका असर ऐसे है।
0: अब ऐसा जब कहो तो हम लोग ज्योति का प्रकाश में भी कितने कार्यक्रम बनाए हैं। अब देखिए जाए जो इलेक्ट्रिक से ऑटो से
2: दे,
0: अब तो इलेक्ट्रिक से फ्लिक तो कभी है, और हम लोग कितने ओमेम से गहराई में जा करके कि अगस्त्य ऋषि के ये सब दत्सिंग फन अगस्त्य ऋषि, और ये देखा जाए कि जो कसेटा रिकॉर्डर है नेकंटिन द्रियन सेस्तक
2: सितंबर नेकंटिन द्रियन सेस्तक में इसका मतलब पैदाइश
0: हो गया
2: हाँ हाँ,
0: तो कितने लोग का जन्म भी हो गया था उस समय पे जो हमारे रेडियो सुन रहे हैं, पर नेकंटिन द्रियन सेस्तक में उसका पैदाइश हुआ। और इंजीनियर लॉ ओटन्स ने इसको और यानी कि इनका अपना दिमाग से इसे सोच करके निकाले जो कि आल्स होफ प्रोडक्शन ऑन्ट्विकलर बाई फिलिप्स में काम करते थे,
2: बिल्कुल
0: ना
2: जी।
0: और इसी पे जब और गहराई में जाओ जाई तो देखो कि उकरे बाद में निकल कसेटा के बाद में निकल सेदे ना,
2: सेदे हाँ,
0: तो सेदे दैट इज ओके नेदरलैंड्स ऑन्ट्विकल, पर नीदरलैंड्स ऑन्ट्विकलिंग उस पे जब देखा जाए कि ओकरे बाद में सेदेई के बाद में निकल जोन वाला पे फिल्म भी रख देते थे लोग देखने वाला देई फेदेई
2: हाँ,
0: और फेई सेदेई ये सब चीजों सब जान लें कि दुनिया पे हॉलैंड ये सब खबीर पे बड़ा तेज था और अभी तक तेजी है क्योंकि कितने देशों यहाँ से चिप आईडी वाला जो चीज है द्वार अलमाल नहीं दलाता उन देखकर, तो ज्योति का प्रकाश भी तो दनाख से बनता है ना,
2: हाँ दनाख से तो बनता है, पूरा संसार सुन रहा है,
0: पूरा संसार सुन हाँ। रहा है, तो क्यों ना एक गीत की ओर बढ़ते हैं क्योंकि अभी कार्यक्रम में अनुराधा जी जो हम सबके ज्वाइन करने वाले हैं और आज के उसका संदेश है गुरु दक्षिणा, पर पहले एक गीत की ओर बढ़ते हैं और फिर अनुराधा जी को हम सब लाने को कोशिश करेंगे जो भारत से हम लोग के साथ जुड़ने वाला है। सुनने वालों आप सुनते रहना कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश जो हम सब यहाँ मिल करके और आपके लिए रख रहे हैं।

0: सुनो वालों, हम सब जुड़ गए हैं हमारे मास्टर जी जो भारत से हम सबको साथ और अपना जिस जिनके द्वारा ये कार्यक्रम को बनाया गया है ज्योति का प्रकाश, और मास्टर जी जो इस समय हम लोग के साथ जुड़ गए हैं। मास्टर जी, आपको हार्दिक से स्वागत किया जाता है।
1: फाउन रेडियो के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। जैसे कि सबको पता है कि वीरवार को हम कुछ ना कुछ नया लेके आते हैं, इस बार भी हम कुछ नया लेके आए हैं, जीवन की सच्चाई। और जीवन की सच्चाई में आज बहुत ही मनमोहक, बहुत ही मनमोहक चीज सबको सुनने को मिलेगा। और वो है कि जैसे हम बड़े होते जाते हैं और समझदार बनते हैं, हम धीरे धीरे एहसास होता है कि 300 और 3000 या 2000 लाख की कीमत की घड़ी सब एक साथ दर्शाती है। लोग सोचते हैं कि 300 की घड़ी का टाइम अलग है और 3000 की अलग है, 3 लाख की अलग है, लेकिन सबका एक ही टाइम है, केवल उसमें क्वालिटी का फर्क है। तो हमारे पास 100 का फर्क हो या 500 का, अंदर सब कुछ समान होता है। चाहे हम 5 लाख की कार चलाएं, चाहे 50 की, रास्ता और दूरी एक ही है और हम उसी मंजिल पर पहुंचते हैं। तो ये जीवन की आज सच्चाई है। हम जिस घर में रहते हैं, चाहे वो 300 वर्ग फुट का हो, 3000 वर्ग फुट का हो, अकेलापन हर जगह समान है। आपको एहसास होगा कि आपकी अंतरिक्ष आपकी जो आंतरिक खुशी है इस दुनिया की भौतिक वस्तुओं से नहीं मिलती। आंतरिक मतलब अंदर की जो खुशियां हैं, ये जो दुनिया है वो भौतिक वस्तुओं से नहीं मिलती। आप फर्स्ट क्लास या इकोनॉमी क्लास में उड़ान भरे, अगर विमान नीचे गिरता है तो आप भी उसके साथ नीचे ही जाते हैं। इसलिए मैं आशा करता हूं कि आपको एहसास होगा, आपके पास दोस्त भाई और बहन है जिनके साथ आप बातें करते हैं, हंसते हैं, गाते हैं, सुख दुख की बातें करते हैं, यही सच्ची खुशी है। जीवन की एक निर्विवाद सच्चाई है, अपने बच्चों को केवल अमीर बनने के लिए शिक्षित ना करें, उन्हें खुश रहना सिखाएं। जब कोई बड़े होंगे तो उन चीजों की लागत नहीं, मूल्य की जानकारी भी होगी। अब इसमें है एक प्रश्न है कि जीवन क्या है। जीवन को बेहतर समझने के लिए 3 स्थान हैं, अस्पताल है, जेल है और शमशान है। अगर आपने अपना जीवन बेहतर समझना है तो 3 स्थानों पर जाइए। कौन कौन 3 स्थान है? अस्पताल, हॉस्पिटल यानी सेकंड हाउस, जेल और शमशान घाट। अस्पताल में आप समझोगे कि स्वास्थ्य से अच्छा कुछ नहीं है। जेल में आप देखेंगे कि आजादी से कितना अमूल्य है, आजादी का जो मूल्य है वो कितनी ज्यादा है। और शमशान में आपको एहसास होगा कि जीवन कुछ भी नहीं है। आज हम जिस जमीन पर चल रहे हैं वह कल हमारी नहीं भी हो सकती। चलो अब से विनम्र निवेदन बने और हमें जो मिला है उसके लिए अपने माता पिता और जो मिला अपने माता पिता और किसका आशीर्वाद हमें लेना चाहिए?
0: अब आप ही बता दो मास्टर जी।
1: रिश्तेदार और पड़ोसी, मित्र, मेरा समाज, मेरा देश, सभी से प्यार, ऐसा हम सोचते हैं। क्या आप इस संदेश को किसी और के साथ साझा करेंगे? तो जरूर करेंगे। चलो विनम्र निवेदन बने उसके लिए अपने माता पिता और परम पिता को धन्यवाद करें। ये हमारी शिक्षा है आज की। दूसरी चीज जो हमको जीवन, दवा रहित जीवन यानी विदाउट मेडिसन लाइफ, हम जीवन जीते हैं लेकिन दवा के सहारे। तो क्या क्या हमें करना चाहिए जो हमें दवा न लें, ये बहुत बड़ा संदेश है इस चीज में। और जो फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के श्रोता हैं, अगर वो सुन रहे हो तो कागज कलम निकाल के नोट कर ले, क्योंकि ये चीज एक बार सुनने को मिलेगा, याद रखना जरूरी है। तो सबसे पहले लिखें, जल्दी सोना और जल्दी उठना दवा है, ये एक मेडिसन है। अगर आप जल्दी शाम को सोचते हैं और जल्दी सुबह उठते हैं। दूसरा है ओम या राम का जाप दवा है, जो हम जाप करते हैं वो भी एक दवा है। ये बात हमारे आ गई तीसरे नंबर पे, योग प्राणायाम और व्यायाम, ये बहुत बड़ी दवा है। सुबह शाम टहलना भी दवा है। उपवास यानी फास्ट सभी बीमारियों की दवा है। सूर्य का प्रकाश भी दवा है। मटका पानी पीना भी दवा है। ताली बजाना भी दवा है। खूब चलना भी दवा है। भोजन की तरह चबाकर पानी पीना भी दवा है। आफ्टर मील वज्रासन में बैठना बहुत बड़ी दवा है, यानी उल्टे पांव बैठना, उसको वज्रासन बोलते हैं, सब लोग जानते हैं जो लोग योग करते हैं। खुश रहने का निर्णय भी दवा है। कभी कभी मौन भी दवा है। हंसी मजाक भी बहुत बड़ी दवा है। संतोष यानी जो कुछ हमको मिला है उसमें संतोष करना, वो भी दवा है। मन और शरीर की शांति दवा है। ईमानदारी और सकारात्मकता दवा है। निस्वार्थ प्रेम भावना भी दवा है। सबका भला करना दवा है। ऐसा कुछ करना जिससे किसी की दुआ मिले, यह दवा है। सबके साथ मिलजुल कर रहना दवा है। परिवार के साथ खाना पीना और घुलना मिलना भी दवा है। आपका हर सच्चा और हर अच्छा दोस्त भी बिना पैसे के पूरा मेडिकल स्टोर दवा है। मस्त रहें, व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें और खुश मिजाज रहें, यह भी दवा है। हर नए दिन का भरपूर आनंद लेना भी दवा है। और अंत में किसी को प्रसादी के रूप में या संदेश भेजकर काम करना सुख भी यही दवा है। प्रकृति की महानता को समझना यानी नेचर को समझना वो बहुत बड़ी दवा है। ये सब औषधियां बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध है। जो भी ये सब दवा है इनका कोई पैसा नहीं लगता है, निःशुल्क है। बस सवाल यह है, ये सब जानने के बाद क्या आप भी दवाइयां लेना शुरू करेंगे या फिर वही पैरासिटामोल और टेरामाइसिन? क्या आप दवा लेंगे, या नेचर की दवा लेंगे या पैरासिटामोल और टेरामाइसिन लेंगे? तो ये आपके ऊपर है। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जो श्रोता है, इस बात को सुनकर उनके मन में जरूर एक प्रसन्नता हुई होगी कि हमको पैरासिटामोल और टेरामाइसिन नहीं लेना है, बल्कि जो ये दवाई रेडियो फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से बताई गई है ये जरूर लिया करें और बाद बाकी सब दवा छूट जाएगा। मैं आशा करता हूँ सब लोग इस प्रकार की जो बातें सुनते हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के श्रोता, वो इन दवाइयों का उपयोग करेंगे और जो सिकन हाउस वाली दवा है वो छोड़ के इस दवा पे आ जाएंगे, तो उस दवा की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों ना संजय जी हमें सुंदर सा नगमा सुने और आगे का कार्यक्रम आगे जारी रहेगा।
2: पर मास्टर जी, मेरा हम सबका भी दिल करता है आपसे कुछ बात करने का। शांता जी भी मैं देख रहा हूँ कुछ कहने का इच्छा कर रहे हैं, पर ये कहने के तात्पर्य यह कि आप ये सुंदर सा संदेश रखे मास्टर जी, और कहने के है ये भी कि योग तो योग जो 24 घंटा में कम से कम एक घंटा जो हमें लेना चाहिए अपने शरीर के लिए ना,
1: हाँ,
2: तो उस पे क्या कर सकते हैं लोग?
1: देखो सबके पास 24 घंटा सबके पास है, उसमें से हमने एक घंटा अपने लिए निकालना है, यानी योग प्राणायाम और ध्यान। कितना मिनट? 20 मिनट योग, 10 मिनट प्राणायाम और आधा घंटा ध्यान मेडिटेशन। तो इससे क्या होता है कि योग से हमारा शरीर ठीक रहता है, प्राणायाम से मन ठीक रहता है, प्राण वायु बढ़ती है और ध्यान से हमारा मन शांत हो जाता है। तो जो तीनों चीज़ है योग प्राणायाम और ध्यान, जब तीनों मिल जाते हैं तो हमारा शरीर प्राण यानी हमारी आयु और मन तीनों शांत हो जाते हैं और हम विदाउट डिजीज यानी बीमारी नहीं रहता, मन प्रसन्न रहता है, आत्मा भी खुश रहती है, हम इस प्रकार जीते हैं। और ये सब सीखने के लिए गांधी सेंटर में सब लोग उपलब्ध हैं। जो लोग वहाँ ये सब सीखना चाहते हैं, नीदरलैंड में फोन सानी रेडियो के श्रोता वहाँ जाके सब लाभ उठा सकते हैं। इस विषय में अगर और किसी को कुछ जानकारी चाहिए तो हम चर्चा जारी रखेंगे। अगले प्रोग्राम में लोग अपना सवाल पूछ सकते हैं कि योग कौन कौन सा करना चाहिए, प्राणायाम कौन कौन से करना चाहिए, ध्यान में क्या करना चाहिए, हम और डिटेल में इसको बताएंगे। लेकिन लोगों की पहले इच्छा जागरूक होनी चाहिए और फाउन हिंदुस्तानी रेडियो में फ़ोन करना चाहिए कि हम जागरूक हैं और हमें ये सब चीज़ सोचने को मिल जाए तो कैसा रहेगा। तो आप अपना प्रश्न जरूर रखिए, हम इसका उत्तर आपको घंटे भर तक देते रहेंगे, तब भी पूरा नहीं होगा, क्योंकि योग जो है बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। अगर पूरी ज़िंदगी भी लगे रहो तब भी कम ही कम है। तो आप जितना ज़्यादा इसको पूछना चाहें, समझना चाहें, हम लोग ऊपर उपस्थित हैं। और फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जो कार्यक्रम हैं वो इसीलिए रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठाएं, नई नई चीज़ें सीखें। और जो ज्योति का प्रकाश है, ज्योति हमारे जो अंदर है शरीर के माइंड के, उसको प्रकाश यानी उजाला हो जाता है इसको प्रोग्राम को सुनने से। तो हम इस प्रोग्राम को माध्यम से लोगों को और जागरूक करेंगे, यही हमारी एक उपलब्धता रहेगी। संदेश जी, इस प्रकार से हम कार्यक्रम कर सकते हैं
2: मास्टर जी। और एक सुंदर सा गीत शांता जी ने पिटारा से निकाल करके छोड़ने वाले हैं मास्टर जी।
1: छोड़ दो गीत पिटारा से नगमा,
2: तो नगमा जगदीत सिंह का आवाज में हम सब सुनेंगे। और मास्टर जी कुछ और संदेश अभी देखना है, क्योंकि वज्र आसन आपने कहा है और जल्दी से सोना जल्दी से जागना, इस पे थोड़ा से कुछ और चर्चा कर देना। पर पहले क्यों ना पिटारा से निकाला हुआ शांता जी का और गीत हम सब प्लेयर पे रख चुके हैं जगदीत सिंह के आवाज में
1: जी।

0: ये सुंदर सा गीत जो जगदीत सिंह के जी के आवाज़ में हम सब सुने दोस्तों, और मास्टर जी जो हम सब के साथ जुड़े हुए हैं भारत से, और कुछ और संदेश हम लोग के लिए रखना है कि जल्दी सोना जल्दी जागना, ये बड़ा सिंपल सा बात है, पर इसमें महत्वपूर्ण बात, इसमें गहराई क्या है मास्टर जी? और दूसरा है कि जो आपने आज कितने संदेश दिए उसमें से बस हम सब हम सिर्फ दो ही निकाले हैं कि वज्र आसन है क्या?
1: हाँ, जैसे हमने 26 प्रकार की आज बात बताई है, और इसमें से दो मेन चीज है वज्रासन। जैसे हम लोग भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद हम लोग कुछ नहीं करते हैं, या तो चलो या तो बैठो, तो हम लोग लेटो नहीं बैठो नहीं, चलो चल सकते हो तो, जैसे शाम को भोजन करा तो क्या करें, हम क्या करते हैं कि उल्टा पांव, यानी उल्टा पांव बैठ जाना, उसमें 5 से 10 मिनट वज्रासन। तो इसका मतलब अगर हम 10 मिनट बैठते हैं तो 10 मिनट 5 किलोमीटर का वॉकिंग माना जाता है। तो हम जैसे बैठते हैं वैसे उल्टा पांव बैठ जाए तो वज्रासन उसको बोलते हैं। उससे क्या होता है कि हमारा पूरा पैर मुड़ जाते हैं और सारा हमारा फोकस जो डाइजेशन सिस्टम है, यानी भोजन को पचाने में सारी ताकत पैरों के नीचे ना जाके डाइजेशन में चली जाती है, और जब डाइजेशन में चली जाती है तो हमारा शरीर एकदम भोजन को पचा देता है और जल्दी से बहुत हल्का हो जाता है शरीर, पेट ज़्यादा नहीं फूलता। मैं देखता हूँ कि लोग खाना खाते और लेट जाते हैं, इससे क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, और कोलेस्ट्रॉल बढ़ते बढ़ने के साथ साथ फैट बनता है, फैट पेट में फैट जमता है, और जब फैट जमता है तो बहुत सारी बीमारियों का जन्म होता है, किसी को डायबिटीज होता है, किसी को कोलेस्ट्रॉल हाई कोलेस्ट्रॉल, और ये जो मेन प्रॉब्लम आजकल हार्ट अटैक, इसी का सब नतीजा है। तो हमें इसको ठीक करने के लिए वज्रासन करना है, योग करना है, योग प्राणायाम। योग कैसे करना है? योग हम लोग सुबह सुबह कर सकते हैं खाली पेट, या तो शाम को भी कर सकते हैं, और जो प्राणायाम है वो भी योग करने के बाद सेकेंड राउंड है, और जो मेडिटेशन है वो थर्ड राउंड है। जब योग प्राणायाम हो जाए इसके बाद ध्यान करना है। ध्यान हमें केवल बैठ के सांसों को देखना है, कैसे सांस आ रही है कैसे सांस जा रही है, और हफ्ते में थोड़ा सा एक दिन पहले 6 घंटा फिर 8 घंटा फिर 12 घंटा फिर 24 घंटा उपवास करना है। उपवास का मतलब फास्टिंग रखना है, थोड़ा सा हम पानी पी सकते हैं, जूस पी सकते हैं, या एक फल खा सकते हैं, धीरे धीरे करके उसको कम करना। जब कम हो जाए तो उसको आनंद लेना, उसी में हमें अच्छा लगने लगेगा कि हम लोग भोजन नहीं करते हैं तो और हमारा शरीर एक्टिव रहता है। क्योंकि जब हम लोग भोजन करने का एक नियम है संजय जी, हमको भूख है 4 रोटी की, हमने 5 खा ली तो इसी से सारा चीज बिगड़ता है। हमें अगर 4 रोटी की भूख है तो हमने 2 खानी है, 1 रोटी की जगह हमने एयर के लिए छोड़नी है और 1 रोटी की जगह हमने वाटर के लिए छोड़नी है। अगर हम भोजन आधा करते हैं जितनी भूख का, तो हमारे शरीर में ऊर्जा बनती है, और अगर हम ज़्यादा खाते हैं तो हमारे सारी ऊर्जा जो शरीर की है वो उसको पचाने में लग जाती है, तो फिर हमारा घाटा ही घाटा है। इस बात को हम केवल एक जीभ का स्वाद के लिए और एक पेट की आग के लिए नहीं समझ पाते हैं, लेकिन साहून हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से जो लोग इस चीज़ को सुन रहे हैं वो सब समझ जाएंगे और इस चीज़ को फॉलो करेंगे। जब फॉलो करेंगे तो उसको बड़ा लाभ होगा, और फिर कॉल करके तार करके बताएंगे कि हमने क्या साहून हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से सीखा है। इस प्रकार का हम जो कार्यक्रम रख रहे हैं वो बहुत ही उपयोग में आने वाला है। मैं आशा करता हूं कि सब लोगों को ये कार्यक्रम पसंद आएगा और आगे भी आता रहेगा। यही हमारा साहून हिंदुस्तानी रेडियो का उद्देश्य है कि हम इस प्रकार के कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे और इसको मनन करेंगे, मनन करके कार्य करेंगे। जब कार्य करेंगे तो हमारा लाभ पूर्ण रूप से लाभ प्राप्त होगा। क्यों ना संजय जी, आप सुंदर सा नगमा की ओर बढ़े।
2: हाँ राजेंद्र जी, जरूर हम बढ़ेंगे नगमा की ओर, पर उससे पहले जो आपने कहा वज्र आसन और सभी जो पॉइंट आपने बताए कि योग का और जीवन में क्या करना चाहिए ताकि हम तंदुरुस्त रहे, वाकई में जो हमारा दोस्तों जो है जो भाई बहन सुनते हैं हम सब यह फॉलो करें तो वाकई में कोई एक ऐसा बीमारी शरीर में नहीं आएगा।
0: अरे हाँ, मैं इस पे कुछ और रखना चाहता हूँ मास्टर जी। एक समस्या हुआ ना, किसी को हाई प्रेशर हो गया तो बीपी
1: अगर
0: तो
1: अगर किसी को
0: नहीं नहीं पर ये हुआ किसी को ना, तो वो गया डॉक्टर में तो डॉक्टर ने उसे दवा दे दिया तो दवा दे दिया तो फिर दो तो कुछ समय बाद मेरे ख्याल से 4 हफ्ता बाद फिर डॉक्टर के पास गया तो फिर उसका प्रेशर की नापा बीपी तो घटा नहीं था, तो उससे कहा कि तू अब एक गोली के
2: बदले
0: 2 गोली खा। पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने बस वही एक गोली खाया और थोड़ा योग का प्रयोग किया
1: जी।
0: तो योग का प्रयोग किया तो जो प्रेशर हाई प्रेशर था बीपी जो ऊंचा था वो धीरे धीरे निकलने लगा, नीचे आ गया। तो डॉक्टर ने के पास फिर कुछ मसला हुआ तो उसके पास गया तो कहने लगा कि डॉक्टर क्योंकि वो यहाँ कंप्यूटर में रख देते तो सभी देख लेते कि कौन कौन गोली खा रहे हैं। तो डॉक्टर ने कहा गोली खा रहे ना दो, तो उन्होंने कहा नहीं मैं गोली एक ही खा रहा हूँ। पर डॉक्टर ने बोला कि एक ही खा रहा हो बैठो, और बैठा तो उसे नापने लगा तो जब नापा तो देखा कि प्रेशर कमती है और लाख हो गया, तो डॉक्टर घबरा गया और कहने लगा कि अरे ये तो माजरा कुछ और हो गया। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कर तू रोज और 2 हफ्ता लगातार ये अपना प्रेशर को यानी कि अपन ब्लड ग्रुप को नापते रहो और धीरे धीरे गोली आपको छोड़ना पड़ेगा। तो उसके बाद में उन्होंने जब जो यहाँ पर दवा लेना जाते लेने लेते हैं ना अपोतेक में, तो अपोतेक में गया क्योंकि माजरा कुछ और था, तो वहाँ अपोतेक वाला कह रहा कि अभी तो यहाँ 2 गोली खाने का लिखा था कैसे अभी एक ही गोली हो गया। तो देखो योग का शक्ति क्या है ना
1: जी,
0: कि योग का शक्ति है कि अब यहाँ पर सब चाहते हैं कि गोली बढ़ाते जाओ।
1: हाँ,
0: वो न सिर्फ डॉक्टर पर अपोतेक वाला भी घबरा जाता है कि भाई मेरा आमदनी कम हो जाएगा।
2: वो तो बात सही है।
1: हाँ, लेकिन अगर हम लोग योग प्राणायाम ध्यान करेंगे तो हमें गोली की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं,
0: बिल्कुल
1: तो
0: नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं।
1: हाँ, वो तो क्योंकि वो केमिकल है और जब केमिकल हमारी बॉडी में जाता है तो कुछ चीज जो ठीक करता है वो बहुत सारी चीजों को बिगाड़ता भी
2: बात।
1: तो हम लोग जब नेचर की तरफ आते हैं, योग प्राणायाम ध्यान की तरफ आते हैं, तो ये सब धीरे धीरे छूट जाता है और हम लोग नेचुरली स्वस्थ हो जाते हैं। तो फिर हमें गोली की तरफ जाने की जो डॉक्टर की तरफ जाने की जरूरत नहीं होती। इसलिए योग और प्राणायाम ये बहुत बड़ी शक्ति है और हमें सेकेंड हाउस न जाके हमें हैप्पीनेस हाउस जाने की जरूरत है। तो ये हम हैप्पीनेस हाउस योग प्राणायाम और ध्यान से ही जा सकते हैं। सेकंड हाउस मतलब आप समझ ही रहे हो, सेकंड हाउस और हैप्पीनेस हाउस।
2: हाँ,
1: योग का सेंटर उसको हैप्पीनेस हाउस हमने नाम दिया है और सेकंड हाउस तो आप जानते हैं हॉस्पिटल जो है। तो हमें लोगों को खुद समझ आएगा कि हम किस तरफ जाना चाहते हैं उसी तरफ जाएंगे।
2: हाँ, आपने भी कहा कि खाना खाते समय तो ये भी ख्याल होना चाहिए कि थोड़ा से हमारा स्टमक जो है ना, माख जो है उसमें थोड़ा से हवा खात एयर खात जगह होना चाहिए और थोड़ा से पानी खात जगह होना चाहिए।
1: हाँ, ताकि 25% हाँ, स्वस्थ रहेंगे।
2: हाँ, ताकि वो जो स्टमक के कैसे बोलते हैं पता नहीं, स्टमक जो है माह जो है वो अपना काम भी अच्छा तरह से कर सके। मग जो हाँ, भी आपने कहा वज्र आसन राजेंद्र जी, ऐसा हुआ मैं अपना अनुभव बताती हूँ कि कभी कभी खाना इतना स्वादिष्ट बनता है ना कि थोड़े में संतुष्ट नहीं होता पर मन करता कि और खा ले, बस कि और खा लेते हैं ना तो एकदम से संतुलन बिगड़ जाते, सांस नहीं ले पाते ठीक से। तो हम कई दफ़ा ऐसे किया है ये वज्र आसन, अगर उसका आपको प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो शुरुआत में बहुत दर्द देगा।
1: हाँ, इसमें 2 चीज़ें हैं, ये जब हम लोग स्वादिष्ट भोजन ज़्यादा कर लेते हैं तो अगली बार जो हम भोजन करें उसको छोड़ दें, सेकेंड जो राउंड है भोजन का उसको छोड़ दें। दूसरी चीज वज्रासन अगर जब कम हम करते हैं तो हमें हाथ भी टच करना चाहिए जमीन पे,
2: हाँ।
1: और 50% वेट हमारे हाथों में जाए, 50% पैरों में जाए तो दर्द नहीं होगा।
2: हाँ।
1: धीरे धीरे हम उसको 60, 65, 70 ऐसे करके ट्रांसफर करते हैं, ऐसा हमने 10 दिन में करना है तो धीरे धीरे हमारा आदत बन जाएगा, नहीं होगा।
2: हाँ,
1: तीसरी चीज जो आप कह रहे हैं कि हम लोग भोजन करते हैं,
2: हाँ।
1: तो उसके जो नियम है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, जब हम प्रत्याहार की अवस्था में पहुंचते हैं हमारे शरीर में यम नियम ऑलरेडी रहते हैं,
2: ये
1: यम और नियम, और जब हम आसन प्राणायाम करते हैं तो प्रत्याहार पांचवी स्थिति है योग की, अष्टांग योग की। उस अष्टांग योग की जो पांचवी स्थिति है, हमें स्वतः ज्ञान हो जाता है हमें कौन सा भोजन कितना करना चाहिए, कब, जब ये चार चीजें हमारे शरीर में पहले आ गई, इसके बाद हमें खुद ज्ञान हो जाएगा कि हमें नहीं खाना चाहिए। जैसे डायबिटीज मरीज को शुगर नहीं खाना है और लेकिन उसको शुगर पसंद है, लेकिन जब वो पांचवी स्थिति में पहुंच जाएगा योग प्राणायाम वाली, यम नियम आसन प्राणायाम वाली, तो खुद उसको स्वतः अनुभव हो जाएगा और उसको वो चीज पता चल जाएगी कि भाई ये चीज मेरे लिए अच्छी नहीं है, तो उसको वो चीज अच्छी नहीं लगेगी,
2: नहीं लगेगा। बात सही है, बात सही है, हाँ, 100% सही आपने कहा है, ये मैं भी अनुभव कर रही हूँ।
1: हाँ, लेकिन जब हम इसको नहीं, वो पता नहीं चलेगा, क्योंकि पता कब नहीं चलेगा, जब हम इसमें आगे नहीं बढ़ेंगे योग प्राणायाम प्रत्याहार, योग प्राणायाम आसन प्राणायाम में, लेकिन जब हम केवल खाने में रहेंगे तो ये चीज हमारी ऐसी चलती रहेगी और स्वास्थ्य बिगड़ने का खतरा रहता है। इसलिए हम कहते हैं कि अष्टांग योग जरूर करना चाहिए। जब हम अष्टांग योग में प्रत्याहार यानी भोजन के बारे में पता चल जाता है, तो फिर हमारा योग प्राणायाम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा आ जाती है, धारणा सबके प्रति एक जैसी होनी चाहिए, इसके बाद ध्यान आ जाता है, मेडिटेशन, और फिर समाधिस्थ हो जाते हैं,
2: हाँ।
1: अपने आप में हम खुश रहना सीख जाते हैं, किसी की कोई जरूरत नहीं है,
2: हाँ।
1: यही हमारा उद्देश्य है पावन हिंदुस्तानी रेडियो का, कि सब लोग सुखी रहें, समृद्ध बने और अपने आप में खुश रहें। मैंने देखा है कि नीदरलैंड में बहुत सारे लोग अकेले रहते हैं, अकेला महसूस करते हैं, लेकिन जब वो लोग इस स्थिति में आएंगे, योग प्राणायाम ध्यान धारणा में आ जाएंगे, तो उनको फील नहीं होगा कि हम अलोन हैं, हम ऐसा लगेगा हम कुछ, आपो दीपो भव, आप अपने दीपक स्वयं बनो, भगवान बुद्ध ने कहा है, लास्ट प्रवचन था उनका मरते समय, उनके शिष्य ने पूछा कि गुरुजी अब आप जा रहे हो, आप लास्ट कुछ चीज बता के जाओ, तो उन्होंने बता के सब चीज मैंने बता दी, एक चीज रह गई, उन्होंने बोला बताओ, उन्होंने बताया तो बोला आपो दीपो भव, इसका मतलब आप अपने दीपक स्वयं बनो, बस यही हमारा उद्देश्य है, किसी की जरूरत नहीं किसी को, आप अपने दीपक स्वयं बनो, अपना दीपक जलाओ, उसी उजाले से चलो।
2: गौतम बुद्ध का संदेश है ये,
1: गौतम बुद्ध का लास्ट संदेश,
2: हाँ जी, हाँ। नहीं बाकी तो, मैं कह रही थी ना, खाना खाते समय ये भारी सा फील होता है ना, तो वज्र आसन जो आप हम मैं करती थी, तो ऐसा कुछ 4-5 मिनट में जो भारी सा फीलिंग होता है वह सब गायब।
1: हाँ, वज्रासन का यही उद्देश्य है कि वो,
2: हाँ।
1: जब खाना खाते पेट भर जाता है तो ऊपर की तरफ गैस जाती है,
2: हाँ,
1: वज्रासन में जब वज्रासन में बैठते हैं तो वो रिलीज हो जाती है डाइजेशन सिस्टम में,
2: हाँ।
1: जो शरीर हमारा तेजाब बनाता है उसमें जाता है,
2: हाँ, ये रेर के, हाँ, पीठी जो वो एकदम रेक्ट हो जाता है, राइट,
1: हाँ, फिर उसको क्लींजिंग पॉइंट में चले जाता है, पेट खाली हो जाता है और एकदम शरीर की जो गैस ऊपर ना जाके नीचे चली जाती है,
2: हाँ,
1: इसलिए हमको रिलैक्स फील होता है
2: जी। और जो आप, हाँ, जो आपने कहा कि योग करते समय और इसमें बढ़ते बढ़ते, तो जो खाना पीना जिसमें हम पहले से जिसके हम पसंद करते थे, तो और हम ये योग करेंगे तो ये खाना पीना जो है ये शरीर अपने आप कहेगा नहीं, ये नहीं चाहती हूँ, अपने आप,
1: जी,
2: हाँ।
1: जब हम हमारे अंदर ज्ञान अपना आप है, किसी की कोई जरूरत नहीं है,
2: हाँ।
1: लेकिन उसको जागृत करना है, जो हमारा सेल्फ नॉलेज है,
2: हाँ।
1: उसको योग के माध्यम से जागृत करना है, तो फिर शरीर हमारा स्वयं बताएगा कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है।
2: बिल्कुल,
1: किसी डाइटिशियन के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप सेल्फ डाइटिशियन हो।
2: बिल्कुल सही है, सहमत है एकदम, बिल्कुल, क्योंकि ये भी मैं अनुभव की अपने जीवन में, इसलिए मैं जानती हूँ, तो आप जो बता रहे हैं ना, तो सेम याद आ जाता है, इसलिए कहती हूँ कि हाँ, नहीं ये कोई गपशप नहीं है या कोई आम से तोड़ कलाई नहीं, ये सही है, ये हकीकत है,
1: यही हकीकत है, यही हकीकत है।
2: और देखो ना हमारे पूर्वज जो है, जो ऋषि मुनि में, ये सब तो कित सालों सौ साल सब जिए है बगैर खाना पीना से।
1: हाँ, ये जो हमारे ऋषि सतयुग में तो हजारों वर्ष रहते थे, त्रेता में थोड़ा कम हुए, सौ वर्ष लेने लग गए द्वापर में, और कम हुए। कलयुग में हमारी आयु 120 वर्ष की है, अगर हम खान पान अच्छे रखते हैं फिर भी हम लोग 120 वर्ष जी सकते हैं, लेकिन डिपेंड किसके ऊपर है, हमारे ऊपर स्वयं। खान पान का, आसन प्राणायाम का नियंत्रण रखे तो हमारी बॉडी 120 आज भी अच्छे से रह सकती है, कलयुग की एज है।
0: मास्टर जी, आज आप संदेश काफी रख चुके हैं, जरूर हमें भी बहुत अच्छा लगा संदेश, कितना अच्छा लगा सुनत ना
2: जी।
0: पर शांता जी, वो मंत्र जो जो मास्टर जी ने अभी सुनाए कि अकेल अलोन रहने वाला मंत्र, अभी आपको मालूम है?
2: आपो दीपो भव,
0: आपो दीपो भव,
2: या एक फर लिखते
0: तो आपो दीपो भव। ये सभी सुनने वालों, इसको हम जानबूझ करके दोहरा रहे हैं कि आपो दीपो भव, जो अलोन, जो अकेलवा रहते हैं,
2: इंसान बोले
0: इंसान रहते हैं और अपने अंदर के ज्योत को जलाना है। तो दोस्तों सुनने वालों, ये फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो है, हमारे मास्टर जी हम लोग के साथ संदेश के ऊपर संदेश रख रहे हैं, और देखा जाए कि शांता जी भी इस समय कुछ कर रहे हैं कंप्यूटर से, मेरे ख्याल से कि अभी हम लोग को बढ़ना है कमर्शियल्स के ओर। पर शांता जी एक गीत भी रखने वाले थे आप।
2: हाँ हाँ, उसको
0: तो गीत को चला देते हैं। मास्टर जी आपको बहुत बहुत सा धन्यवाद, और आशा यही है कि हम सबको इसी प्रकार से आपका कार्यक्रम है हम लोग चलाते रहे, और आप हम सबको ऐसे ही सहयोग देते रहना।
1: बहुत बहुत धन्यवाद फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के श्रोताओं को, हमारा कार्यक्रम सुनने के लिए अपना समय निकालते हैं और मनन करते हैं, फिर इसके बाद थर्ड में उनको फायदा होता है, तो अगली बार हम फिर अपना कार्यक्रम को लेके मिलेंगे। तब तक के लिए सबको नमस्कार।
0: नमस्कार
2: राजेंद्र जी, आपको भी, आप भी अपना मूल्य वक्त निकाल कर और आकर सेवा करें। आप चाहे आप विदेश में हो भारत में हो, पर नहीं लगता है कि आप यहाँ हैं
0: और हम लोग के साथ सहयोग देते हैं।
2: जी
1: जी जी, जी।
2: आप बहुत आभारी है,
0: बहुत बहुत आभारी,
1: बहुत बहुत धन्यवाद
2: आप लोग के भी।
1: धन्यवाद।

0: आपने सुना गुरु दक्षिणा, और कार्यक्रम में जो अभी अनुराधा जी अपना संदेश रखने वाले हैं गुरु दक्षिणा के अंतर्गत, तो अनुराधा जी मैं आपसे निवेदन करूंगा, हार्दिक से स्वागत करता हूं आपको, जो इस समय आप भारत से हम लोग के साथ जुड़ गए हैं, और हार्दिक से स्वागत करते हुए आपको, और मैं कहना चाहूंगा कि आप अपना संदेश जो आज के आपने और जो गुरु दक्षिणा के अंतर्गत में सुनाने वाले हैं, तो हम सबके लिए जरूर रखे।
1: ज्योति के प्रकाश में सभी सुनने वालों को अनुराधा का नमस्कार। मैं आशा करती हूँ आप सब मंगलमय होंगे और अपना जीवन अच्छा व्यतीत कर रहे होंगे। चलिए आज संजय जी, मैं सबको एक कहानी से शुरुआत करती हूँ और मैं आशा करती हूँ आप सबको ये कहानी पसंद आएगी। इसका नाम है गुरु दक्षिणा। तो एक बार एक शिष्य ने विनम्रता पूर्वक अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी कुछ लोग कहते हैं कि जीवन एक संघर्ष है, कुछ अन्य कहते हैं कि जीवन एक खेल है, और कुछ जीवन को एक उत्सव की संज्ञा देते हैं, इनमें आप बताइए कौन सी सही है। गुरुजी ने तत्काल बड़े ही धैर्य पूर्वक उत्तर दिया और बोले, पुत्र जिन्हें गुरु नहीं मिला उनके लिए जीवन एक संघर्ष है, जिन्हें गुरु मिल गया उनका जीवन एक खेल है, और जो लोग गुरु द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने लगते हैं मात्र वे ही जीवन को एक उत्सव का नाम देने का साहस जुटा पाते हैं। यह उत्तर सुनने के बाद भी शिष्य पूरी तरह से संतुष्ट ना हुआ, गुरु जी को इसका आभास हो गया, उनको समझ में आ गया, उनको लगा कि ये उनका शिष्य मेरे जवाब से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। वे अपने शिष्य से कहने लगे, लो तुम्हें इसी संदर्भ में मैं एक कहानी सुनाता हूं, ध्यान से सुनोगे तो स्वयं ही अपने प्रश्न का उत्तर पा सकोगे। और वो कहानी सुनाने लगते हैं। संजय जी, मैं बताना चाहूंगी वो कहानी कि क्या गुरुजी ने कहानी सुनाई, पर क्यों ना एक गीत हो जाए और फिर आगे बढ़ते हैं।
0: जरूर जरूर जरूर जरूर अनुराधा जी, हम पहले एक गीत की ओर बढ़ेंगे, और ये सुंदर सा संदेश जो आप हम सब के लिए रख रहे हैं कि गुरु दक्षिणा अभी क्या होने वाला है, दोस्तों सुनने वालों आप सुनते रहना। पर शांता जी ने एक गीत को चुन करके रखे, शांता जी क्यों ना वो गीत को आप चला देते हैं।
2: बिल्कुल एकदम से सही।

0: ये सुंदर सा गीत जो आपने सुने, सुनने वालों, आज का संदेश जो अनुराधा जी रख रहे कि गुरु दक्षिणा, शांता जी इस पे आप क्या कहना चाहोगे?
1: गुरु का अर्थ जो है, जैसे मैं कथा पे सुनी हूँ, अगर आप भी कथा पे जाते हो, हमारा श्रोतागण जो है मंदिर में जाते हो, तो उसका कहते कि गुरु जो है जो अंधकार दूर करने वाले हैं, प्रकाशित करे और जो बताते हैं सही रास्ता जो है, और अपना अनुभव के अनुसार जो हम सही रास्ते पे चले तो हमारा जीवन जो है, हमारा सड़क जो है चलने के लिए वो प्रकाशित रहेगा, और गुरु के सहारे हमारा जीवन में और सारे प्रकाशित हो जाए।
0: पर शांता जी इस पे मैं थोड़ा से मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं सहमत नहीं हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है, पर इस पे मैं थोड़ा सा और प्रकाश डालने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आजकल लोग सोचते हैं कि हम जीवन जीना सीख गए, कभी भी कोई भी कार्यक्रम करते हैं तो अपने मनमानी करते हैं।
1: तो आपने ठीक कहा, सोचने में और जानने में फर्क है।
0: सोचने और बड़े, अरे वाह बड़ा बात कह गए।
1: नहीं, सही बात है, सोचने में और जानने में ये फर्क है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हाँ। देखो अभी अब किस तरफ आप हम संदेश को ले जाए, अभी अनुराधा जी ये पूरा संदेश हम सबको रखने वाले हैं, पर जब देखा जाए कि हम लोग के जो सभ्यता है, हमारे संस्कृति है, हमारे जो संस्कार हो
1: जी,
0: ये तीनों में आजकल हम लोगन कमती इस पे ध्यान देते हैं, और सभी चाहते हैं कि हम अपने मरने के बाद मोक्ष को प्राप्त करें। हम आजकल किसी को अब देखा जाए, लोग सोचते हैं कि भाई हाँ हमने तो सारा जीवन जी लिए, अब हमें क्या करना है, और कहते हैं कि भाई हम अपने बच्चों के लिए कोई परेशानी ना होए। अब देखा जाए जब मृत्यु का समय आ जाए ना
1: जी,
0: तो मृत्यु का समय ये तो हमारा है, होना है, आपका भी होना है, और सभी का होना है, एक ना एक दिन सभी को जाना है,
1: शरीर को छोड़ना है,
0: जाना है। तो हम लोग के संस्कृति और संस्कारों में कुछ भारत से लेकर के सूरीनाम को गए थे, सूरीनाम से लेकर के हॉलैंड में लेकर के आए हैं, अभी तलक कोई कोई परिवार में, कोई कोई घरों में अभी तलक उसी प्रकार से जो 150 साल पहले से लेकर के सूरीनाम को गए थे अभी तलक चल रहे हैं, मगर कोई कोई है जो बिल्कुल बदल गया। हाँ, बोले कि आलस एन न्यू याश एक हफ्तर खेन तैत फोर एन म केंद्र मुतहफदार खेन, बोले कोई प्रकार से पर शर्म ना हो हमारे लड़कन के, पर हमारे जो ग्रंथ है, हमारे जो सुंदर सुंदर संस्कारों है, क्या उसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए?
1: देखो आप बहुत अच्छे से कहा ना कि हम नहीं करते हैं कि जो हमारे पूर्वजों भारत से सूरीनाम गए, सूरीनाम से यहाँ आए और यहाँ पर आकर उसमें बदलाव लाते हैं, तो उसमें हमारा जो है सरनामी या इंडियन,
0: नहीं शांता जी इफ़तर कोरेक्सी, क्योंकि ये कार्यक्रम 188 देशों तक सुना
1: अच्छा
0: जाता है, और
1: हाँ।
0: बदलाव सभी कोई नहीं करते, क्योंकि कितने हैं, दी आल्ताइत नोक्स्तम फस्तक द सेल ऑफ द परंपरा आल्ताइत, जो जैसे कि जो लेकर के भारत से सूरीनाम गए थे
1: हाँ।
0: अभी तलक कोई कोई उससे भी ज्यादा करते हैं
1: हाँ, अतः वो सिर्फ ना ही सिर्फ हमें में, पर अन्य जात जो है वो भी उसको लेकर चलता है, वो अपना बना लिए, क्योंकि हमारा जो है सभ्यता उनको भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें कुछ रस है, कुछ जैसे हमारा राजेंद्र जी बताए ना योग के बारे में, योग हमारे अन्य जात जो है वो जाकर सीख कर आकर उसे यहाँ पर हम सबको सिखाते हैं, और जो संस्कार जो हमारे गुरु जी बड़े बड़े गुरु जो सो बनाए है, किताबें लिखे, पुस्तक लिखे, उसमें से ग्रंथ जो ली, उसमें से पढ़ पढ़ के वो संस्कृत जो नहीं जानते उसको सीखते हैं, पढ़ते हैं और उसे अपने जीवन में अनुभव उतारते हैं, जीते हैं। और हम कहते हैं कि कितने लोग ऐसे कहते हैं नहीं वो तो पुराना हो गया, न्यू याश जैसे संगीत भी बना देते ना, जो लता जी रफ़ी जैसे गाए थे उसको भी न्यू याशे में करे, अच्छा लगता सुनने के लिए। पर
0: अच्छा लगता पर धुन तो नहीं, वो वही धुन चलाते हैं पर आवाज़ दूसरा हो जाता है।
1: हाँ
0: जरूर मनोरंजन के लिए भी होना चाहिए।
1: रूट्स जो है वो रहेगा हमेशा,
0: रूट्स है जो रहेगा।
1: या
0: कहते कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने दे दियो गोविंद दिखाई।
1: बहुत अच्छा,
0: इस पे भी थोड़ा से कुछ
1: बताओ।
0: पहले अनुराधा जी आप अपना संदेश
1: अच्छा,
0: रख दीजिए।
1: हाँ, अनुराधा जी,
0: अनुराधा जी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं भारत से, तो अनुराधा जी कुछ अपना संदेश जो गुरु दक्षिणा के अंतर्गत सुनाइए।
2: ने क्या कौन सी कहानी अपने शिष्य को बताई, उन्होंने जो कहानी सुनाई वह इस प्रकार थी। एक बार की बात है कि किसी गुरुकुल में तीन शिष्यों में अपना अध्ययन संपूर्ण करने पर अपने गुरु जी से वह बताने के लिए विनती की कि उन्हें गुरु दक्षिणा में उनसे क्या चाहिए। गुरु जी पहले तो मंद मंद मुस्कुराए और फिर बड़े स्नेह पूर्वक कहने लगे, मुझे तुमसे गुरु दक्षिणा में एक थैला भर के सूखी पत्तियां चाहिए, ला सकोगे? वे तीनों जो शिष्य थे वे मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि उन्हें लगा कि वे बड़ी आसानी से अपने गुरु जी की इच्छा पूरी कर सकेंगे। उनको लगा ये कौन सी बड़ी बात है, ये पत्ती तो हम ढूंढ के ले आएंगे, सूखी पत्तियां तो जंगल में बहुत ज़्यादा बिखरी रहती हैं, तो उनको लगा ये तो बहुत ही आसान सा कार्य है, वो आराम से कर लेंगे। वो तीनों बड़े उत्साहपूर्वक एक ही स्वर में बोले, जी गुरुजी, जैसी आपकी आज्ञा। अब वे तीनों शिष्य चलते चलते एक समीप पास में एक जंगल में पहुंच चुके थे, लेकिन यह देखकर कि वहां पर तो सूखी पत्तियां केवल एक मुट्ठी भर भी ही थी, उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा, क्योंकि वो तो सोच रहे थे कि जंगल है वहां तो बहुत सारी सूखी पत्तियां बिखरी होंगी तो यह बहुत ही आसानी से उठा लेंगे, पर जब देखा तो वहाँ तो खाली एक मुट्ठी भर ही जितनी पत्तियाँ बिखरी हुई थी। अब वे बड़े आश्चर्य रह गए कि क्या करें, वे सोच में पड़ गए कि आखिर जंगल में कौन सूखी पत्तियाँ उठाकर ले गया होगा। उन्होंने सोचा ऐसा कैसा हो गया कि ये जंगल में एक भी सूखी पत्तियाँ नहीं है। इतने में ही उन्हें दूर से आता हुआ कोई किसान दिखाई दिया। वे उसके पास पहुंचकर उसे विनम्रता पूर्वक याचना करने लगे कि वह उन्हें केवल एक थैला भर सूखी पत्तियां दे दे। अब ये समझ लीजिए कि जब जरूरत पड़ती है, जंगल में तो हर पेड़ से सूखी पत्तियां गिरी रहती हैं, पर जब ना पाने पर वो उनको वो तीनों शिष्य घबरा गए कि भाई यहाँ तो पत्तियाँ नहीं है, अब उनको तो गुरु जी की आज्ञा का पालन करना है और थैला भर पत्तियाँ लानी है। तो उनको जब वो किसान मिला तो उन्होंने उससे कहा कि भैया थोड़ा सा कहीं से हमें पत्तियाँ दिलवा दो। अब उस किसान ने उनसे क्षमा याचना करते हुए कहा, उन्हें ये बताया कि वह उनकी मदद नहीं कर सकता क्योंकि उसने सूखी पत्तियों का ईंधन के रूप में पहले ही उपयोग कर लिया था। तो उसने बताया कि जो जितनी सूखी पत्तियां थी उसने उनका उनको इकट्ठा करके ईंधन यानी कि उनको इस्तेमाल कर लिया, एज अ फ्यूल इस्तेमाल कर लिया, और उनको जलाकर सूखी पत्तियों से जलाकर अपना इस्तेमाल कर लिया। तो अब वो उसने तो मना कर दिया कि मैं तो आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। अब आप सब उत्सुक होंगे जानने के लिए कि क्या होगा, और मैं भी जानना चाहूंगी कि आगे क्या होगा। पर आगे जाने से पहले संजय जी, क्यों ना एक गीत हो जाए और फिर हम कहानी में आगे बढ़ते हैं।
0: बिल्कुल अनुराधा जी, गीत तो हम लोग तैयार करके रख चुके हैं। शांता जी जो पनेल के पीछे बैठे हुए, शांता जी कौन सा गीत चलाने वाले हैं आप?
1: गुरु जी के बारे में, मेरे सतगुरु जी के तुझसी मेहर करो, सिद्धार्थ मोहन की आवाज में।
0: सिद्धार्थ मोहन की आवाज में हम सब एक सुंदर सा गीत के ओर बढ़ेंगे, फिर और संदेश अनुराधा जी हम लोग के लिए रखने वाले हैं।

0: ये सुंदर सा गीत सुनने को प्राप्त हुआ, और किसके आवाज में फिर ये गीत जो आपने रखे शांता जी?
1: सिद्धार्थ मोहन जी की आवाज में।
0: सिद्धार्थ मोहन जी की आवाज में ये सुंदर सा गीत हम सबको सुनने को प्राप्त हुआ। हमारे साथ जुड़े हैं भारत से अनुराधा जी, और अनुराधा जी आज का विषय जो है कि गुरु का दक्षिणा। तो गुरु का दक्षिणा कैसे और किस प्रकार से है, आप सुनते रहना, क्योंकि अनुराधा जी खूब जोर तोर से हम सबको इसके बारे में सुनाने वाले हैं।
1: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पता लगाते हैं कि आगे क्या हुआ। तो जो कहानी जो गुरुजी सुना रहे थे वो खत्म हुई। तो जब कहानी खत्म हुई, वह शिष्य जो गुरुजी की कहानी एकाग्रचित होकर सुन रहा था, बड़े ध्यान से सुन रहा था, अचानक बड़े उत्साह से बोला, गुरुजी अब मुझे अच्छी तरह से ज्ञात हो गया है कि आप क्या कहना चाहते हैं। आपका संकेत वस्तुतः इसी ओर है ना कि जब सर्वत्र सुलभ सुखी पत्तियां भी निरर्थक या बेकार नहीं होती हैं, तो फिर हम कैसे किसी भी वस्तु या व्यक्ति को छोटा और महत्वहीन मानकर उसका तिरस्कार कर सकते हैं। चींटी से लेकर हाथी तक और सुई से लेकर तलवार तक सभी का अपना अपना महत्व होता है। गुरुजी भी तुरंत ही बोले, हाँ पुत्र, मेरे कहने का भी यही तात्पर्य है कि हम जब भी किसी से मिले तो उसे यथा योग मान देने का भरसक प्रयास करें, ताकि आपस में स्नेह सद्भावना सहानुभूति एवं सहिष्णुता का विस्तार होता रहे और हमारा जीवन संघर्ष के बजाय उत्सव बन सके। दूसरे यदि जीवन को एक खेल ही माना जाए तो बेहतर यही होगा कि हम निविशेष स्वस्थ एवं शांत प्रतियोगिता में ही भाग ले और अपने निष्पादन तथा निर्माण को ऊंचाई के शिखर पर ले जाने का प्रयास करें। तो गुरुजी ने जब बोला कि हमें किसी को भी नीचा नहीं समझना चाहिए, हमें किसी को कम नहीं, जीवन में अपने से कम नहीं समझना चाहिए, ना कि उनका अनादर करना चाहिए और दूसरे को हीन भावना से उनको छोटा नहीं कभी समझना चाहिए, क्योंकि हर इंसान में कुछ न कुछ अच्छाई होती है, योग्यता होती है। तो जब हमें ये समझ में आ जाएगा कि हर इंसान चाहे वो बाहरी रूप से कैसा भी हो, वो हर उसमें एक योग्यता है और वो कुछ हर इंसान अपने में अच्छा है, और हम जिस दिन उस इंसान की दूसरे लोगों की इज्जत करना सीख लेंगे और उसी दिन हमारा जीवन एक उत्सव के तरह बन जाएगा और हम सब एक दूसरे से खुशी खुशी जीवन अपना व्यतीत करने लगेंगे। तो ये जो बात सुनकर अब शिष्य जो था वो पूरी तरह से संतुष्ट था। तो अंततः मैं यही कहना चाहती हूँ कि यदि हम मन वचन और कर्म इन तीनों ही स्तरों पर इस कहानी का मूल्यांकन करें तो भी यह कहानी खरी ही उतरेगी। सबके प्रति पूर्वग्रह से मुक्त मन वाला व्यक्ति अपने वचनों यानी जो हम बोलते हैं, जो हम वचन हमारे बोलते हैं से कभी भी किसी को आहत करने का दुस्साहस नहीं करता, और उसकी यही ऊर्जा, उसकी यही एनर्जी उसके पुरुषार्थ के मार्ग की समस्त बाधाओं को हर लेती है। और वस्तुतः हमारे जीवन का सबसे बड़ा उत्सव तो पुरुषार्थ ही होता है, ऐसा विद्वानों का मानना है। तो हम इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला कि जो गुरु ने अपने शिष्यों को कहानी सुनाकर उनको बताया कि हम भी उसी तरह अपने जीवन में हम सब भी यही सीखें कि हमारे हम हर इंसान को, हर व्यक्ति को हम उनको इज्जत दें, उनको कभी हीन भावना से छोटा ना सोचें कि हमारे सामने वाला हमसे छोटा है। और जो हमारे गुरुओं ने हमें, गुरु ने हमें शिक्षा दी है, हमारे बड़े हमें शिक्षा देते हैं, उनको जिस दिन हम वो समझ लेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं, हमें जो हमें सिखाया गया है कि हम दूसरों की इज्जत करें, दूसरों को हमेशा अपने कभी किसी को नीचा ना समझें, सबकी इज्जत करें और मिलजुल कर रहें, तो जिस दिन हम ये सीख लेंगे हमारा जीवन भी उस दिन एक उत्सव के समान हम व्यतीत कर सकते हैं और खुशी खुशी मिलकर एक दूसरे के साथ इस संसार में हम अपना जीवन मंगलमय होकर व्यतीत कर सकते हैं। आशा है ये आपको कहानी पसंद आई होगी। तो चले संजय जी आगे एक सुंदर सा गीत हो जाए।
0: अनुराधा जी बिल्कुल, आशा तो ये बात तो शायद आशा के लिए छोड़ दिया जाए, क्योंकि ये बिल्कुल बहुत अच्छा संदेश आपने रखे आज कि गुरु बिना, कबीरदा ने जो सुंदर संदेश रखे शांता जी
2: सुनाओ जी,
0: कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपनो दियो गोविंद दिखाई। बस यही बात पे अनुराधा जी भी अपना संदेश को रखे, और बिल्कुल जैसे कि आपने कहा कि आशा रखता हूँ, पर ये आशा रखने के बाद बिल्कुल है ही नहीं, बेगर गुरु के कुछ हो ही नहीं सकता, ऐसा है कि नहीं शांता जी? थोड़ा से नीदलांस में उसे आप निचोड़ दो
2: जी। संजय जी ऐसा ही गुरु जी, आपका गुरु जी का मतलब आपने पूछे थे, तो यहाँ से मैं थोड़ा से सर्च की है, खोज कर लाई हूँ। तो गुरु है वर्ड, गुरु इज अफकलाइट ए ट्वे वर्डन संस्कृत, द गु एंड रू, द गु बतेकन दस्टरनेस एंड द रू बतेकन फर्नीतर। गुरु स्टार्ट दिस फॉर दखेने die de duisternis vernietig en verlichting kan geven. Oftewel, een spirituele gids wiens wie zijn leerlingen verlicht met zijn kennis en leringen. Dat is dan dat woord guru wat het betekent. En guru zelf die doen dat, zijn verlichte mensen, spirituele leraars of gids.
0: शांता जी ने अति सुंदर रूप से ये संदेश को भी नीदरलैंड्स में थोड़ा से ट्रांसलेट कर दिया, क्योंकि पूरा वृतांत तो हम सब नीदरलैंड्स में नहीं ट्रांसलेट कर पाएंगे, पर क्यों ना एक गीत की ओर बढ़ते हैं शांता जी, तो कुछ और आप उसे कोशिश करना नीदरलैंड्स में रखने को।
2: जी संजय जी, मैं एक सवाल करती हूँ कि जो हमारा लेरार, जहाँ पर हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, वो लेरार को हम भी गुरु कह सकते हैं ना?
0: क्यों ना?
2: हाँ, तो वो भी हमारा,
0: पहले कहते हैं कि मातृ भव पितृ भव, माता पिता गुरु, फिर उसके बाद में शिक्षा गुरु, ऐसे इस प्रकार से कितना गुरु हमारे जीवन में
2: आते हैं जो हमको राह दिखाते हैं,
0: राह को दिखाने वाले।
2: हाँ।
0: अब आपने छेड़ी दिया तो मैं एक वृतांत और रखना चाहता हूँ अगर आप मुझे मौका देंगे तो।
2: बिल्कुल बिल्कुल चाहिए।
0: क्योंकि पनील के पीछे तो आप बैठे हुए ना और बटम घीत लिया तो बोल नहीं पाएंगे।
2: नहीं नहीं बटम नहीं गया, हमको यहाँ बात करना है, लोगों को जानना चाहिए कि गुरु क्या है, उसका और महत्व क्या है और उसमें गहराई क्या, और अनुभव जो है उससे हम भी कैसे कहते हैं विश्वास दिला सकते हैं।
0: जरूर। तो दोस्तों एक अवसर जब मिल गया तो जरूर हम कुछ रखने को कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक बार ऐसा हुआ एक आश्रम में एक शिक्षक एक चेला ने अपने गुरु से कहा कि गुरुजी मुझे आपके सब बात अच्छा लग रहा है और आप कहते हैं कि सब कोई के लिए सब जीव के लिए कोई ना कोई अच्छा संदेश है
2: ये।
0: पर वो चेला ने कहा पर गुरुजी मुझे एक बात से मैं सहमत नहीं हूँ, जो गटर में होते हैं जानवर जिसे हम जानते हैं जोक।
2: हाँ?
0: तो पहले जो ये रेडियो सुन रहे हैं, पहले जो धान लगाए हैं,
2: हाँ?
0: घास लगाए हैं गुत्रों में घुस करके और घास को काटे हैं गाय के लिए,
2: हाँ?
0: बकरी के लिए, तो सबको ये बात को पता है कि जोक क्या चीज है।
2: हाँ?
0: क्योंकि वो गटर में रहने वाले जानवर है।
2: हाँ?
0: और एक बार गोड़ में पकड़ लेवत रहा तो छोड़त ना रहा।
2: हाँ?
0: बड़ा मेहनत से छूटता। तो चेला ने कहा कि गुरुजी ये जोक जो है ये कोई काम का चीज नहीं है। तो गुरुजी ने उसे उसी समय कोई और यानी कि ओके आंतोर्त ना देश उसे कोई संदेश नहीं रखा और कहा कि समय आने पे मैं जरूर इस पर ध्यान देंगे। और ऐसा होते हैं कुछ दिन विपरीत होते हैं और एक प्राणी अपने पति के साथ और वहाँ गुरुजी के आश्रम में आकर के पहुँचे।
2: हाँ।
0: और बहुत सा बीमारी था उसे उसके शरीर में से और वो मत यानी कि जो बोलते ना पीप।
2: हाँ, दो,
0: जो निकल रहा था।
2: हाँ, दो द
0: वेतब्लुत्सेल। तो निकल रहा था तो वो अपने और डॉक्टर से कोई तरक्की नहीं हुआ था तो वो आकर के आश्रम में गुरुजी के पास और संत के पास पहुंचते हैं।
2: हाँ।
0: तो गुरुजी जो कहते हैं वही शिक्षक यानी कि वो चेला को बुलाते हैं और कहते कि जाओ गटर से कुछ जोक को पकड़ के लेकर आओ।
2: हाँ।
0: तो वो जो शिक्षक है चेला है जो जा करके गटर में से और कुछ जोक को पकड़ के लेकर आते हैं और गुरुजी वो जो घाव था वो व्यक्ति का।
2: हाँ?
0: वो घाव पे छोड़ देते हैं और वही जोक जो पकड़ करके वो घाव को चूस करके और बिल्कुल सुखा देते हैं।
2: हाँ?
0: तभी गुरुजी क्या कहते हैं अपने शिक्षक को बुला करके अपने चेला को बुला करके कहते कि देखो आपने कहा कि ये जीव जो जोक के नाम से है उसमें कोई महत्व नहीं है और देखिए आज इसका जो इतना बीमार व्यक्ति है इसका जो दर्द था उन्होंने चूस करके और निकाल लिया वो बीमारी को, तो देखो कि सब चीज में कुछ ना कुछ गुण होता है।
2: हाँ।
0: तो वहाँ पर जाकर के चेला ने गुरुजी का प्रणाम करके नमन करते कहे कि गुरुजी गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाओ बलिहारी दोनों आपने गुरु आपने दियो गोविंद को दिखाए। कहने के तात्पर्य है गुरु बिना तो गोविंद को कैसे प्राप्त कर सकते हैं
2: जी,
0: मुमकिन है ही नहीं।
2: हाँ, जोक जो है वो स्लग कहते हैं उसे।
0: स्लग कहते हैं?
2: हाँ, डच में।
0: नहीं स्लग कहते हैं मैथन हेल्सल है और जोक के हेल्सल नहीं होते हैं।
2: हाँ, उसे भी स्लग कहते हैं।
0: बड़ा कटियड़ा है।
2: हाँ, हाँ।
0: शांता तू आप शहर में रह ले हम लोग गांव में रहते ही।
2: नहीं मैं भी गांव में मैं भी गांव की हूँ।
0: और आपको जोक काटा कभी?
2: नहीं। हाँ, काटा नहीं है हम गए थे हम गए थे पहुँचने के लिए नई नई गोत्रों को दे रहा ना, तो उसमें गांव के ऐसे कोई साथी सहेली गए थे तो मैं भी गई। हाँ उसके बाद जो मैं घर आई और नहाने लगी तो देखे मेरे पाँव मेरे को ऐसे चपका था, माय गॉड।
0: तो दोस्तों आप भी, आपको भी ख्याल हो गया होगा घास काटते समय।
2: हाँ।
0: और पहले सबके पास लाट्स भी नहीं होता था ना।
2: वही तो। और जो ये आप कहते हैं ना संजय जी, एक ये डॉक्टर का अनुभव में भी देखा है कि एक व्यक्ति का हाथ कट गया, अंगुली ऐसे कट गया था, तो उसके जोड़ने के लिए खून बहाने के लिए वो भी एक जोंक का इस्तेमाल की।
0: ऐसा?
2: हाँ, काट के ऐसे लगा दीस ना, खोल के ऐसे चमड़ा जो है उसको खोल के बस उसमें लगा दीस जोंक के और बांध दिए इसे, तो जोंक तब खून लेगा ना अपने आप में, तो सर्कुलेशन से ऐसे होते हुए वो उसका उंगली जो कट के निकल गया था ना वो जुड़ गया। तो सभी का जैसा आपने कहा, सभी में एक गुण है, सब चीज में, सब जीव में एक गुण है।
0: सब जीव में एक गुण है, तो क्यों ना आज पिटारा से निकाले हुए गुरु का गीत सुना दो।
2: सुना देती हूँ।

0: सुनने वालों, कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश में हम सब सुंदर सा संदेश जो आज अनुराधा जी गुरु दक्षिणा के बारे में हम सब के लिए रखे, यही आशा करता हूं कि कुछ न कुछ संदेश आप तक जरूर पहुंचे होंगे। और शांता जी, कौन सा गीत चलाने वाले हैं आप?
1: बहुत सुंदर सा है वो भी गुरु जी के बारे में, और पता है कि लोग सुनते हैं और फीडबैक देते हैं जो हमको भी मिलते हैं, और फ़ोन करके भी देते हैं कि ये प्रोग्राम उनको बहुत अच्छा लगता सुनने के लिए। तो यहाँ से मैं, हम सब भी ज्योति का प्रकाश जो हम बनाते हैं, हमारे सभी साथी की ओर से आप सभी की भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप सुनते हैं और जो सुनकर अपना जीवन में प्रयोग लाते हैं, उससे हम भी और खुशी होते हैं, हमारे सभी साथी।
0: तो एक गीत जो शांता जी, मेरे साथ है गुरु जी।

0: अवश्य सिद्धार्थ मोहन की आवाज़ में हम सुने कि तू मेरे मेरे साथ है, ये सुंदर सा गुरु के प्रति अपना प्रेम और प्यार संगीत के रूप में हमको सुना दी है।
1: और वही गीत की ओर हम सब बढ़ने वाले हैं दोस्तों, सुनने वालों, जो हमारे प्रोग्राम के आखिरी सीमा जो हम लोग पहुँच जाते हैं, तो वही गीत हम लोग हर सप्ताह चलाते हैं कि लागी छूटे ना
0: अब तो सनम,
1: अब तो सनम।

और शब्द ही लोगों को तो अंत में मैं यह कहना चाहूंगी कि कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता, हमारा व्यवहार और शब्द ही लोगों को मित्र और शत्रु बनाता है। इन्हीं विचारों के साथ सभी सुनने वालों को अनुराधा का नमस्कार।

जी मेरे प्यारे सुनने वालों, ज्योति का प्रकाश प्रोग्राम सुनने के लिए आपको दिल से धन्यवाद किया जाता है और यहाँ से स्वीकार कीजिए सेविका शांता की प्यार भरी नमस्कार।

दोस्तों, जिंदगी छोटी नहीं होती है। लोग जीना ही देरी से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं, तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। बस यही जिंदगी है दोस्तों। लोग अक्सर कहते हैं कि जिंदगी यानी जिंदा रहेंगे तो मिलेंगे, मगर एक अच्छे सच्चे दोस्त ने ये भी कहा है कि मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। हम सभी मिलकर के कार्यक्रम को आपके साथ और जुड़े रहे। आज के कार्यक्रम में सहयोग दिए अनुराधा चंद्र जी जो भारत दिल्ली से, राजेंद्र सिंह जी जो हमारे मास्टर जी जो राजस्थान से।

हम सबको सहयोग दिए। हमारे साथ स्टूडियो में पनेल के पीछे शांता खेमई जी और मैं हूँ आपका सेवक संजय। यही आशा रखकर कि कुछ न कुछ संदेश आप तक जरूर पहुँचे होंगे। सभी के शुभ दिवस। नमस्कार।

0: ठीक है।
1: हाँ हाँ, सबसे बड़ा रुपया, रुपया तो होना ही चाहिए जीवन में, उसे अपना आगे बढ़ाने के लिए, काम में लगाने के लिए, प्रयोग करने के लिए रुपया अवश्य जरूरी है। ये सुंदर सा गीत स्पेशल स्पेशल मांग किया गया है।

तारा बालम इतना दूर कि उनसे नैना लड़ गए। उसके बाद आपके लिए है ये सुंदर सा गीत एक बार फिर यहाँ से फिल्म जादू से आपके लिए पेश करेंगे। फिल्म जादू ने कंटिन 1-5 तक के ये पिक्चराइज किया हुआ फिल्म लता जी के आवाज में।

दोनों प्यार की हो गई जीत फिल्म जादू से। यहाँ से हमने श्रवण की है और कह रहा है मंजिल पे ना पहुंचे उसे रास्ता नहीं कहते, हम मंजिल पे ना पहुंचे तो उसे रास्ता नहीं कहते, और दो चार कदम चलने को चलना नहीं कहते मेरे दोस्त। जिंदगी भर साथ निभाना उसे ही सफर हम सफर कहते हैं। कल कोई मुझे याद करे क्यों क्यों कोई मुझे याद करे, कल कोई मुझे याद करे क्यों कोई मुझे याद करे, मुसाफिर जमाना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे, मैं पल दो पल का शाह।

यहाँ से हम चले दुनिया के मजा ले ले, दुनिया के मजा ले ले मेरे दोस्त, दुनिया के मजा ले ले। फिल्म का नाम बहार, इस बार है शमशाद बेगम जी के आवाज़ में।

सुरैया जी के आवाज़ में यहाँ से हमने सुने हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से। दो पल की खुशी देकर जिंदगी रुलाते क्यों हो, दो पल की जिंदगी के दो पल की जिंदगी देकर दो पल की खुशी देकर जिंदगी रुलाती क्यों है। और जो किस्मत में नहीं होते तो किस्मत उसे मिलाते क्यों है।

शमशाद बेगम जी की आवाज में स्पेशल स्पेशल स्पेशल प्रोग्राम बन गया है आपके लिए। यहाँ से जिंदगी का सच बस इतना है मेरे दोस्त, जो अपना हो वही सबसे सबसे ज्यादा रुलाता है। और जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना जिंदगी में ये बात कि कोई किसी का खास नहीं होता। लोग तभी याद करते हैं जब उनका टाइम पास नहीं होता। समझ में आए ना मेरा दोस्त? और कहते हैं कि जिंदगी और किस्मत दोनों खफा है, कि जिंदगी और किस्मत दोनों खफा है। जब बुरा वक्त चलता है तभी हम तन्हा है। बाकी हिम्मत ना हारो, तन्हा में आप तन्हा जब होते हैं तो आपको सोचने का वक्त भी मिलता है और वहीं से आप बढ़ते हैं, ग्रोथ होते हैं।

शमशाद बेगम, मोहम्मद रफी, फिल्म का नाम सावन 1959 के पिक्चराइज हुआ फिल्म है। हाँ मेरे दोस्त, ऑल दिस गोल्ड। इसमें आप सुनते होंगे कि यह साज और संगीत, गीत का धुन जो है, जो इंस्ट्रूमेंट इसमें बजाया गया है, कितना अलहदा है, कितना सुनहरा है, कितना अच्छा लगता है वे सुनने के लिए। तो यहाँ से इस बारे आपके लिए फिल्म आर पार से निकलती फिल्म फाइव तक के शमशाद बेगम जी की आवाज़ में

uit de song film Aarpaar 1954. Picturizekia film Shamshad Begum Jika was me sune. Starkaas is me his Shama Gurudat Shashikala or Kum Kum Ji. और कहते हैं, क्या कहते हैं यहाँ से हम बता दें आपको कि जिंदगी जिंदगी ना किसी से नाराज होकर जियो, जिंदगी में ना किसी से नाराज होकर जियो, ना किसी को नाराज करके जियो। जिंदगी बहुत छोटी है, जिंदगी वाकई में पलक झपकते में यूं ही चला जाता है, पता ही नहीं चलता कि जिंदगी बहुत छोटी है। सबको खुश रखो और खुद भी खुश रहा कर, खुश होकर जियो।

फाउंटेन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। ले तो निकलिए तार कीजिए 9 7 3 5 7 6 7 8 फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

समय बताने वाले तो बहुत हैं, लेकिन समय पर काम आने वाले बहुत कम हैं। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार। मैं आज फिर आपकी सेवा में हाजिर हूँ प्रोग्राम लेकर स्वप्न विज्ञान यानी सपनों की दुनिया।

सुनने वालों, मैं आप सबको स्वप्न विज्ञान में से कुछ वृत्तांत सुना रही हूँ, यानी सपने, कि जो लोगों ने सपने देखे और उनको सपने आए उनका क्या महत्व था। पिता द्वारा पुत्रों का कत्ल। मैनचेस्टर शहर में एक महिला ने स्वप्न में देखा कि उसका पति उसके दो बच्चों को चेस्टर सिटी के भयानक खंडहर में जान से मार रहा है। वह चिल्लाकर नींद से जाग गई और पुलिस को साथ लेकर खंडहर ढूंढ निकाला। तलाश के बाद वहां से बच्चों की हड्डियां प्राप्त होने पर पति को जेल हो गई।

अब मैं एक और वृत्तांत आपके लिए रखती हूँ, मृतक पुत्र के जलने की चेतावनी। एक दिन रात्रि में सिंह मांड फ्राइड के एक मित्र के बेटे का देहांत हो गया। सुबह अंतिम संस्कार हेतु रखे शव के चारों ओर मोमबत्तियां जल रही थी और पहरेदार को वहां छोड़कर पिता दूसरे कमरे में सोने के लिए चले गए, जिसने एक स्वप्न में देखा कि उसका मरा हुआ पुत्र उसके पास खड़ा हुआ कह रहा है, क्या मुझे ऐसे ही जलने दोगे? पिता ने जागकर बाहर आकर देखा तो एक मोमबत्ती गिरने से शव का कान जलने लगा था। थोड़ा विलंब होता तो शव के साथ वह मकान भी जल जाता।

सुनने वालों, अब मैं एक और आपको सपने के बारे में बताती हूँ जो टीपू सुल्तान को आया। टीपू सुल्तान मुग़ल बादशाह हुए हैं, एक सुल्तान हुए हैं बहुत बड़े, टीपू सुल्तान तथा कांच की खान। टीपू सुल्तान ने रात में देखा कि एक बूढ़ा कांच का एक पत्थर लेकर उसके पास आया और बोला, सेलन के पास जो पहाड़ है वहाँ कांच की खान है, यह कांच मैं वहीं से लाया हूँ। इस तरह सुनते ही उसकी नींद खुल गई और वहाँ कांच की खान मिल गई।

सुनने वालों, एक डॉक्टर फिशर हुए हैं, वो कहते हैं कि एक स्थान पर प्रेत आत्मा का होना, जब एक स्त्री एक विशेष स्थान पर सोती थी तो उसे एहसास होता था कि उस पर कोई झपटा रहा है। तलाश करने पर पता चला कि यह स्त्री जिस स्थान पर सोती थी उस स्थान पर एक मनुष्य ने एक नवयुवना का गला घोंटकर खून किया था। स्थान विशेष में मानवीय विद्युत कंपन लंबे समय तक रहते हैं। शमशान की भयानकता एवं देव मंदिर की पवित्रता उसकी साक्षी होती है।

सुनने वालों, अब मैं आपको सुनाती हूँ भगवान महावीर पर 14 स्वप्नों का प्रभाव। भगवान महावीर बहुत बड़े भगवान हुए हैं, उनको 14 सपने आए। भगवान महावीर के जन्म के पहले रानी त्रिशाला ने 14 स्वप्न देखे थे। पहले में ऐरावत हाथी, दूसरे में सफ़ेद बैल, तीसरे में शेर, चौथे में लक्ष्मी जी, पाँचवें में फूलों की माला, छठे में पूरा चांद, सातवें में सूर्य दर्शन, आठवें में पानी से भरा कलश, नौवें में नील सरोवर, दसवें में बहता सागर, ग्यारहवें में सिंहासन, बारहवें में देवव्रत, तेरहवें में रतन राशि, चौदहवें में धुआं मुक्त अग्नि। भगवान महावीर का जीवन इन 14 स्वप्नों के अनुकूल, स्वप्न के हर प्रतीक के अनुसार इस प्रकार था। हाथी धैर्य मर्यादा, एक बड़प्पन का प्रतीक, महान धर्मात्मा, अनंत शक्तियों का स्वामी, मोक्ष प्राप्त करने वाला, अनासक्त ज्ञानी, सुख शांति का उपदेशक, महान गुणवान, शांत गंभीर, त्रिकलाज्ञ एवं देवता। महावीर जी, भगवान महावीर बहुत अच्छे गुणवानी, संतोषी और एक अच्छे भगवान हुए हैं।

ये है फाहून हिंदुस्तानी रेडियो, आप सब सुन रहे हैं फाहून हिंदुस्तानी रेडियो। सुनने वालों, पिछले बार मैंने आप सबको फड़कने के बारे में बताया था कि अंग फड़कते हैं तो उन सब का क्या मतलब है, जैसे सिर का फड़कना, नेत्रों का फड़कना आदि आदि। तो आज हम चलिए कंधों का फड़कना कि जब कंधे फड़कते हैं तो उसमें से क्या क्या लाभ होता है या हानि होती है। कंधों का फड़कना, जब दायां कंधा फड़कता है तो बहुत शुभ, शीघ्र ही धन, वैभव और सम्मान और बिछड़े भाई से मिलन होता है। और जब बायां कंधा फड़कता है तो रक्त या वात संबंधी रोग होते हैं। पीठ का फड़कना, जब दाईं तरफ पीठ फड़कती है तो राज सम्मान मिलता है, सर्व कार्य सिद्ध होते हैं। और जब बाईं तरफ पीठ फड़कती है तो अशुभ है, मुकदमे में लड़ाई में हार होती है। जब ऊपरी भाग का कंधा फड़कता है तो धन की प्राप्ति होती है। अब निचला कंधा फड़कता है तो बहुत से अनुयायी काम होते हैं।

घुटनों का फड़कना। सुनने वालों, हमारे घुटने जो हैं वो भी कभी भी फड़कने लग जाते हैं। जब दायां घुटना फड़कता है तो स्वर्ण प्राप्ति होती है, जब दाएं का निचला भाग फड़कता है तो शत्रु का सामना करना पड़ता है, और बाएं का निचला भाग फड़कता है तो कार्य पूर्ण होते हैं। सुनने वालों,

गर्दन का फड़कना, सुनने वालों हमारी जो गर्दन है जिसे आप लोग नेक कहते हैं वो भी कभी कभी फड़कती है, तो गर्दन के फड़कने से विदेश यात्रा उपरांत धन कमाकर कुशलतापूर्वक लौट आता है। कान का फड़कना, सुनने वालों हम सब के कान भी कभी कभी फड़कते हैं, तो उसका भी कोई ना कोई मतलब होता है। जब हम लोगों का दायां कान फड़कता है तो हम लोगों को शुभ समाचार मिलते हैं और इच्छाएं पूर्ण होती हैं। जब हम लोगों का बायां कान फड़कता है तो प्रियजन से मिलन मेल होता है। जब हमारे कान का पिछला भाग फड़कता है तो मित्र शत्रुवाद व्यवहार करते हैं।

बोहों का फड़कना, सुनने वाले बोहें कहते हैं वैन ब्रो को, वो भी हमारी कभी भी फड़कती हैं लेकिन हम लोग जान नहीं पाते कि वो कब फड़कती हैं। जब हम लोगों की दाई वैन ब्रो फड़कती है तो हमें इज्जत शोहरत मिलती है, जब बाई फड़कती है तो मित्र मिलन, अपने मित्रों से मिलाप होता है। गाल का फड़कना, जब गाल भी फड़कते हैं सुनने वालों, जब हमारा दाया गाल फड़कता है तो विलंब से स्वास्थ्य लाभ कि स्वास्थ्य में लाभ हमें देरी से मिलता है, और जब बाया गाल फड़कता है तो काम में विघ्न बाधा तथा चिंताजनक समाचार, कन्या का जन्म या कन्या से शुभ समाचार मिलते हैं। अब जो दोनों समान फड़कते हैं तो अतुल धन की प्राप्ति होती है, तो हम लोगों को ढेर सारा धन प्राप्त होता है सुनने वालों।

ये है फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो और आप सब सुन रहे हैं स्वप्न विज्ञान यानी सपनों की दुनिया। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि नाक का फड़कना, सुनने वालों जब हम लोगों का नाक फड़कता है तो हमें क्या क्या लाभ होता है, क्या हानि होती है, लेकिन हम लोग जान नहीं पाते कि हम लोगों का नाक कब फड़कता है। व्यवसाय की वृद्धि होती है, किसी से झगड़ा होता है, आने वाले संकट रोग की सूचना मिलती है, अनेक प्रकार से सुख मिलते हैं।

सुनने वालों, अपने शरीर के सभी अंग फड़कते हैं लेकिन हमें पता नहीं चलता कि वो कब फड़कते हैं। अब मैं आपको सुनाती हूँ मुंह का फड़कना। हम लोग के मुंह भी फड़कते हैं सुनने वालों। समाचार मिलता है, सुखों की प्राप्ति होती है, सम्मान की प्राप्ति होती है। होंठ का फड़कना, जब हम लोगों के होंठ फड़कते हैं तब हमें सुख समाचार मिलता है, शत्रुओं से समझौता होता है, हितेशी का आगमन होता है कि जो हमारा कोई अपना जानने पहचानने वाला है वो हमारे घर पर आते हैं।

सुनने वालों, अब मैं आपको सुनाती हूँ कि भोजन करते समय कौन कौन से शगुन होते हैं और उसमें से कौन से अच्छे होते हैं, कौन से बुरे होते हैं। यदि भोजन करते समय सामने ही बिल्ली आ जाए तो शुभ नहीं होता, कुत्ते का रोना सुनाई दे तो अधिक अशुभ होता है। जब हम भोजन कर रहे हैं और कुत्ता रोता है तो वो शुभ नहीं होता सुनने वालों, अशुभ होता है। ग्रह क्लेश उपस्थित हो जाए, अन्न संकट है, रुदान का शब्द सुनाई दे, जब कोई रोता है तो स्वास्थ्य की हानि होती है सुनने वालों। उबकाई आने लगे, जब हमें खाना खाते खाते हम उबासी लेते हैं तो हमें अधिक नहीं खाना चाहिए, तो उसका मतलब है पेट भर गया हमारा। कुत्ता भौंकने लगे, अनाज की चोरी होती है, जब कुत्ता भौंकने लग जाता है तो अनाज चोरी होने का डर रहता है। काली चिड़िया शरीर पर बैठ जाए, सामान्य जब काली चिड़िया कभी शरीर पर बैठ जाए तो वो ना हानि है ना लाभ है सुनने वालों। पकती रोटी अधिक जल जाए, अन्न नष्ट हो, जब हमारी रोटी बनाते बनाते ज़्यादा जल जाती है तो हमारे अन्न का नाश होता है सुनने वालों।

सुनने वालों, जब हम लोग घर पर भोजन करते हैं तो क्या हमें जूते पहनकर भोजन करना चाहिए कि जूता खोलकर भोजन करना चाहिए कि जूते उतार के भोजन करना चाहिए? अब मैं थोड़ा सा वो आपको बताती हूँ सुनने वालों। जब व्यक्ति भोजन करता है तो अपने शरीर में एक विशेष ऊष्मा को संचित करता है। भोजन करते समय जो कैलोरी या ऊष्मा मुंह के द्वारा शरीर में जाती है तो उसमें एक विशेष विद्युत का निर्माण होता है। यदि इस विद्युत का पृथ्वी से संबंध हो जाता है तो उसे पूरा परिपथ मिल जाता है और वह जो भी भोजन करता है उससे पूरी शक्ति प्राप्त होती है। जब हम नंगे पांव बैठते हैं तो हमारे पैर पृथ्वी से स्पर्श करते हैं, फलस्वरूप हमें आर्थिक मिलती रहती है। परंतु जूते पहने होने पर चमड़ा विद्युत अवरोधक बन जाता है और भोजन करते समय जो ऊर्जा या विद्युत पैदा होती है उसे अर्थ ना मिलने के कारण उसका प्रवाह विपरीत हो जाता है और जो भोजन किया जाता है वह विषैला बनकर शरीर को हानि पहुंचाता है। इस प्रकार जूते पहनकर भोजन करने वालों को गैस, कब्ज आदि रोगों की शिकायत बनी रहती है।

सुनने वालों, ये स्वप्न विज्ञान है। मैं आप सबको सुना रही हूँ सपनों की दुनिया। अब हम आगे बढ़ते हैं कि जब हम रात को सोने जाते हैं तो जो चीज़ें हमें दिखाई देती हैं या सुनाई देती हैं उन सब का क्या मतलब है, कि वो शुभ हैं कि अशुभ हैं। सुनने वालों, जब हम रात्रि में सोने जाते हैं तो जब हम लोगों को शंख ध्वनि सुनाई दे, बैल की हुंकार सुनाई दे, वीणा का शब्द सुनाई दे, तो उन सब का शुभ मतलब है कि वो सब अच्छी चीज़ें हैं। जब हम अपने बेड पर बैठते हैं या चारपाई पर बैठते हैं, अगर चूहा दिखाई दे तो वो भी शुभ है। सुनने वालों, घर में प्रसन्नता का वातावरण हो तो वो भी लाभकारी है। जब सब घर के सदस्य हंसते हैं और हमें लाभ मिलता है, हम लोगों को अच्छी नींद आती है। सुनने वालों, अगर पत्नी की आँख में आंसू हो तो वो अपशकुन है। गीदड़ बोले या कुत्ता भौंके तो चोरी का भय रहता है। रात को जब हम सोते हैं सुनने वालों, अगर कुत्ता भौंके तो उससे हमें चोरी का भय रहता है। बिल्ली या कुत्ता लेटा हो तो अच्छा नहीं होता। घर की पालतू गाय सहसा रो पड़े तो वो अपशकुन होता है। अगर घर में हमारे गायें हैं तो अगर वो रो पड़े तो वो अपशकुन कहलाता है। पलंग पर छिपकली पाँव की तरफ भाग जाए तो वो शुभ है। कोई पान या सुपारी लाकर दे तो वो भी शुभ है। सुनने वालों, कोई सामने छींक दे, अच्छा शकुन नहीं है।

यदि आप गुस्से के एक क्षण में धैर्य रख लेते हैं तो आप दुख के 100 दिनों से बच सकते हैं। मेरी ओर से सभी सुनने वालों को नमस्कार। मैं हूं आपकी सेविका बबली आसरा।

फाउंटेन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेतोने के लिए तार कीजिए 9735 तक 20 तक 7 फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

फन हंट हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यूं ही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9735 तक 3 तक 7 फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

गंगा महाकाया सूर्यकोटी संप्रभा निर्विधिनम कुरु मे देवा सर्व कार्येषु सर्वदा रूबरू मिलने का मौका नहीं पा रहा। अतः शब्दों से अपनों को नमन कर लेता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में श्रेष्ठ होता है, इसीलिए आपकी श्रेष्ठता को हृदय से नमस्कार करता हूँ। फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के सभी सुनने वालों को हार्दिक से अभिनंदन करते हुए

0: कि नहीं जानते हैं। तो एक बार इसको ज़रूर आप पूरा सुनेंगे तो आपको बड़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ऐसा भी हो सकता है कि सूपनखा कैसे, कौन सा पुण्य किया था उसने कि दूसरी लाइफ में श्री कृष्ण की पत्नी हो गई। तो इसी को सबको सुनने के लिए सब श्रोताओं को मेरा आज तहे दिल से शुक्रिया और नमस्कार रहेगा। संजय जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं?
1: कहने के तो बहुत कुछ है, पर क्या कहे राजेंद्र जी, क्यों ना पहले हम अपने सभी सुनने वालों के लिए वही गीत चला देते हैं जो हरिओम शरण जी हम सब के लिए गा करके छोड़ गए हैं, जो मन से उदास बैठे हुए हैं उन सभी को।
0: जो मन से उदास बैठे हैं उनकी उदासी तो दूर होनी ही चाहिए।
1: जरूर जरूर।
0: और हरिओम शरण जी ने ऐसा एक भजन बनाया है कि सबकी उदासी तकरीबन दूर हो ही जाती है, क्यों ना वो गाना हम पहले सुने और उसके बाद आगे बढ़ें।

0: तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे। दोस्तों आज हम सबका जो हमारे विषय है कि
1: हाँ, आज का जो संदेश है, हम लोग पहले ही बता चुके हैं कि संदेश सूपनखा का संदेश है।
0: तो ये बताओ, ये कौन सूपनखा है जो जिसका त्रेता में नाक काट दिया गया था?
1: हाँ, रावण की बहन सूपनखा है। त्रेता में लक्ष्मण जी ने उनका नाक और कान दोनों काट दिए थे। ऐसा इसलिए कि उन्होंने थोड़ा सा अनकम्फर्टेबिलिटी महसूस कराई भगवान राम को। चाहती थी कि मेरी शादी हो जाए भगवान राम से। उन्होंने बोला मैं तो शादीशुदा हूँ, तो उन्होंने बोला लक्ष्मण के पास जाओ। तो फिर लक्ष्मण ने उनको मना किया कि मैं तो यति हूँ, मेरी तो हो नहीं सकती है। तो फिर भगवान राम के पास भेजा, तो फिर उन्होंने उनके पास भेजा, तो लक्ष्मण को गुस्सा आया और नाक कान ही काट दिया कि जा तब कहीं शादी करने लायक न रहे।
2: इसका और गहराई है, पर अब राजेंद्र इतना कह दिए तो इस पे धरो।
0: नहीं, क्योंकि ये बात है, ये एक हम लोग सूरीनाम में होते थे ना, तो रामलीला होते थे, रामलीला राजेंद्र जी
1: जी,
0: तो रामलीला होते थे, तो जिस दिन सूपनखा का नाक कटता था ना, काटी जा, वो दिन तो खास दिन होते थे,
1: काफी
0: हाँ बड़ा भीड़ भाड़ होता था। आश्चर्य की बात है कि बड़ा शायद उस समय पे कथा हम समझे नहीं होंगे,
2: पर आपने पूछा तो मैं बता दूं। क्योंकि सीता जी है भक्ति और लक्ष्मण जी को कहते वैराग्य, और वैराग्य और भक्ति के बिना भगवान को नहीं पा सकते।
0: वैराग्य और भक्ति के बिना भगवान को नहीं हो सकता।
2: इसलिए जैसे सूपनखा तुरंत भगवान के ऊपर पास गए और भक्ति और वैराग्य को छोड़ दी, इसलिए उसका उसके साथ ये हाल हुआ।
0: तो दोस्तों ये समझ लेना कि कहीं आप ये दोनों को आप पार करके भगवान के पास पहुंचने का इच्छा कर रहे हो, तो जानने रहना कि क्या होने वाला है। राजेंद्र जी आगे संदेश की ओर बढ़िए, क्योंकि बेचैनी से लोग इंतजार कर रहा है। पर ऐसा क्यों ना, पहले हम क्यों ना एक उसी अंतर्गत में एक गीत को, जो आपने इतना मेहनत से खोज करके रखे, पहले गीत को सुन लेते तो आगे कार्यक्रम बढ़ाते हैं।
1: जरूर, पहले गीत सुन लेते हैं, फिर इसके बाद आगे कार्यक्रम बढ़ाएंगे।

0: मन मंदिर में। मन और मंदिर की जब बात चलती है तो सारे काम सरल से हो जाते हैं। बात चल रही थी सुनने वालों सूपनखा की। सूपनखा रावण की बहन और श्री कृष्ण की पत्नी। जी हाँ, ये कथा बहुत ही रोचक है। त्रेता युग से द्वापर युग तक की ये कथा बेहद दिलचस्प है। जानिए सूपनखा ने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से उसे स्वयं भगवान की वधू बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। दंडकारण्य की स्वामिनी रावण की अति प्रिय भागिनी सूपनखा के बारे में शायद ही आप ये बात जानते हों कि उन्हें श्री कृष्ण की पत्नी का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आम जन में सूपनखा की छवि एक राक्षसी की है, एक ऐसी सत्री जिसने नककटी होने के बाद श्री राम और लक्ष्मण से बदले की ठानी और युद्ध के लिए रावण को प्रेरित किया, अंत में अपने ही कुल के नाश का कारण बनी। लेकिन इस सब के बावजूद वो श्री कृष्ण की पत्नी बनी, उसका उद्धार हुआ। बड़े बड़े ऋषि मुनि कठोर तप के बाद भी ये सुख प्राप्त न कर पाते, लेकिन सूपनखा का ये आशीर्वाद मिला। तो संजय जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या? कैसे मिला?
1: अब ये पूछना है, ये वृतांत तो मैं पहला बार सुन रहा हूँ राजेंद्र जी, क्योंकि ये तो ऐसा तो मैंने कभी सुना ही नहीं था। अब जैसे आप कह रहे हैं कि संत मुनि ऋषियों जो कितना कठोर तपस्या करते हैं और तभी जाकर के प्रभु परमात्मा से कि उनको प्राप्ति करता है, और ये तो बनमासी किए थे, नाक कट गया था, कान कट गया था, फिर भी प्रभु का प्राप्ति कर लिए, तो इसकी वजह जानना चाहता हूँ राजेंद्र जी। मन बेचैन है और सुनने का इच्छा और भी ज़्यादा बढ़ रहा है। दोस्तों, फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के सभी सुनने वालों को एक बार से फिर अभिनंदन करते हुए, और ये जरूर कहना चाहूँगा कि संदेश जो है तो बड़ा ज़बरदस्त है, और हम सब अभी उसके बारे में और भी जानकारी को प्राप्त करने वाले हैं। तो शांता जी, इसमें क्या ये इस बात को आप थोड़ा से भी जानते थे कि ये वृतांत जो त्रेता में हुआ और द्वापर में कैसा मिलन, इसके बारे में?
2: नहीं, ये त्रेता में जो हुआ, ये जो राम संग राम की कथा में रामायण में, तो उनका कथा तो मैं बार बार सुनी, पर जो कि भगवान श्री कृष्ण के वधू बनी, ये तो मैं पहली बार सुन रही हूँ।
0: तो अब सुनिए आगे कैसे बनी।
2: वही तो हम बेचैन है, हमारे साथ श्रोताओं भी बेचैन है सुनने के लिए।
0: भगवान श्री राम का सानिध्य मिला, कैसे मिला? सूपनखा को न सिर्फ श्री राम से वार्ता का सौभाग्य मिला, बल्कि श्री राम ने उसकी लक्ष्मण जी से भी बात करवा कर भक्ति स्वरूपा आदया शक्ति जगत जननी सीता माता के दर्शन भी करवा दी। दरअसल इस सब का मर्म सूपनखा के पूर्व जन्म में छिपा है। पूर्व जन्म में सूपनखा इंद्रलोक की नयनतारा नामक अप्सरा थी। इंद्रलोक की जी,
2: तो इसको शायद कुछ शाप मिला होगा तब ये धरती पर आ गए।
0: हाँ, वही हम आगे बताने जा रहे हैं।
2: अच्छा।
0: उर्वशी, रंभा, मेनका, पुंजिका स्थला आदि प्रमुख अप्सराओं में इंद्र के दरबार में अप्सराओं का नृत्य चल रहा था। उस समय या नयनतारा नृत्य करते समय भू संचालन अर्थात आँखों से इशारा भी कर रही थी। ये देखते हुए इंद्र उस पर मोहित हो गई, तब से नयनतारा इंद्र की प्रेयसी बन गई। वज्रा ऋषि के क्रोध का बनी भोजन। उस काल में पृथ्वी पर वज्रा नामक एक ऋषि घोर तपस्या कर रहे थे। इंद्र ने उस समय नयनतारा को ही ऋषि की तपस्या भंग करने हेतु पृथ्वी पर भेजा, लेकिन वज्रा ऋषि की तपस्या भंग होने पर उन्होंने अप्सरा को राक्षसी होने का श्राप दे दिया।
2: अच्छा।
0: ऋषि वज्रा से क्षमा याचना करने पर उन्होंने उसे कहा कि ये राक्षस जन्म में ही तुझे प्रभु के दर्शन होंगे। नयनतारा ने अपनी देह त्याग कर दी और सूपनखा राक्षसी के रूप में रावण के घर जन्म दिया। उसने मन में ठान लिया कि वो प्रभु को प्राप्त करके ही रहेगी। यही उसने एक बड़ी गलती कर दी, उसने भगवान राम को वन में देखते ही उन्हें पाने की इच्छा कर डाली। अहंकार मई भी सूपनखा थी। शास्त्रों में कहा गया है कि ब्रह्म को प्राप्त करने की एक प्रक्रिया होती है जो भक्ति और वैराग्य के सहारे ही संपूर्ण होती है, जबकि सूपनखा ने ऐसा नहीं किया। उसने भक्ति रूपा सीता माता और वैरागी रूपी श्री लक्ष्मण जी के पास जाकर सीधे ब्रह्म को पाने की कोशिश की। वह सीधे श्री राम को प्राप्त कर भक्ति को ही अलग कर देना चाहती थी। इसके अलावा वैराग्य का आश्रय लेती तो श्री प्रभु को प्राप्त कर सकती, किंतु उसने वैराग्य को भी नकार कर अहंकार में सीधे प्रभु के पास जाना उचित समझा।
1: ये अभी जैसे शांता जी ने कह रहे थे हम सब के साथ ना राजेंद्र जी,
0: जी
1: वैराग्य और भक्ति,
0: हाँ
1: इसी अंतर्गत में तो शांता जी तो काफी जानकारी है आपके।
0: हाँ तो शांता जी तो सब चीज का जानकारी रखती है,
1: अपना पिटारा में लेकर
0: घूमती है तो वो तो सब रखती है।
2: इसलिए कहते हैं सत्संग करो भाइयो,
1: सत्संग में और ऐसे हम लोग के सत्संग वो ज्ञान सरोवर होता है जिसमें हम डुबकियां लगाते हैं तो कुछ ना कुछ उसमें से निकलते आते हैं। जैसे कि आपने कहा राजेंद्र जी कि हर कोई सुख की चाबी ढूंढ रहा है, लेकिन सवाल ये है कि सुख को ताला किसने लगाया है। तो दोस्तों हम और आगे ये वृत्तांत को सुनने वाले, पर सुनने से पहले राजेंद्र जी क्यों ना एक सुंदर सा गीत हम सब के लिए और चला दे।
0: जरूर जरूर।

0: देख रहा हूं कि गीत में तो राजेंद्र जी ने पूरा कथा रख दिया है, और कथा हम लोग यहाँ ये धार्मिक कार्यक्रम नहीं बना रहे हैं, ताकि हम सब के लिए एक सुंदर सा गीत खोज के रखते हैं। और कहावत ये है भी कि परमात्मा कभी भाग्य नहीं लिखता है, जीवन के हर कदम पर और हमारी सोच, हमारी व्यवहार एवं हमारे कर्म ही हमारा और भाग्य लिखता है। तो हम सब आज के कार्यक्रम में जो राजेंद्र जी हम सब के लिए सुपनेखा का और वृतांत हम सब के लिए खोज करके लेकर आए हैं, और हमारे लिए एक गीत का तैयारी कर रहे हैं। हमारा जो कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश है, इसका लक्ष्य बस यही है कि हमारे जीवन का ज्योति जो है उसमें थोड़ा और प्रकाश आ सके, यही हमारा लक्ष्य है। राजेंद्र जी, कौन सा गीत आप हमारे लिए तैयार करके रखे हुए हैं?
1: गीत बहुत ही रोचक है, बोले राम से सूपनखा मुस्कुराई की कजरी है, अंजू उपाध्याय जी ने गाई है और अमृत अवधि परंपरा की है, बहुत ही अच्छी है, सुनते हैं इसको।

0: मुस्कुराई से बनुआ में आए के ना, बहुत ही अच्छी कजरी जो संजय जी की पसंद आई है। आगे बढ़ते हैं सूर्पनखा के बारे में। सूर्पनखा को उचित प्रक्रिया का ज्ञान कराने के लिए उसे वैराग्य रूपी लक्ष्मण के पास भेजा, लेकिन बैराणी लक्ष्मण ने उसे पुनः प्रभु के पास भेज दिया। तब प्रभु ने कहा कि मैं तो भक्ति के बस में हूँ। तब सूर्पनखा भक्ति रूपी सीता माता के पास गई, परंतु वहाँ भी एक भगवतापराध पर बैठी कर बैठी। सोचा, प्रभु इस भक्ति के बस में हैं, अतः मैं इस भक्ति को ही खा जाऊँ। अतः लक्ष्मण जी ने क्रोध में आकर उसके नाक कान काटकर अंग भंग कर दिया। इसके बाद सूर्पनखा के ज्ञान चक्षु खुल गए और प्रभु के कार्य को पूरा कराने विनाशय व दुष्कृतम के लिए उनकी सहिका बनकर प्रभु के हाथ से खर व दूषण, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद आदि निशाचरों को मरवा दिया और प्रभु प्राप्ति की उचित प्रक्रिया अपनाने के लिए पुष्कर जी में चली गई और जल में खड़ी होकर भगवान शिव का ध्यान करने लगी।
1: ये पुष्कर कहाँ है राजेंद्र जी? भारत में
0: पुष्कर
1: एक स्थान को भी कहते हैं पुष्कर तो?
0: हाँ, जयपुर के आगे एक अजमेर, अजमेर से थोड़ा सा आगे 35 किलोमीटर पुष्कर है,
1: पुष्कर वहाँ कहते हैं।
0: हाँ, पुष्कर में भगवान ब्रह्मा का मंदिर भी है, ब्रह्मा जी का मंदिर एक ही है,
1: एक ही दुनिया पे एक ही मंदिर है ना ब्रह्मा जी का पुष्कर में।
0: जी, तो करीब 10,000 वर्ष बाद भगवान शिव ने सूर्पनखा को दर्शन दिए और वरदान दिया कि वही 28वें द्वापर युग में जब श्री राम कृष्ण अवतार लेंगे तब कुबजा के रूप में तुम्हें कृष्ण के पति सुख की प्राप्ति होगी। कुबजा के रूप में तुम्हें कृष्ण से पति सुख की प्राप्ति होगी। तब श्री कृष्ण तुम्हारी कुबड़ ठीक करके वही नयनतारा अप्सरा का मनमोहक रूप प्रदान करेंगे। और ऐसा ही हुआ। सूर्पनखा को अंत में अप्सरा का मोहक रूप भी मिला और वो भगवान की सहचर्या भी बनी।
1: सहचर्या मतलब?
0: सहचर्या मतलब पत्नी।
1: पत्नी
0: सहचर्या मतलब जो जैसे भगवान है तो उनके साथ साथ आगे का जो वृतांत है उसके साथ देना।
1: हाँ,
0: सहचर्या
1: उसको कहते हैं। सहचर्या
0: उसको सहचर्या कहते हैं।
1: ओ, ये बात हुआ
0: जी।
2: और 10,000 बरस तक ये
0: 10,000 बरस तक उनको तपस्या करना पड़ा तब ये मिला। और हम लोग साल भर एक दो साल एक कुछ हो जाता है तो लोग कहते हैं कि भगवान हमसे रूठे हुए हैं।
1: ऐसा होता है ना?
0: तो ऐसा कहते हैं, इसलिए भगवान कभी किसी से रूठते नहीं है। आप देख लो कि कई लोगों ने तो पूरा लाइफ और कई युग भी तपस्या करी तब जाके भगवान के दर्शन होते हैं, और कलयुग में तो बहुत जल्दी दर्शन हो जाते हैं।
2: ऐसा क्यों?
0: क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग नाम ही भगवान का लेने से जल्दी सुमिर सुमिर करके उद्धार हो जाता है।
2: इतनी आसानी से
0: कलयुग में ये सुविधा है कि क्योंकि लाइफ उम्र कम है, 120 वर्ष तक की उम्र है, वो उसी में सब कुछ करना है, तो इसलिए उसमें शॉर्टकट दिया है।
1: वो तो जल्दी हो जाता है,
0: जल्दी हो जाता है।
1: तो ये तो बढ़िया हुआ, तो बढ़िया समय पे हम लोग का जन्म भी हुआ।
0: हाँ, एकदम अच्छे समय पे हुआ। और ये समय सदुपयोग करना चाहिए कि बोलना कि अच्छा नहीं है कलयुग। कलयुग बहुत अच्छा भी है।
1: जैसे कि अभी आप सुन रहे हैं कि सूर्पनखा, ये वृतांत मैं आज पहला बार सुना हूँ जो कि द्वापर और त्रेता का वृतांत, और इसे सुन करके हमें अच्छा लग रहा है कि भाई राजेंद्र जी इतना सुंदर संदेश हम सब के लिए रखे। पर राजेंद्र जी, आगे का वृतांत क्या है?
0: आगे का वृतांत तो सूर्पनखा का एकदम समझ ही गए सब लोग, और आगे की वृतांत सुनाने की जरूरत भी नहीं है कि इतना ही वृतांत बहुत है।
1: इतना ही बहुत है।
0: हाँ, आगे का एक बहुत ही सुंदर गाना है, तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, क्या बनेगा फिर देखते हैं क्या बनना।
1: चलो सुन लेते हैं कि हमें क्या बनना है।
0: जी जरूर।

हर इंसान को इंसान बनाया हमने, उसे हिंदू या मुसलमान बनाया। कुदरत ने तो बख्शी थी हमें एक ही धरती, हमने कहीं भारत कहीं ईरान बनाया। जो तोड़ दे हर बंद

जिसमें वो मंदिर नहीं तेरा, गीता न हो जिसमें वो हरम तेरा नहीं है। तू अमन का और सुलह का अरमान बन।

0: किसानों की लाशों के कफन बेचने वाले इंसानों की लाशों के कफन बेचने वाले ये महलों में बैठे हुए कातिल ये लुटेरे कांटों के बजरू है चमन बेचने वाले कांटों के बजरू है चमन बेचने वाले तू इनके लिए मौत का ऐलान बनेगा इंसान की औलाद है इंसान बनेगा तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा इंसान की औलाद है इंसान बनेगा
1: इंसान के औलाद है इंसान बनेंगे तो कैसा इंसान बनना आपको

0: अच्छे दिल और अच्छे स्वभाव दोनों आवश्यकता है। अच्छे दिल और अच्छे स्वभाव दोनों आवश्यकता है। अच्छे दिल से कई रिश्ते बनेंगे और अच्छे स्वभाव से वो जीवन भर टिकेंगे।
1: इस बात पर ये भी कहना चाहती हूँ, कितने भी खूबसूरती से क्यों ना बांधा जाए, कितने भी खूबसूरती से क्यों ना बांधा जाए,
0: तो सुना दो आगे।
1: अगर नजरों में इज्जत और बोलने में लिहाज ना हो तो वो टूट जाए।
0: शांता जी ने बहुत सुंदर संदेश दिए दोस्तों।

दोस्तों आप सुन रहे हैं फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो, जो इंटरनेट द्वारा दुनिया के हर एक प्रांत में सुना जा सकता है। और यह है कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश, जिसमें हमारा यही लक्ष्य है कि हम अपना जीवन का ज्योति जो जल रहे हैं, इसमें कोई भी प्रकार से और भी प्रकाश आ सके। तो हमारी खोजी सेना जो है, हम सब के लिए विषय रख देते हैं। और जैसे कि अभी आपने राजेंद्र जी के मुखान से सुने कि त्रेता का वृतांत और द्वापर का वृतांत, जो जा कर के हम शायद कभी नहीं सुने होंगे इसके बारे में, तो आज इस बात को हमें भी सुनने को अवसर मिला।

दोस्तों, कहा जाता है कि समय की कीमत, इस पे हमें ज़रूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये बात किसी ने बड़ा अच्छा से लिखा है कि अखबार जिसे हम क्रांत से जानते हैं ना, तो अखबार से पूछो कि सुबह की चाय के साथ आता है और शाम के चाय तक रद्दी हो जाता है। इसीलिए जिंदगी में जो करना है समय पर कर लो, क्योंकि जिंदगी मौका कम अफसोस ज़्यादा देते हैं। तो हम न्यूज़ और कमर्शियल की ओर बढ़ेंगे और उसके बाद में आपके साथ जुड़ जाएंगे।

0: विशेष हिंदू शब्द की खोज हीनम दुष्यंती इति हिंदू से हुई थी, अर्थात जो अज्ञानता और हीनता का त्याग करे उसे हिंदू कहते हैं। हिंदू शब्द करोड़ों वर्ष प्राचीन संस्कृत शब्द से है। यदि संस्कृत के इस शब्द का संधि विच्छेद करें तो पाएंगे हीन प्लस दू बराबर हीन भावना से दूर, यानी जो हीन भावना से, हीन भावना समझिला संजय जी?
1: ना ना समझिल, बोले तो
0: खराब भावना,
1: खराब भाव,
0: हीन मतलब पीछे,
1: हीन
0: भाव, खराब भाव, भावना, भावना जो रहे
1: हिंसक के हीन है वो।
0: हाँ, हिंसक के हीन रहे,
2: जो खराब काम कर,
0: हाँ
1: वो ना ठीक है,
0: ना ठीक,
2: ना ठीक काम करे। हाँ।
0: अर्थात जो हीन भावना या दुर्भावना से दूर रहे, मुक्त रहे, वो हिंदू है।
2: खराब काम से जो दूर रहे, हिंसा से दूर रहे, चोरी चपाटी से दूर रहे।
0: हमें बार बार सदा झूठ ही बतलाया जाता है कि हिंदू शब्द मुगलों ने हमें दिया, जो सिंधु से हिंदू हुआ। हिंदू शब्द की वेद से उत्पत्ति है। जानिए कहाँ से आया हिंदू शब्द और कैसे हुई इसकी उत्पत्ति। कुछ लोग यह कहते हैं कि हिंदू शब्द सिंधु से बना और यह फारसी शब्द है, परंतु ऐसा कुछ नहीं है, ये केवल झूठ फैलाया जाता है। हमारे वेदों और पुराणों में हिंदू शब्द का उल्लेख मिलता है। आज हम आपको बता रहे हैं कि हमें हिंदू शब्द कहाँ से मिला।
1: तो राजेंद्र जी,
0: जी
1: अगर आप कहते कि लोग ऐसे कहें कि क्योंकि ये तो हमारे इतिहास में शायद लिखे होंगे कोई कुछ लोग
0: जी,
1: कि सिंधु पर, सिंधु है क्या है?
0: सिंधु घाटी की सभ्यता है। एक आपने इतिहास में देखा होगा कि सिंधु एक घाटी है, उसकी पूरी एक सभ्यता है। तो इतिहास में वो बहुत सारा उसका देखने को मिलता है।
1: हाँ,
0: वो एक पूरा प्रोग्राम बन सकता है सिंधु घाटी की सभ्यता पे। आप चाहेंगे तो अगली बार वो प्रोग्राम हम धरेंगे यहाँ, सिंधु घाटी की सभ्यता।
1: काफी जानकारी उस पे,
0: बहुत बहुत ज्यादा
1: तो अच्छा, उसके बारे में एक बार जरूर बात करेंगे। हाँ। पर आज हो रहा है हिंदू का बात
0: जी,
1: सिंधु का नहीं, हिंदू,
0: हिंदू का।
1: शांता जी, आपको इसके बारे में कुछ कहना है?
2: हाँ, तो क्योंकि मुझे आज पता चला भी बहुत सारे चीजें, तो मुझे बहुत गर्व है।
1: सही बात, सब गर्व के बात। ये कार्यक्रम ही ज्योति का प्रकाश ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम लोग के विशेषज्ञ जो हमारे विषय रखते हैं
2: अलग अलग से विषय,
1: अलग
2: हर सप्ताह कुछ अलग से हम लाते हैं, इस पे हमारी भी उन्नति होती है।
1: जरूर जरूर, हमारे जीवन के ज्योति में थोड़ा और प्रकाश आ जाता है ना।
2: एकदम।
1: तो राजेंद्र जी सुना दो आगे।
0: हमारे वेदों और पुराणों में हिंदू शब्द का उल्लेख मिलता है। आज हम आपको बता रहे हैं कि हमें हिंदू शब्द कहाँ से मिला है। ऋग्वेद के ब्रह्मस्पति आगम्य, ऋग्वेद से बृहस्पति आगम्य में हिंदू शब्द का उल्लेख इस प्रकार आया है।
1: उल्लेख के मतलब क्या है राजेंद्र जी?
0: उल्लेख मतलब देखना, जैसे ये इस किताब में हमने ढूंढा और वो लिखा हुआ मिला, उल्लेख, लेख को
1: लिख, जो लिखा हुआ है,
0: जो लिखा हुआ
1: जिसमें मिल सकते हैं,
0: उसमें मिल सके। किसमें मिलता है? ऋग्वेद के बृहस्पति आगम्य में मिलता है उल्लेख। हिमालयम सभारंभ यावतम इंदु सरोवरा तम देव निर्मतम देशा हिंदुस्तानम प्रचच्छते। इस प्रकार मिलता है लिखा हुआ ऋग्वेद में, अर्थात हिंदू से, हिमालय से इंदू सरोवर तक देव निर्मित देश को हिंदुस्तान कहते हैं।
2: अच्छा,
0: केवल वेद ही नहीं बल्कि शैव ग्रंथ में हिंदू शब्द का उल्लेख इस प्रकार किया गया है। हीनम चा दुस्तते वा हिंदू रिच्चतुच्चते प्रभे, अर्थात जो अज्ञानता और हीनता का त्याग करे उसे हिंदू कहते हैं। इससे मिलता जुलता लगभग यही श्लोक कल्पद्रुम में दोहराया गया है। हीनम दुष्यति इति हिंदू, अर्थात जो अज्ञानता और हीनता का त्याग करे उसे हिंदू कहते हैं। क्यों ना हम एक आप कुछ पूछना चाहें या आप गाने की तरफ बने?
1: नहीं, इच्छा है कुछ इसी अंतर्गत में जो गीत होगा, कुछ पता नहीं शांता जी पिटारा से क्या छोड़ने वाले हैं।
0: हाँ, पिटारा में जो शांता जी ने छोड़ ही रखा है, हम उसको सुनते हैं।

0: घूमे घूमे घूमे घूंगर, पद्मावती फिल्म का बहुत ही अच्छा जो गाना भी आपने सुना है।
1: ये फिल्म आपने देखे कि ना?
0: नहीं, मैंने नहीं देखा ये फिल्म, शांता जी ने देखा। शांता जी इसका कुछ वृतांत बता सकती है, लेकिन इस फिल्म पे बहुत हंगामा हुआ था।
1: हाँ, मैंने भी इस फिल्म के बारे में काफी हंगामा हुआ था भारत में।
0: जितना हंगामा हुआ उतना ये फिल्म सुपरहिट हो गई।
1: अच्छा, शांता जी आपने देखा ये फिल्म?
2: फिल्म हमने देखा यहाँ शहर में, बहुत जैसा राजेंद्र जी कहा एक सुपर हिट फिल्म है। और अगर इस फिल्म को आपको देखोगे तो आपको जैसे सांस बंद कर कर देखना पड़ेगा।
1: अच्छा, इतना गंभीरता फिल्म है।
2: हाँ।
1: ऐसा क्यों नहीं करते राजेंद्र जी, क्योंकि आप जो वृतांत सुना रहे हम सबके हिंदुत्व के बारे में, उसमें क्या और संदेश है? क्योंकि मैं देख रहा हूँ यहाँ किसी ने फिर एक अच्छा संदेश भेजा है,
0: क्यों ना वो संदेश पहले
1: सुना दूं मैं?
0: जरूर,
1: क्योंकि संदेश तो आते रहते हैं और यहाँ संदेश की खुशियाँ हमेशा चंदन की तरह होती है। खुशियाँ हमेशा चंदन की तरह होती है, दूसरों के माथे पर लगाओ तो अपनी भी उंगलियाँ महक जाती है। ऐसा ये वृतांत क्यों है? क्योंकि इस पे जब ध्यान दिया जाए कि हम सब कहीं सत्संग और पे जाते हैं ना
2: जी।
1: कहाँ जाते हैं आप सत्संग पे शांता जी?
2: नाम लेना अलाउड तो मेरे
1: नहीं, अलाउड नहीं, नहीं, पर जाते मंदिर और ब्यूर्थ हाउस, और उसमें नाम तो नहीं लिया मैंने और बस बोल दिया।
2: हाँ हाँ, ऐसे ऐसे। अरे हमारे विज्ञानों लोग भी ये मंच पे बैठ के और कथा कहते हैं, तो उसमें से भी आप बहुत सारे चीजें ग्रहण कर सकते हैं।
1: जरूर, तो सत्संग में जाना, पर सत्संग में जाना जैसे कि ये वृतांत सुनाया गया कि खुशियाँ हमेशा चंदन की तरह होती है। और चंदन क्या है? चंदन एक ऐसा वस्तु है जिसे आपको और सिर से माथे से लगाते हैं लोग। कहीं जाओ और चंदन लग के और आप बाहर निकलो तो लोग जान जाएंगे कि ये कहीं सत्संग से आ रहे हैं।
2: और वो ठंडक पहुंचाता है।
1: ठंडक भी पहुंचाते, पर इसमें महत्वपूर्ण बात ये है कि उंगलियां महक जाते।
2: हाँ।
1: और आजकल क्या हुआ राजेंद्र जी, हॉलैंड में ऐसा हो गया है।
0: कैसा?
1: कि हम लोग सलाई के टिक्के में रुई लपेटता है और रुई से और लगा करके चंदन सबके की तो और वाचे से लगाने लगे। तो ये बात है कि कौन उंगली से किसके चंदन लगाना, इसमें भी संदेश होता है। उसी कारण ये वृतांत को लोग लिखे हैं कि वैसे चंदन को चाहिए उंगली से लगाने को। लोग वतस्ताफ से और यानी सलाई के टिकिया में लपेट करके और रुई उसी से चंदन लगाते रहते हैं, पर असलियत में चंदन का महत्व लगाने में कुछ और है। इस पे हम सबको जरूर थोड़ा से ध्यान देना है।
2: आपने कहा उंगली से, तो कौन से उंगली?
1: एक अनामिका से और लगाया जाता है और एक अंगूठा से लगाया जाता है, ये तो मैं बस जानता हूँ कुछ छोटा से। बाद में हम ने मास्टर जी जो हमारे पैनल के पीछे है उससे पूछेंगे। अगर जब हम लोग थोड़ा जल्दी नहीं करेंगे और बातों बातों में बस यही रुक जाएंगे तो हमारा कार्यक्रम में जो आज हमारे विशेषज्ञों ने,
2: पर अभी ने आपने छेड़ा ना कि चंदन लगाना ये तर्जनी।
1: हाँ।
2: और अंगूठा था, अंगूठा से पुरुष को लगाता लगाया जाता
0: तर्जनी
2: है?
0: ये रहे।
2: अच्छा, तर्जनी
0: इससे नहीं।
1: हाँ, तो राजेंद्र जी ने दिखा दिया कि तर्जनी। हाँ,
0: रिंग
1: फिंगर को कहते हैं अनामिका।
2: अनामिका।
0: हाँ,
1: हाँ, और अंगूठा।
2: और अंगूठा।
1: हाँ, और सभी सुनने वाले ने देख नहीं पाए यहाँ से,
2: इसलिए
1: तर्जनी कहते हैं वैश फिंगर। तो राजेंद्र जी, शांता जी को तो ये है कि बस अब बता ही दीजिए, पर अभी अगोल लेते हैं शांता जी।
2: अच्छा,
1: बाद में देखेंगे कि उसके बारे में हम लोग कुछ और।
0: हाँ, आगे बढ़ते हैं।
1: हाँ।
0: परिजात हरण में हिंदू को कुछ इस प्रकार कहा गया है,

विधीयते, अर्थात जो अपने तप से शत्रुओं का, दुष्टों का और पाप का नाश कर देता है वही हिंदू है। माधव दिग्विजय भी इन्हीं शब्दों को कुछ इस प्रकार उल्लेखित किया गया है, वो हम सुनाएंगे इस गाने के बाद। तो बढ़ते हैं, क्यों ना एक गाना सुनेंगे और इसके बाद आगे बढ़ेंगे।

0: प्रेम की गंगा बहाते चलो, जोत से जोत जगाते चलो। संजय जी, आपने कौन सी जोत जलाई आज?
1: आज मैंने ये जोत जलाई कि ज्योति का प्रकाश, ज्योति का प्रकाश का जोत धीरे धीरे जल रहा है। और अभी तो शांता जी ने ऐसा प्रश्न रख दिया है कि कार्यक्रम में ये विषय था ही नहीं, पर इसके बारे में तो कुछ ना कुछ बोलना ही पड़ेगा। और अब देखा जाए कि कैसे,
2: क्योंकि लाभदायक है और जानकारी इसमें है,
1: लाभदायक और जानकारी भी है। राजेंद्र जी, तो ऐसा क्यों ना थोड़ा से इसके बारे में हम सबको सुना सकते हो आप, या हम सब?
0: हाँ जरूर, जो रिंग फिंगर रहे
1: रिंग फिंगर,
0: उसको तो लेडीज को तिलक लगाया जाता है ज्यादा करके,
1: हाँ,
0: ये छोटा तिलक, अगर पुरुष को भी लगाया तो छोटा रूप में।
1: हाँ जी,
0: जो अंगूठा रहे तो उसको राजपूत जैसे तिलक लगाते हैं, नीचे से ऊपर तक,
1: नीचे से ऊपर,
0: हाँ बड़ा वाला है।
1: हाँ,
0: और जो तीन उंगली रहे बराबर,
1: हाँ,
0: उससे चंदन लगाते हैं, त्रिकुट,
1: त्रिकुट,
0: जो लोग कुछ लोग पंडित लोग त्रिकुट लगाते हैं या शंकराचार्य लोग जो लगाते हैं,
1: हाँ
0: वो इसी से लगाते हैं। तो इस प्रकार तिलक के बारे में जो बात आप कर रहे थे ये है, ऐसा है,
1: ऐसा है। पर राजेंद्र जी, एक एक छोटा सा प्रश्न
0: जरूर,
1: आपने कहा नीचे से ऊपर, ऐसा हाँ, क्यों?
0: क्योंकि ये एक ये इस जगह पे भी जो चक्र है, आज्ञा चक्र है,
1: आज्ञा चक्र,
0: हाँ, उस चक्र को हम लोग एक वो देते हैं कि यहाँ पे जो तिलक है उसका प्रभाव उसमें रहता है, और वो आगे चक्र जो है चंदन लगाने से ठंडा रहता है और एकदम ज्योति, उससे ज्योति का जो आप हम लोगों को प्रोग्राम है
1: ज्योति का प्रकाश,
0: तो वहीं से ज्योति का प्रकाश भी होता है।
1: सही बात, सही बात। अच्छा, सुंदर संदेश आपने दे ही चुका है हम सबको। शांता जी, इसमें कोई शक?
2: बिल्कुल नहीं, पर हम ये खुशकिस्मत समझते हैं कि अपनी किस्मत को कभी दोष मत देना, है ना, अपनी किस्मत को कभी दोष मत देना। इंसान के रूप में हमको जन्म मिला है, तो ये किस्मत नहीं है तो और क्या है भला।
1: इंसान के रूप में हमें जन्म मिला है तो ये किस्मत है कि
0: नहीं तो क्या भला,
2: ताकि हम चंदन लगा सकते हैं, तिलक लगा सकते हैं।
1: ये तो बहुत सौभाग्य की बात होता है, क्योंकि 84 लाख योनियों में से इंसान का योनि, यहाँ तक कि मैंने सुना है देवताओं भी ऐसा शरीर के तरसते। और हम सब यहाँ पर खास करके ज्योति का प्रकाश कार्यक्रम बनाने के लिए सेवा के अंतर्गत यहाँ पहुँच गए हैं, और हम लोग के भी ऐसे इसमें मगन होना, इतने संदेश छोटे छोटे रूप में हम सब के लिए खोज खोज के रखा जाता है। और हम सभी ये कार्यक्रम द्वारा आपके घर में, आप चाहे जहाँ भी हो, ये कार्यक्रम को 188 देशों तक सुना जा सकता है। कहीं भी हो आप ये कार्यक्रम को सुन रहे होंगे, तो आपको और ये संदेश छोटे रूप में हम सब यहाँ से अपने जीवन के ज्योति के प्रकाश डालने के लिए कुछ

0: कुछ लेकर आते हैं। राजेंद्र जी, आगे का वृतांत क्या है?
1: हाँ, आगे का जो वृतांत हमारा चल रहा था, आगे का वृतांत माधव दिग्विजय जी के अनुसार, ओंकार मंत्र मूलाढ़्या पुनर्जन्मा दृढ़ाश्च गौ भक्तो भारत गरु हिंदू हिंदसा दूषक। अर्थात वो जो ओंकार को ईश्वरीय धुन माने, कर्मों पर विश्वास करे, गौपालक रहे तथा बुराइयों को दूर रखे, वो हिंदू है। केवल इतना ही नहीं, हमारे ऋग्वेद में विव हिंदू नामक के बहुत ही पराक्रमी और दानी राजा का वर्णन मिलता है, जिन्होंने 46,000 गौ माता दान में दी थी, और ऋग्वेद मंडल में भी उनका वर्णन मिलता है। बुराइयों को दूर करने के लिए सतत प्रयासरत रहने वाले सनातन धर्म के पोषक व पालन करने वाले हिंदू हैं। हिंदुस्तु दुरितामह, अर्थात हिंदू सब लोग सदा ही शुरू से रहे हैं और रहेंगे, तो दुरितामह। आप इसके बाद हम चलते हैं एक सुंदर सा गीत की ओर, और इसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे।
0: राजेंद्र जी, सुंदर से गीत की ओर आगे बढ़ेंगे, पर आज बस यही प्रश्न है, क्योंकि हमारे साथ हमारे भाई रॉय जी जो आइंदहोफ शहर से यहाँ उपस्थित है, स्टूडियो में है, और हम सब सूरीनामी है, तो क्या सूरीनाम हमारा प्यारा देश आज आप चलाने वाला है कि कार्यक्रम में कार्यक्रम, हम लोग का बिल्कुल समय नहीं है?
1: नहीं नहीं नहीं, वो जरूर चलेगा, क्योंकि आज यहाँ पे तीन लोग सूरीनाम कहे थे, सूरीनाम हमारा प्यारा देश क्यों नहीं चलाया जाएगा?
0: एकदम से
1: एकदम से, लेकिन उससे पहले कोई दूसरा गाना रहेगा, इसके बाद हो रहा
0: जरूर जरूर
1: जरूर।

0: तोरा मन दर्शन करवाए। बहुत ही अच्छा। मन दर्पण जो है, मन का दर्पण का मतलब होता है, दर्पण मतलब होता है शीशा, ऐना। और जब शीशा के सामने हम खड़े होते हैं तो हमारी ही शक्ल उसमें दिखती है। तो वैसे तो हम देख नहीं सकते अपनी शक्ल, लेकिन एक शीशा, शीशा मतलब दर्पण, जो सामने है वो दिखेगा। वही एक चीज़ है जो दिखा सकता है, दर्शा सकता है। तो अपने आप को अगर देखना हो तो शीशा में, वैसे मन दर्पण कहलाए। वैसे अपने आप आँख बन करके अपने शरीर के अंदर जाके अपनी मन की आँखों को खोल के अपने अंदर देखा जा सकता है। तो इस प्रकार का जो मन का दर्पण है वो बहुत ही अच्छा है, वही दर्पण होना चाहिए। संजय जी, आप इसके बारे में कुछ कहना चाह रहे थे?
1: जरूर कहना चाह रहा था राजेंद्र जी, क्योंकि ऐसा हुआ कि एक बार एक व्यक्ति ने हमसे बोले
0: जी,
1: व्यक्ति ने बोले कि मेरे दादा ने, हम लोग कहते आ जाना,
0: हाँ,
1: दादा ने अपने कमरे से एक बड़का दर्पण लगाए थे।
0: हाँ,
1: उन्होंने कहा कि वो रोज बाहर निकल के अपने सभी कमरों में दर्पण लगाए थे, छोटे छोटे
0: जी,
1: पर अपने कमरे में एक इतना बड़ा दर्पण लगाए थे जिसमें वो पूरा शरीर दिखता था।
0: हाँ,
1: तो वो कह रहे थे कि मेरा दादा में ये था कि रोज वो बाहर जा करके जब लौट करके आए तो वो उसी दर्पण में देख करके अपने आप से ये प्रश्न करते थे
0: जी,
1: कि क्या हमने ठीक किया या क्या हमने गलत किया
0: जी।
1: तो उससे वो, उसे वो सीख मिलता था कि कुछ गलती हो जाता, क्योंकि जाने अनजाने में हमसे कुछ गलती हो ही जाता है। उसी से वो अपना गलतियों को संभालते थे, कि क्योंकि वो रोज अपने आप को देख करके अपने आप में वो प्रश्न रखते थे, और प्रश्न रख करके और अपने आप में सुधार कोशिश करते थे रखने को। तो इसी प्रकार से वो अपना और बनाए थे। आगे के कार्यक्रम में जैसे कि मैं देख रहा हूँ तो शांता जी भी कुछ तैयारी करे हैं, और शांता जी आज मैं ऐसा आपके तैयारी की ओर नहीं जाऊँगा, पर एक ऐसा प्रश्न रखना चाहता हूँ आपसे।
2: मैं तैयार होकर आई हूँ।
1: पर शांता जी, कभी आपने किसी को सिर से चुरकी देखे?
2: हम बहुत ऐसे लोगों को देखती हूँ।
1: आप हमें देख रहे हो पर हमारे सिर से आप दिखाई नहीं देंगे।
2: चुरकी नहीं, राजेंद्र के सिर पर है चुरकी। एक ये कहते हैं पंडित जन को एक चुरकी ऐसे लगाते हैं ना।
1: हाँ जी,
0: हाँ। ये रहे नमन।
1: हाँ,
2: वही तो हम देख रहे हैं।
0: एंटेना,
1: एंटेना,
2: एंटेना।
1: हाँ, तो क्या उसका मतलब आपको पता है?
2: हाँ, मुझे पता है। उसके बारे में खोजबीन की तो मुझे कुछ हासिल हुआ। तो आपने पूछे सही वक्त पर सही प्रश्न, तो उसके बारे में आप जानना चाहते हो?
1: उसी लिए तो ये प्रश्न को रखा गया शांता जी।
2: अच्छा, तो हम बता दें कि हिंदू धर्म में ऋषि मुनि सिर पर चोटियाँ रखती है, सिर पर चोटियाँ रखते हैं। आज भी लोग रखते हैं, वो तो सही। हम भी जब मंदिर जाते हैं या सड़क पर कहीं भी ऐसे व्यक्ति जो पास होते तो हम देख लेते हैं, तो जान पे पड़ता है कि ये कोई है। तो वैज्ञानिक तर्क ऐसा है कि जिस जगह पर चोटियाँ रखी जाती है, हाँ ये सिर पर ना, जिस जगह पर चोटियाँ रखी जाती है उस जगह पर दिमाग की सारी नसें आकर मिलती है, समझा?
1: तो उसी दिमाग, और आसान से कैसे आप कह सकेंगे
2: कि वहाँ पे नस जाकर जुट एकत्रित होते हैं,
0: इससे एकत्रित,
2: हाँ एकत्रित,
0: एकत्रित। हाँ, यानी कि
2: इससे दिमाग स्थिर रहता है और इंसान को क्रोध नहीं आता।
1: चुरकी रखने से क्रोध नहीं आएंगे अभी, ऐसा?
2: ऐसा। और उससे भी है कि आप अभी अपना इंद्रिय और जो भी है ना उसको भी काबू में रखें,
1: अपने आप के कंट्रोल में,
2: अपने आप को कंट्रोल में। हाँ, तो ऐसा है कि चुरकी के महत्व
0: बहुत ही विशाल महत्व।
2: हाँ, सोच तो, और सोचने की क्षमता भी बढ़ती है कि जो एंटेना है इसका मतलब क्या है।
1: आप भी चुरकी रखा है?
2: अभी राजेंद्र जी ने कहा ना उसका एंटेना है।
1: राजेंद्र जी, ऐसा क्यों, ऐसे करते क्यों, एक गीत के ओर बढ़ते हैं और गीत के बाद में फिर थोड़ा से सूरीनाम, हमारा प्यारा देश।
0: हाँ, गीत के भी बहुत अच्छे बोल हैं कि यह है गीता का ज्ञान, वो जरूर हम बढ़ाएंगे।

0: देवी।
1: कौन सी दुविधा आपके चरणों में इनको ले आई, किस चिंता में मगन है दोनों, क्यों आंखें पथराई, ये मरे हुए हैं या जीवित?
0: बस मरने ही वाले हैं देवी, इनका अंत निकट है।
1: तथास्तु।
2: इन दोनों दुष्टों ने मिलकर कैसी चाल चलाई, एक कंस मामा बन बैठा एक दुर्योधन।

0: ये है गीता का ज्ञान।
1: गीता का ज्ञान अभी संजय जी आपने बड़ा ही अच्छा ढंग से सुना है, जो कि जिसकी फिल्म जो ऋषिकेश में बनी थी, और फिल्म में बहुत लोगों ने सराहा है उसको।

सूरीनाम हमारा प्यारा देश। तीन लोग आज यहाँ सूरीनाम के बैठे हैं तो उनका प्यारा देश इतना अच्छा है कि सब लोग एकदम झूम उठते हैं। अब बढ़ते हम आगे, लागी छूटे ना सनम अब तो, क्योंकि अब हमारा समय जो स्टूडियो से विराम की ओर बढ़ता है, तो चलते हम लागी छूटे ना सनम अब तो सनम।

लागी छूटे ना अब तो सनम चाही। ये जो जब ये गीत आता है, जब ये गाना बजता है, तो सब लोग और हम लोग भी यही देखते हैं कि अब हमारे श्रोता गण जो कि हमको इतने प्रेम से सुनते हैं, वो उनका भी मन कहीं ना कहीं इस गाने से ये लगता है कि हमारा पूर्ण कार्यक्रम पूर्ण की तरफ आगे हो रहा है, यानी कि और इस गाने से बहुत ही सबको और हमें भी बहुत ही अच्छा लगता है कि लागी छूटे ना अब तो छूटना ही है। दोस्तों, सुनने वालों, फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। सुनने वालों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि जो हमारा इतना प्रोग्राम सुनते हैं और पसंद करते हैं। फ़ोन भी आता है, मैसेज भी आते हैं, बहुत अच्छा। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली बार। नमस्कार।

0: तब से
1: जिंदगी दो पल की है, जिंदगी दो पल की है, मजे में जी लो, वक्त वक्त की बात है, वक्त वक्त की बात है यहाँ, इसलिए कल को छोड़ो आज में जी लो। प्यारे सुनने वालों, देने सुनने के लिए बहुत से धन्यवाद। जो हमसे अनजाने में गलतियां हो गई हो तो माफ़ी हम आपसे मांगते हैं, स्वीकार कीजिए। सेविका शांता की प्यार भरी राम राम प्रणाम।

हौसला को ये मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है, अपनी परेशानी के ये बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। फाहुन रेडियो के सभी सुनने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हम सब आज फिर और इकट्ठा होकर के कार्यक्रम को ज्योति का प्रकाश जो आपके लिए प्रस्तुत किया गया। आशा यही है कि अगले सप्ताह आप जरूर सुनते रहना। हमारे साथ सहयोग दिए शांता खिमाई जी, राजेंद्र सिंह जी जो पनील के पीछे बैठे हुए हैं, और मैं हूँ आपका सेवक संजय। सभी को एक शुभ दिवस। नमस्कार।

0: पंछी कभी अपने बच्चों के भविष्य के लिए घोंसला बनाकर नहीं देते हैं, वे तो बस उन्हें उड़ने की कला सिखाते हैं। सुनने वालों, ये है कार्यक्रम फनकारों की दुनिया, जो यहाँ से हम सब प्रस्तुत करने वाले हैं। सुनने वालों, हमारे साथ ही जो इस कार्यक्रम में सहयोग देते हैं, शांता खेमाई जी और बबली आसरा जी, जो इस समय स्टूडियो में उपस्थित है। तो पहले शांता जी अपना एंट्री लेते हैं, फिर बबली जी, फिर कार्यक्रम को हम सब बढ़ाते हैं।
1: हेलो, सुन सुन सुन मेरी जान, जिनका मन का भाव सच्चा होता है, जिनके मन का भाव सच्चा होता है, उनका हर काम अच्छा होता है। आपको स्वागत है फनकारों की दुनिया में।
2: यदि आप गुस्से के एक क्षण में धैर्य रख लेते हैं तो आप दुख के 100 दिनों से बच सकते हैं।
0: सुनने वालों, आज का कार्यक्रम में जो हम सब रखने वाले हैं कि हमारे कलाकारों का, और जो अपना हम सबको कला से अपना प्रदर्शन दिए, अपना कला से ऐसा ऐसा सुंदर सुंदर रेडियो आज हम सब बना रहे हैं और वो गीत को छोड़ कर गए हैं। तो शांता जी, इसके बारे में जो आज हमारे पास नहीं है, जो फनकार हमारे साथ नहीं है, जो इन द यार सेस्तख, इन द यार फैफ्तख के समय पे, तो मदन मोहन एक ऐसा कलाकार जो बहुत सा गीत हम सब का लिए और गाए, गा करके भी अपने और अंदाज में औरों को भी गवाए हैं।
1: यानी कि आज का प्रोग्राम चलेगा मदन मोहन के बारे
0: जी,
1: में।
0: जी, मदन मोहन जो एक सिंगर, एक राइटर, एक जो कंपोजर,
1: प्रोड्यूसर,
0: और उन्होंने एक परिवार से जुड़े हुए, और जिनका जन्म इराक में हुआ था ना?
1: जी हाँ, इसे तो हमने पढ़ी है, सुनी है। जी हाँ, इराक में हुआ था उनका जन्म।
0: उनका जन्म इराक में हुआ। और
2: मदन मोहन जी का जन्म 25 जून 1924 को बगदाद में मदन मोहन जी का जन्म हुआ। उनके पिता राय बहादुर चुन्नी लाल इराकी पुलिस में काम करते थे।
0: मदन मोहन का जन्म जब जा करके, और 25 जून नेखती फीरन तक में हुआ। सुनने वालों, और जो जा करके और इराक में हुआ था, और अभी नेखती फीरन तक में तो इंडिया अभी इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था, यानी कि आज़ादी नहीं हुआ था।
2: जब मदन मोहन जी का जन्म हुआ तब ना भारत आज़ाद हुआ था अभी, और ना इराक आज़ाद हुआ।